मई 2026 7:20 ते साडा लाइव सैशन होवेगा जी सिडनी तो। ए ता रिया अज दियां गल्लां बातां ते मैसेज ते आपां फिर पहुंचिए उस शरदा दी गल दे उत्ते। इस सेवा परमात्मा दी सफल उदों ही होनी है जदों अनडिवाइडेड ते उस एकाग्रता दे विच मन ते बुद्धि जिहड़ी असीं एकाग्र रख के करनी है ते साडे काम सफल उस टाइम होने ने। ये हमेशा मैं भी याद रखा ते तुसीं भी याद हमेशा याद रखो ते यही मेरी दुआ है तुहाडे दे लई ते सब दे लई। ठीक है, जो भी इस टाइम जुड़े हो तुसी मेरे नाल हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया दे उत्ते। ते ए दा रिहा अज दा प्रोग्राम, थोड़ी जी झाकी मारी असी जो योगी सीरीज रंधावा साहब ते साडा लहिंदा ते चढ़दा पंजाब मिलके दोनों योगदान पा रहे ने ते पंजाबी कल्चर नूं ही नहीं, पंजाबी भाषा नूं ही नहीं, पंजाबी इतिहास नूं ते पुरानियां जिहड़ियां ओह कहानियां सी जिहड़े साडे पेरेंट्स सुनांदे सी, दादे परदादे सुनांदे सी, उन्हां नूं इक एनीमेशन दे रूप दे विच लैके आ रहे ने। बहुत वड्डा योगदान चढ़दे और लैंदे पंजाब दे वल्लों हो रहा ते आने वाले टाइम दे विच मैं भी पाकिस्तान जाके उत्थे दे इतिहास दे बारे है ना उस दे अपने इतिहास दे बारे उत्थे जानकारी लैण दी कोशिश करांगी आंदे वाले टाइम दे विच। परमात्मा बख्शे कि उस धरती दे उत्ते मैनु उस पवित्र धरती दे उत्ते जिथे साडे गुरुआं पीरां ने ते साडे अलग अलग साडे भाईचारे उत्थे जिथे शामिल ने मैनु भी उत्थे जाण दा मौका मिले, परमात्मा दी बख्शिश होई तां आपां लाइव एक दिन जरूर पाकिस्तान तों भी होवांगे। ते मैं उम्मीद करदी हां कि आंदे आंदे वाले समें दे विच आपां अलग अलग डिफरेंट टॉपिक ते डिफरेंट प्रोजेक्ट जिथे भी जो चल रहे ने साडे अपने भाईचारे दे विच जां किसी भी कम्यूनिटी दे नाल जुड़े हुए जो भी प्रोजेक्ट बाहरले चल रहे ने कि मैं उन्हां नूं तुहाडे सामने समुख पेश कर सकां ते परमात्मा मैनूं सदबुद्धि बख्शे ते तुहाडे योगदान दी कीमत मैं अदा नहीं कर सकती शब्दां दे विच। हमेशा मेरे नाल हरमन रेडियो दे उत्ते जुड़न दे लई बहुत बहुत धन्नवाद ते अज दा प्रोग्राम आपां इत्थे ही खत्म करदे आं ते मिलदे आं अगले सोमवार सॉरी एतवार ते एक नवे टॉपिक दे नाल ते एक नवी लहर दे नाल। तद तक दी अपना सेहत दा ध्यान अपने परिवार दा ध्यान रखो ते लव यू ऑल। थैंक यू सो मच अज दे प्रोग्राम दे विच जुड़न दे लई।

0: माय डियर फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गजन वाला सुखमिंदर, इस ते हर हफ्ते वतन पंजाब दे अमीर विरसे बारे अते पंजाबी सभ्याचार नाल जुड़िया इखलाकी ते मुल्लावान यादां बारे बहुत ही म्यारी ते पाएदार हर बार नवा एपीसोड अपलोड किया जांदा है। तुसी देखना जरूर, आप जी नूं हर एपीसोड चंगा लगेगा। इस नूं सबस्क्राइब कर देना, दोस्तां नाल भी शेयर करते रहना। धन्नवाद गर्जन वाला सुखमिंदर।
1: पिंड ने सानू वारस दिता, पिंड ने दिता बुला, पिंड ने सानू पीलू दिता, पिंड ने दिता दुला, पिंड ने साडी उंगली पकड़ी, पिंड ने तुरने लाया, पिंड ने सानू गभरू कीता, पिंड ने हसन सिखाया, पिंड दे राह पईयां ते तुरिया, तुर के वाट लंघाई, मां साडी ने बोली दिती, अखरी सांझ पुआई, पिंड दियां गल्लां रूह दियां गल्लां सुन सुन चित नशिया आए जांदा, मां बोली विच गल करदियां रज जिहा इक आए जांदा।

दिल तो चाहण वाले दूर दरेडे बैठे मित्र प्यारियो, तुहाडे पिंडा चो गल लैके हाजिर। मैं जी गजन वाला सुखमिंदर। अज दी गल दा सिरलेख है बेरी दी लक्कड़। लंघिया होया वक्त अते विछड़े होए मीत कदे नहीं मिलिया करदे, पर कुछ बहुत ही प्यारियां रूहां भी हुंदियां जो भले इस संसार नूं छड के चलियां गईयां हुंदियां, पर उन्हां नालों ओ रूही महबती रिश्ता टुटिया नहीं करदा। सुबह सवेर उन्हां दे झोले पैंदे रहिंदे आ, उन्हां नाल बिताए होए पल पल बार बार चेते आउंदे आ, ते मन उन्हां चेतियां उन्हां ख्यालां च डुब के डूंघे वहणां च जा पैंदा है। ज्योंदे जी ए मान फिर उन्हां विछड़ गया उन्हां जा चुकियां दे सुख निवास हित सदा ही दुआवां मंगदा रहिंदा है। पिंड विच जद कोई चाहे उमर हंडा के भी अपने जीवन साथी नूं छड के तुर जांदा, तां बाबा बारू जिवें आंदे हुंदे आ, धूएं दे पज रोवां चेते कर तुर गया सजणा नूं, ओह अपने सुनहरी पलां दे चेत्या च गुआच के गल्लां करदा करदा अखां भर आउंदा, तां उस दी घरवाली अमड़ी रामो आवागमन जन्म मर दियां गल्लां करदी होई उस नूं दिलासा दिंदी होई आखदी, सोने दे बापू तेरा दिल तां पहले दिन ही बहुत थोड़ा है, रोणा दा तेरा वट ते पिया है। तां इह सुन के बाबा बारू होर रो पैंदा। उस नूं लगदा जद ओह विछड़े तां ओह विछोड़ा किन्ना अकह होवेगा। बाबे बारू होरां दी जद सारी कबीलदारी निजिठी गई, ती पुत्तर आपो अपने थाई कमी काजी लग गए, ती ओह सब कासे तो सुरखरू हो गए, तां उन्हां दियां गर्मी दे दिनी जिहड़ियां मंजियां सीगियां हवा हारे दलान विच जा डटियां सी। अपने कोल पानी दी भरी सराई रख लैंदे, जिवें जिवें सूरज दी धुप चढ़ी जांदी ओह आपो अपनियां मंजियां खिच खिच के अगे पिछे करी जांदे रहिंदे। कदे कदे थोड़ा जा ठंडा भी ओह रला लैंदे ते छोटी जी पीपी च पा के सराहणे रख लैंदे, ते दुपहर दी चाह दे वेले लोड अनुसार दो दो फक्के जे मार लिया करदे। बारू समा पा के कसमैड़ी हो चुकी ऐनक दे सीसे नूं साफे दे लड़ नाल साफ करदा, ते उमरां दे रंगां चों फगण दे रंग च गुआचिया होया फुल्लां लद्दी सरों नूं वेख के अक्सर आखदा, बई राम कुरे ऐं लगदा है जिवें रब ने सारी धरती खट्टे रंग नाल खट्टी कर दित्ती होवे। तैनूं चेता ही होणा है आपां वी किसे वेले फलारे लैंदियां सुरमां विजलियां डंडी फगण दे रंग च गुआचिया होया फुल्लां लद्दी सरों नूं वेख के अक्सर आखदा, बई राम कुरे ऐं लगदा है जिवें रब ने सारी धरती खट्टे रंग नाल खट्टी कर दित्ती होवे। तैनूं चेता ही होणा है आपां वी किसे वेले फलारे लैंदियां सुरमां विजलियां डंडियां तों दी तेरे मापियां वल्लों जो तू तुर

0: पहला ही जो टुट चुकी है कि करिए रही जा बुनिया तो मेरी दुनिया किसी होर दी दुनिया मैं की लेना दुनिया तो
1: ये तुसी भुखे मर रहे किसी कुत्ते नु चुक के उसनु खुशहाल बना देवो ता ओ थानू कदे नहीं वड़ेगा। बस यही मुंडला अंतर है एक कुत्ते अते एक बंदे विचकार। विचार मार्टिन ट्वेन। चंगे विचारां ले जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: सुनावा खान सियाणियां दा ज्ञान। लो जी अज दा मुहावरा तोला चाटा खराब आटा।
1: जद कोई वडेरी उमर दा बंदा कोई नीच कम करे अते उस कारण दुखी होवे ता ए अखाण कहंदे हन।
0: मुहावरे अखाण अते पंजाबी बोले पंजाबी बोले। हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया आस्ट्रेलिया आस्ट्रेलिया।
2: सैड जां रोमांटिक गीतां दे शौकीन हो।

होया इश्क दिया राह च हुण नहीं हसदा रोंदे चेहरे तक के मैं ते इन्ना पागल कीता ओदिया प्यारा ने आपे चीजा लभदा रहना रख के।

0: मैं हाँ अमनदीप सिंह सिद्धू, डायरेक्टर हरमन रेडियो। दुनिया के हर कोने तो पंजाबी साडे नाल जुड़ते हैं, आला दर्जे की पेशकारी का आनंद माणते हैं। हरमन रेडियो दे आस्ट्रेलिया तो सारे प्रजेंटर मुफ्त सेवा निभाते हैं। तुसी भी साडी मदद कर सकते हो, सानू वधिया वधिया जानकारियां भेजो अते साडियां अपनियां आईफोन अते एंड्रॉयड दी एप्लीकेशन एप स्टोर तो डाउनलोड करके उस विच सानू सुनो। तुहानू रेडियो दे नाल अखबार, पॉडकास्ट, वधिया वीडियो, लेख, दरबार साहिब अते होर गुरधामां दा लाइव कीर्तन सुनन अते देखण नू मिलेगा। ऐप विचों ही सीधा सुनेहा कल सकोगे। अज ही साडियां एप्स इंस्टॉल करो। धन्यवाद।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी आहा।

0: ਅਗਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਹੱਸੋ
1: ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਚੰਡਾ ਗਾੜ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ
2: ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ
1: ਰੁਕਦੇ ਫੱਟਾ
3: ਉਹ ਜੁਗਨੂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ
4: ਕਿਹੜੀ
3: मैं सुनिया भी सिख्या महकमे वालिया ने सरकारी स्कूलां विच बच्चियां नू गंदे मंदे गीतां वाली किताबां भेजतियां
5: ओए तां कुछ भी नहीं आ साल दो साल नू गवर्नमेंट हनी सिंह होरां नू सिलेबस च लाऊगी
3: अच्छा फिर सरकारी स्कूलां च सवाल किहो जिहे होणगे
5: लै मैं दस दिना यो यो हनी सिंह दे गीतां चों सानू किहड़ी किहड़ियां नवीआं गालां ते नशियां बारे भरपूर जानकारी मिलदी है इना बिना डोप शोप मारिया करो दा केंद्री भाव 150 शब्द च लिखो मैं पिंड नानके रहिंदा सी ओ भूआ कोले पढ़दी सी गाना सुन के नानके पिंड रहन ते भूआ कोले पढ़न दियां लाभ हानियां दसो मन लो लक 28 कुड़ी दा 47 वेट कुड़ी दा सभ्याचार दा फार्मूला वरत के कुड़ी दी उम्र ते उहदे मापिआं दे कद काठ बारे जानकारी दिओ मिस पूजा दियां फिल्मां दे पतन दे कोई चार कारण दसो शहरी मान दे कोई पांच जण मुल्ले यारां दे नां लिखो अते ए भी दसो ओ वध चीनी पा के चाह किथे पींदे सन शीला कदों जवान होई ते अपनियां केड़ियां केड़ियां करतूतां करके मुन्नी बदनाम होई घट्टो घट 150 शब्दां च लिखो मर जानी ने केड़े गीत ते भंगड़ा पाया ए देला गेड़ा बी अंग्रेजी बीट ते सी नाग सामला जुल्फां दे
6: तेरा दी छतरी तो उड गई
5: बग्गी कबूतरी दे मित्रां दी छतरी तो उड़न दे कोई तीन कारण दसो अते ए भी दसो ओ मित्रां दी छतरी तो उड के केड़े मुल्क जाके बैठी गायक राज बराड़ दे गीत विच जट नू अपना कर्जा लाउण लई केड़ा ट्रैक्टर बेचना पिया ए स्वराज बी नाट ग्यारह जा सी फोड़ तुहाडा दोस्त पेपरां च नकल मारदा पर्चियां समेत रंगे हत्थी फड़िया गया है ओदे घर दे केस नू रफा दफा कराउण वास्ते मूहों मंगी रिश्वत नहीं दे सकदे सिख्या मंत्री नू रिश्वत माफी दी अर्जी लिखो
3: ते रिश्वत माफी दी अर्जी किहो जी होऊ फिर
5: सेवा विखे मानयोग मंत्री साहब बेनती है कि मेरे दोस्त राम सिंह ते पेपरां विच नकल दा केस बन गया है ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਦਾ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 5.5 ਲੱਖ ਠੀਕਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟੱਬਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ 6 ਦੀਆਂ 6 ਵੋਟਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਵੋਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਵੇਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 3792 ਰੁਪਏ ਮੋੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂ
7: Harman Radio 24/7.

ना शुकरापन बारे रोमन वाले कहते हैं, ना शुकरा बंदा कई मोरिया वाली बाल्टी वांग हुंदा है। अते कीनिया वाले कहते हैं, खोते दा शुकराना दलती हुंदा है। लेखक परमिंदर सोडी, किताब संसार प्रसिद्ध मुहावरे। चंगे अते सोने विचारां नाल जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: विजय विवेक साहब बहुत उमदा शायर ने उन्हां दी लिखियां सत्रां परमिंदर सिंह पापटोएटोए थोड़े तक लैके हाजर है। लिखते ने अहं दे टुकड़े जुड़े जुड़ के मुड़ बिखर भी गए, चढ़े पतंग ख्यालां दे सब उतर भी गए, नशा नशा ना रहा ना ही जहर जहर रही, के प्याले खाली ना होए ते जाम भर भी गए। वो प्यास प्यास अलौंदे सी रात दिन जेड़े, जदों उछाल जा आया नदी च डर भी गए, तबीब सोचदे ही रह गए शफागरियां, ते साड़ी पीड़ दे खाली स्थान भर भी गए, बकाया रह गया तेरे संयोग दा खंजर।
1: जो हाडे मन दी रीच पुगावांगे, मन चाहे असी गीत सुनावांगे, हर मन रेडियो।

0: अपनी बिजनेस की तरक्की लिए तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकते हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देन लिए जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करन लिए संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो।
1: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन ऑस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो हरमन रेडियो।

भाषा बारे रोमन की कहावत है कि जे दो भाषावां इको गल कहण तां इह गल इको नहीं हुंदी। विद्या विचारी तां पर उपकारी

मुझे देखे दूर से खड़े खड़े तू सोच रही है कि आज क्यों तू मेरे साथ नहीं। I've been there, I've done that, इस दिल में तेरा घर नहीं। साथ होंगे सनडाउन तक सुबह वापस अजनबी। शौक में तू पी रही मुझे नशे की तश्नगी। अजीब तेरी मंतकें दलीलें देती मुस्तकिल।

लोग एकलता विच डुबे हन क्योंकि ओ पुल नहीं बना सकते सगो कंधा उसारदे हन। विचार JF न्यूटन। चंगे विचारां लई जुड़े रहो अर्बन रेडियो दे नाल।

0: एस नदीम लिखते ने वफा की बेवफाई की मोहब्बत की अदा की है, वफा की बेवफाई की मोहब्बत की अदा की है, नहीं कुछ भी स्थाई ता इस सारा सिलसिला की है।
1: तो हाडे मन दी रीज पुगावांगे, मन चाहे कभी गीत सुनावांगे, हर मन रेडियो।

0: सुनावा अखाण सियाणियां दा ज्ञान। लो जी अज दा मुहावरा, कर पराईयां ते आउणी जाईयां।
1: जो इस्त्री अपनी नूं नाल बुरा सलूक करदी है, उसदी ती नाल भी सहुरे ओहो जिहा सलूक होवेगा।
0: मुहावरे अखाण अते पंजाबी बोले, पंजाबी बोले हरमन रेडियो, हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलिया,
2: आस्ट्रेलिया। तुहाडे मन दी रीझ पुगावांगे, मन चाहे असीं गीत सुनावांगे हरमन रेडियो ते।

दोस्तों तुसे सुन रहे हो हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया। मैं हाँ जयदेव कुमार। पंजाबियों दे ना मेरा एक खास मैसेज है या मैं उन्हों दी खासियत दस सकना कि भी जिथे भी ये चार जने बह जाते हैं उत्थे पंजाब बन जाता है। हुण तुसी ऑस्ट्रेलिया बैठे हो तुसी इत्थे भी पंजाब बना लिया, तुसी कैनेडा बैठे हो उत्थे भी पंजाब बन गया, तो तुहाडा पंजाब होर हसदा वसदा रहे। मेरी दुआवां तुहाडे नाल ने।

जरा सत श्री अकाल नमस्कार आदाब एंड हेलो अज दिन बुधवार 6 मई 2026 का वरा जदो कि नानकशाही कैलेंडर के मुताबिक संबत 558 दे वैसाख महीने की 23 तरीक है। परमिंदर सिंह पापा टोएटोए तुहाडे तक रेडियो तराना रेडियो स्पाइस न्यूजीलैंड अते हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया तो पंजाब दीआं खबरां लैके हाजर है। पंजाब दे विच बीते कल तो नशे अते समाजिक आर्थिक जनगणना दीआं शुरुआतां हो गईआं। सरदार भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री पंजाब ने जिथे इस मामले दे विच लोकां नूं इह यकीन दवाया कि उन्हां दी जानकारी सुरक्षित रहेगी उत्थे जनगणना दे उद्देश दे बारे जानकारी दित्ती कि नशे करन दी हद अते इस दे प्रभाव दा मुलांकण करना पंजाब सरकार दी प्राप्ति रहेगी। जदों कि दूजे पासे विरोधी पार्टियां इस तों बुरी तरह खफा ने। उन्हां दा कहना सी कि इस नाल लोकां दी निशानदेही करके उन्हां नूं तंग कीता जा सकदा है, बिना वजह उन्हां दी गिरफ्तारी भी हो सकती है। दूजे पासे जाने पछाने अंदाज दे विच सरकार ने अपना शक्ति प्रदर्शन करदिआं बीते कल माणयोग राष्ट्रपति दे नाल मुलाकात तां कीती, पर कमाल दी गल इह रही कि उन्हां तों वी सवा घंटा पहला यानी कि 10:40 ते बागी हुए राज्यसभा दे 7 मैंबरां ने राष्ट्रपति नाल मुलाकात करके अपना पक्ष रख दिता, जदों कि उस तों कुछ पलां बाद यानी कि 12 बजे दे करीब अपने पूरे लाम लश्कर दे नाल पंजाब दे मुख्यमंत्री माणयोग राष्ट्रपति कोल पहुंचे। राष्ट्रपति भवन दे बाहर सारे ही MLA इंतजार करदे रहे अते अपने बारे भरोसे योग्यता दर्शाउंदिआं माणयोग राष्ट्रपति तों यह मंग कीती गई कि इन्हां 7 दे 7 बागी संसद मैंबरां दी राज्यसभा दी मैंबरशिप रद्द कीती जावे। भावें इहदे उत्ते कोई भी फैसला हाल दी घड़ी आउंदा दिखाई नहीं दे रहा, पर नाल जुड़े 94 MLAs नूं एक सार्थक सुनेहा देण दी कोशिश वजों इस नूं देखिया जा सकदा है। ते उधर सारे दे सारे नतीजे 5 राज्यां या फिर 4 राज्यां ते एक केंद्र शासित प्रदेश दे विचों हासिल हो गए ने, जिस दे विच पछमी बंगाल दे विच उत्थे भाजपा ने स्पष्ट बहुमत हासिल करदिआं 207 अते बीते समय विच राजसत्ता दे काबज रही तृणमूल कांग्रेस दे 80 सीटां ते सिमट जाण दी गल आई है। कांग्रेस सिर्फ 2 सीटां लै सकी। दूजे पासे तमिलनाडु दे विच नवी पार्टी जाने पछाणे अदाकार विजय दी अगवाई दे हेठां 107 सीटां दे नाल बहुमत लै गई। जेकर गल करिए आपां केरल दी ते केरल दे विचों खब्बे पक्खी जिन्नियां वी पार्टियां ने उन्हां दा सत्ता दे विचों बुरी तरां मनफी होणा अपने आप दे विच फिक्रमंदी वाली गल है, पर उत्थे हाल दी घड़ी 102 सीटां लै के UDF ने बहुमत कायम कीता ते असाम दे विच उही पुराने नतीजे यानी कि BJP लगातारता दे नाल बरकरार रही। पुडुचेरी विधान सभा चोणां दे विच NDA ने 18 सीटां, कांग्रेस ने 3 अते आजाद उम्मीदवारां ने 3 सीटां हासिल कीतियां। हालांकि माणयोग प्रधान मंत्री यह आखदे ने कि गंगोत्री तों लै के गंगा सागर तक कमल खिड़ गया अते हुण पंजाब दी वारी है। देखना होवेगा कि जनवरी या फरवरी 2027 दे विच होण वालियां विधान सभा चोणां पंजाब दे विच आखिरकार BJP किस तरह की रणनीति अख्तियार करती है। जदों कि दूजे पासे पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान आखदे ने कि पंजाब विच भाजपा शेख चिल्ली वाले सुपने वेख रही है। इसे तरह का ही बयान राजा वड़िंग होना ने दिता है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान होने के नाते वह आखते हैं कि पंजाब भाजपा नेता ख्याली पुलाओ ना पकाउण। ते जदों कि इस सारे मामले दे विच एक आधार बनाने वाली संस्था यानी कि RSS की जमीनी मेहनत रंग लियाउंदी दिखाई देंदी है। चिरां तों इस मामले च यतनशील RSS ने आखिरकार पछमी बंगाल दे विच राज सत्ता ते कब्जा कर ही लिया। उधर परसों देर शाम भगवंत मान उन्हां ने पंजाब दे विच 250 पेंडू खेड मैदानां दा वर्चुअल उद्घाटन कीता। उन्हां आख्या कि पंजाब दे पिंडां विचों हुण अंतरराष्ट्री पद्धर दे खिडारी पैदा होणगे अते पंजाब सरकार एक शानदार खेड नीति बनाउण जा रही है। ते उधर ज्ञानी रघुवीर सिंह जिहड़े कि साबका जथेदार ने उन्हां ने गृह मंत्री अमित शाह उन्हां नूं चिट्ठी लिखी है, जिस दे विच उन्हां ने 1984 दे साका नीला तारा दौरान सिख रैफरेंस लाइब्रेरी तों लापता होए दस्तावेजां दा अते नाल ही 328 लापता स्वरूपां दे मामले दी चर्चा कीती है। ते इधर पंजाब दी मंत्री बीबा बलजीत कौर उन्हां ने दावा कीता है कि 4 सालां दे दौरान साडी वड्डी उपलब्धि यह रही है कि 26.68 करोड़ दे कर्जियां दे नाल 1367 परिवारां नूं असीं आत्म निर्भर बना दिता है।
1229 लाभपात्रियां नूं 5.39 करोड़ की सबसिडी सहायता देने का भी उन्होंने चर्चा की है, जिस नाल छोटे ते मध्यम दर्जे के उद्यमियों नूं पंजाब दे विच पैरां सिर खड़े होण दे विच मदद मिली। बिंदर मान उन्होंने ख्याल दे नाल देओ आ गया कि बड़े बैठ सोचते ने कद डुब्बू तारा बन के डाढ़े हथ फड़ाई बैठे आ जिंदगी दे मणके उडन खटोले वांगू उडना तोड़ तूड़ के तीरां नूं राजे बन के दुनिया जितनी रख जिंदाबाद जमीरां नूं। परमिंदर दे इजाजत मेहरबानी। परमिंदर सिंह पापा टोयोटा वालों तुसी हरमन रेडियो ते सुनते हो पंजाबी खबरां। हरमन रेडियो अते रेडियो स्पाइस दियां सांझां बरकरार रहन। सुनते रहो हरमन रेडियो।

कुलदीप मानक, मोहम्मद सदीक, रणजीत कौर, मोहम्मद रफी, शिंदा, दिलशाद अते होर चोटी दे पंजाबी गायकां दे हिट गीत रोज दुपहरे 12 तो 1 बजे सिडनी समय अनुसार हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया ते। अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी।

0: नवे हिट भी सुनो, याद करो पुराने गीत। हरमन रेडियो हिट गीतां दी मशीन।
1: सत श्री अकाल दोस्तो, मैं गगन मसौन हुण हरमन रेडियो ते अपनी आवाज विच पंजाबी दीआं प्रसिद्ध कहानियां कवितावां अते विचार लेके हाजिर हुंदा हां। मेरियां होर वधेरे रचनावां सुनन अते फीडबैक देण लई मेरा यूट्यूब चैनल पंजाबी क्रिएशंस सबसक्राइब करना ना।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੰਬਰ 1 ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ
1: मेरे वीरों भैनों बच्चियों बुजुर्गों ते भाभियों देशां विदेशां च बसदे सारे पंजाबियों प्यारे पेंडू शहरी शादीशुदा छड़े ते कुआरियों झगड़े छड के दो मिनट हसो
2: चट्टा के मुंडे साढ़े नाल है जे चंडा गाड़ के बदमाशी करना हैगा
3: थोड़ा थोड़ा हसना जरूर चाहिए
4: ओ मेरी संदूकड़ी नु ला जंदा मैनू आए दस तेरे बापू जी दा की हाल है
5: बापू जी बारे तेनू पता नहीं
4: ना
5: कोई गल भी नहीं पता
4: की होया
5: दस दिन पहला दी गल है रांझिया चंगे भले रात नू तीन रोटियां खा के सुते सी
4: फिर
5: सवेर नू जाग पे ओ तो बाद खेत गए ने साडे नौकर नाल किसे गल ते झगड़ा हो गया वट के बापू जी ने नौकर दे चपेड़ मारी ते नौकर हर वक्त हाथ च गंडासा रखदा ओ
4: फिर की होया
5: उस दिन ओदे कोल है नहीं सी घर आए ने कहिंदे नहाउणा कदे अगे पिछे ना दुपहरे नहाते बस कहिंदे अज नहाउणा जिवें उदी नहाउणा हुंदा मेरी मां ने पानी दी बाल्टी बाथरूम च रखी आ बापू जी ने बाथरूम दी कुंडी अंदरों लाई आ इकदम आवाज आई मर गए साडा सारा टब्बर भज के बाथरूम दा बूहा तोड़न गया
4: ओए होया की
5: कहिंदे कित्थे मर गए तौलिया तो फड़ा दो ओह तो बाद नहा के बाहर आए ने आउन सार कह दुध पीना कदे ना दुध पीता हो जिवें उस दिन ही पीना होवे मेरी मां ने दुध दा गिलास हाथ च फड़ाया पहली घुट्टी भरी सी
4: की होया
5: कहिंदे फिक्का ही फड़ाता इहदे च मिठा तां फूक दो लवी ओह तों बाद त्रेलियां जाईआं ने डाक्टर कोले लै गए कहिंदे पसीना जिहा आउंदा डाक्टर कहिंदा मेरे समझ नहीं आउंदी पिंडां दे डाक्टरां नूं की पता हुंदा शहर लै गए शहर आले कहिंदे हार्ट अटैक दे लक्षण ने लुधियाणे लै जाओ लुधियाणे वास्ते कार किराए ते करनी सी ओही पिंडां वाली गल कार आला कहिंदा 2000 लऊं साडे घर दे कहिंदे 1500 देणा ओह कहिंदा 2000 साडे घर दे कहिंदे 1500 2000 1500 दे झगड़े च ही गल निबड़ गई
4: ओए की
5: कार आला कहिंदा 1600 तों गल निबड़ो जाओ कार तुर पई हजे 20 किलोमीटर गए सी रांझिया एकदम बुड़क के बापू जी उठे ने कहिंदे रोक लो रोक लो रोक लो ड्राइवर ने गड्डी रोकी है
4: फिर की होया
5: कहिंदा खब्बे पासे ठेके तो पौआ फड़ लियो पौआ पी के टिक गए जिवें टिकना ही हुंदा है ना टिक गए ते ओह तो बाद बस ओही गल जिहड़ी विधि बनी हुंदी है कोई ना कोई लुधियाने तो 20 किलोमीटर पहला एक ट्रक आले नू कार आले ने ओवरटेक करन दी कोशिश कीती मूहरों बस आउंदी सी रोडवे दी उहने लाइटां लाती इधरों कार आले ने लाइटां लाती
4: फिर
5: कार आला तेज सी लै गया कढ के ला हॉस्पिटल दे ना गेट तो ही होए अंदर तो जाना नसीब ही नहीं होया हॉस्पिटल दे डोर तो ही डॉक्टर ने अख देख के रांझा कहता
4: की
5: कहिंदे घोड़े वर्गा लै जाओ इहनू कि होया
6: Harman Radio 24/7
7: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी आहा टॉप गीत

0: കൊട്ടു പറക്കേ
1: സതുക്കേ
0: ശാവാ ഭായി
1: ഒല്ലിയുടെ

धम्मपद सिद्धांत अनुसार दूसरियां दीयां गलतियां बारे ना सोचो, उन्होंने की कीता ते की नहीं कीता इस गल बारे भी ना सोचो। सोचना है ता अपने किते बुरे कमां बारे सोचो, अते विचार करना है ता अपने अणकीते कर्मां बारे विचार करो। चंगे विचारां ले जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: जद भी चाहो सुनो हिट गीत हरमन रेडियो है तुहाडी सेवा विच। पुराने गीतां दी मिठास नवे गीतां दी धुन हरमन रेडियो हिट गीतां दी मशीन।
1: चल चलिए एक दुनिया बनाइए विच होण खुशियां दे रंग, गल्लां करिए दिल वालियां भाईचारे दे संग। सोच परवाज नवा आगाज ते दिल मिलियां दे साज, सुनिए सुनाइए सांझी एक आवाज। ऑस्ट्रेलिया दा 24 घंटे सत्तो दिन चलन वाला पहला पंजाबी रेडियो ट्रूली योर्स।
2: जदो एक खाड़कू सिंह दी मां ओनू ओदे व्याह लई कहिंदी है तां ओ अग्गों की शर्तां रखदा है कि लाड़ी कहो जी होनी चाहीदी है, जरा सुनियो ध्यान नाल।

0: रोटी हजम नहीं होंगी। वरतों गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिल का गरेवाल चक्की आटा ताजा घट कैमिकल की वरतों वाली कणक जिड़ी कि सीधी खेतों चो मिल च लाई जाती आस्ट्रेलिया का बनिया शुद्ध आटा ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो। आटे तो इलावा ताजा बेसन लड्डुआ लई स्पेशल बेसन मल्टी ग्रेन आटा काबली छोले मसलों की दाल चना दाल सोयाबीन ते बादाम भी साडे अपने प्रोडक्शन हैं। वधेरे जानकारी लई विजिट करो गरेवाल गोल्डन ग्रेन .com.au या फोन करो 0428-895-564।
1: आ गया तुहाडा ताया आस्ट्रेलिया दे ब्रिस्बेन चो। ओ आजो आजो ताया जी वेलकम। ताया अज रात साडे कोल ही रहना पऊ थोनू। ओ मैं आ ता गया मैं ता नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ। इथों किथों मिलू इंडिया आले गद्दे? लो ताया आपां लै आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो। पंजाबी फर्नीचर? जी हाँ पंजाबी फर्नीचर इथों मिलदा सारा इंडियन फर्नीचर जो भी तुहानू चाहिदा सब इथों मिलू। मंजे धार्मिक फोटो चादरां साइकिल चूल्हे दातियां रंबे कई सब कुछ इथों मिलू। ताया जी लाया था तू मेरी टेंशन दूर करती। नाले तेरी ताई कहिंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामने दा। लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा। लिखो फिर 2A130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन। आ कॉल कर लियो ताया जी 0404-000536 ते। वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au। नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture।
2: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन आस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो हरमन रेडियो।

रोजाना दोपहरे सिवनी समय 1 to 2 बजे तक असी सुनांगे खबरां। अज दा इतिहास हासरस कमेडी अते टॉप गीत माणो आनंद।

पंजाबी जबान दी खूबसूरती दा कोई पारावार नहीं। इस जबान विच कई शब्द अजिहे ने जिथे एक शब्द ही बहुत वड्डे अर्थ दे दिंदा है। ते अजिहा ही एक शब्द है धमाल, जो किसी भी लोक नाच का आधार है। ते साडे चहेते लोक गायक सरबजीत चीमा ने इस धमाल शब्द नू आधार बना के एक अजिहा गीत सिरजिया, जो धमाल नू पेश करदे ने, परिभाषित करदे ने, पैंदी ए धमाल यारा, पैंदी ए धमाल।

0: ओए पोटू शाह, ओए आज तो बाद तू पंजाब पुलिस दा तवा नहीं लाना, क्योंकि मैं भी पंजाब पुलिस यानी कि PCR दे विच भर्ती हो गया।
1: मेरे प्यो दी तौबा, फिर मैं आज तो बाद पंजाब पुलिस दा तवा नहीं लाऊंगा। पर काके, जे तू PCR यानी पंजाब पुलिस भर्ती हो गया, फिर मैं गीत जरूर गाऊंगा।

0: हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया तुहाडे अंग संग
1: नसीब चाहत असि जितना आया असि हारना चुनी सानू नहीं पता हारना किनू।

0: के धूप में फंसो।
1: चट्टा के मुंडे साढ़े नाल है जो चंडा गाड़ के बदमाशी करना है।
2: थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए।
3: भजनिया तेरे को एक स्कूटर हुंदा सी लमटींग जिहा, की सगा हो?
4: ओ, ओ, ओ लमरेटा लमरेटा।
3: आहो किथे गया?
4: ओ मैं करता किसे दी बेटा।
3: ओ किमे?
4: थोड़े दिन पहला किते मैं लई जांदा सी।
3: अच्छा।
4: ओ नाका लग्या सी पुलिस आले ने, उन्हां ने मैनूं रोक लिया।
3: की कहंदे?
4: मैनूं कहंदे भाई ते काज कदगा। मैं कहा भाई ओ तां मैं बनाए नी।
3: अच्छा।
4: कहंदे फिर तेरी हेलमेट किथे आ? मैं कहा जी ओ वी नहीं मैं लई है। कहंदे फिर तू आप तां लसान सदका। मैं कहा जी लसांस भी है नहीं मेरे को।
3: ना फेर?
4: वो कहंदे दा कटो चलाना।
3: अच्छा।
4: उन्होंने जानते चलान कट के मेरे हाथ चुपड़ा था।
3: हाँ है फेर?
4: वो मैं क्या भाई साहब चलान भुगतन दे किन्ने क रुपये लगन गए? कहंदे भाई 700 रुपया लगू।
3: 700 रुपया?
4: वो मैं चलान वाली कापी ते स्कूटर दिया चाबिया उन्होंने फड़ा दिया। मैं क्या आप ही चलान भुगत लियो। मैं क्या 200 रुपया पल्यो केड़ा पाओ?
3: 200 रुपया पल्यो?
4: ओ मैं क्या 700 दा तुसी एदा चलान कटता ते 500 दा तां मैं खरीदया ही आ।
3: ने भजनिया पिछे की कमरा बनाया होया विच कैमरा रखिया होया।
4: ई जानती है मैनूं पता लग जांदा वी मेरा पहला बिजनेस हुण डाउन हो गया ते दूजे बिजनेस दी मैं तैयारी पहले ही करके रखदा।
3: अच्छा।
4: ए हुण नाल मैं फोटोग्राफर दी दुकान रखी हुई है।
3: ना ए तेरा काम कर ठीक चलदा?
4: ए दा काम मेरा रिश्तेदार नाल भी वधिया चलदा।
3: ओ किवें?
4: क्योंकि जदों कोई मुंडा कुड़ी रिश्ते वास्ते आउंदे आ गल करन, उहनां दी फोटो फिर मैं ताजी खिच के रखदा।
3: ठीक आ।
4: एदे च मैनूं डबल कमाई है।
3: अच्छा।
4: एदे च भी बड़े नमूने आउंदे आ।
3: किवें?
4: अज सवेरे इक निर्णय कार्ज मथे लग गया।
3: हां
4: कहंदा जी मेरा किते रिश्ता कराओ।
3: अच्छा।
4: ते सी कार पक गया। मैं कहा भाई रिश्ता करा रहे पहला अपनी फोटो ला।
3: हाँ।
4: चंगी टोर कड के आया सी।
3: अच्छा।
4: एक 7-8 रुपए की दी घड़ी बनी गुट ते कहंदा जी मेरी घड़ी विच फोटो ते आनी जरूरी है। एक कड़ा पाई फिर पता नहीं केदा मंग के लियांदा होना।
3: अच्छा।
4: कहंदा जी कड़ा भी विच आना चाहिदा फोटो दे। एक ऐनकां लाई मेरे 6 रुपए दियां।
3: अच्छा।
4: कहंदा जी विच ऐनकां भी आनियां चाहिदा, रुपये मैं देने हैं 15। ओ मैं कहा भाई कोई गल नहीं, सारा कुछ तेरा आजू मुंह भावे तेरा रह जाए, बाकी समान तेरा सारा फोटो दे विच। कांतीए मैं फोटो जे खिचनी लग्या सी, पतंदर ने पंगा खड़ा करता।
3: की कहंदा?
4: कहंदा जी थोड़े दिन पहला मैं कड भी जुत्ती समाई आ, ए मेरी फोटो दे विच जुत्ती जरूर आनी चाहिदी।
3: तैं की कहा?
4: मैं कहा भाई भाई जुत्ती दी फोटो भी आज आए कर इनू पैरां च ला के सिर ते रख ला।
5: आनंद रेडियो 24/7।
6: ओ चल छड़ शराब दी गल, क्रिकेट दी गल करदे आ। अपने मुल्क दे विच तां शराब दा वी भैड़ा नशा है।
7: ओए ना ना ना क्रिकेट दी गल ना करी यार। ओए दुनिया दी हरेक गेम दा मैच कोई 60 मिंट च मुक जांदा, कोई 90 मिंट च, कोई 2 घंटिया च। आ क्रिकेट वाले ओना चिर खेडनो नहीं हटदे जिन्ना चिर मीह नहीं पैंदा।
6: ओ नहीं यार मैं गल करदा सी भी आ देख ला फिर अपने क्रिकेट वाले तां मैच वेच ही गए।
7: ओ फिर की हुंदा, अपने मुल्क च केड़ी चीज नहीं बकाऊ। मुंडे वाले दाज पिछे अपना मुंडा वेच दिंदे ने, वोटां वेले लोग अपनियां वोटां वेच दिंदे ने, आ लीडर अपनियां जमीरां वेच दिंदे ने। ओ जे क्रिकेट वाले ने 15-20 मैच वेचते फिर की फर्क पैंदा।
6: ओ नहीं नहीं यार ये देश नाल गदारी है। आ देख ला अखबारां कहिंदियां
7: की
6: भी अपने क्रिकेट वाले लंदन दे एक व्यापारी कोलों लखां रुपया लैके मैच हार गए।
7: ओए ओए अपने क्रिकेट दे प्लेयर अपने देश दी गरीबी नू नहीं देख सकदे, ओ अपने मुल्क नू खुशहाल देखना चाहुंदे ने, इस करके उन्होंने ये कदम चुकिया।
6: कमाल करिए ना यार, ओए मैच हार के केड़ी खुशहाली लियाउणगे?
7: ओए सरकार आप ही तो कहंदी है यार, नित अखबारां च रौला पाउंदी है कि वध तो वध फॉरन करंसी साडे मुल्क च लैके आओ। कुछ देश भगत प्लेयरां ने मसा मसा मैच वेच के लखां डालर इधर लियांदे सी, CBI वाले एवें तंग करी जांदे। ओ जे ओ मैच फिक्स ना हुंदे फिर कहड़ा जित जांदे, ओदे नाल तां चंगा है कि 70-80 लाख लैके टावर नाल हारो।
6: ओ चल हारन दी गल है।
7: हाँ।
6: जेडे मैच फिक्स हुंदे ओ तां हारदे ही है।
7: हाँ।
6: ओए अपने क्रिकेट वाले तां ओदा ही मैच बहुत हारदे है।
7: ओए अपनी क्रिकेट दी टीम बिजली बचाउण दा कोई मौका हथों खोण ही नहीं दिंदी।
6: अच्छा।
7: अर्ज है
6: शेर है?
7: हाँ हाँ
6: हाँ जी।
7: अपनी क्रिकेट दी टीम बिजली बचाउण दा कोई मौका हथों खोण ही नहीं दिंदी।
6: किवें?
7: डे नाइट मैच हुंदा है ते साडी टीम नाइट होण ही नहीं दिंदी। जे किसे ने वक्त दी कदर करनी है ता साडी क्रिकेट टीम वांगू खेले।
6: वाह वाह क्या बात है।
7: वक्त दी कदर करनी सिखनी है ता साडी क्रिकेट टीम वांगू खेले।
6: किवें?
7: 5 दिन दा मैच हुंदा, 2.5 दिन च हार के वेले।
6: यार दक्षिणी अफ्रीका दी टीम दा कैप्टन हैंसी करोनी है।
7: हाँ हाँ।
6: ओ देखला सारा कुछ मन गया।
7: हाँ।
6: अपने वाले तां मनदे ही नहीं,
7: ਓਏ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਛਿੱਤਰ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ?
6: ਕੱਚਾ ਚੋਰ, ਮਤਲਬ ਦਬਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਨ ਗਿਆ।
7: ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਖਾਲੜੀ ਢੇੜ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ?
6: ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਡਿਆ ਚੋਰ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ।
7: ਬਸ ਫਿਰ ਹੈਂਸੀ ਕਰੋਨੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਕੱਚਾ ਚੋਰ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਦਬਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ, ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
6: ਕਿਹੜੀ?
7: ਕਿ ਐ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ
6: ਫੇਰ
7: ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿਓ।
6: ਉਹ ਬਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆ ਮੈਚ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ,
7: ਹਾਂ,
6: ਉਹ ਆ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਜ਼ਖਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵਾਸਤੇ।
7: ਓਏ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਣੇ,
6: ਹੋਰ
7: ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਗਏ ਹੋਣੇ ਕਿ 90 ਲੱਖ ਲੈ ਲੋ, ਕਾਰਗਿਲ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਵੀ ਹਾਰ ਜੋ। ਪਰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮੇ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਤੇ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ।
5: Armin Radio, 24/7.

0: हसन दा समा है हरमन रेडियो ते हास्यां दी बारिश
1: चाचा जी तुसा दे कहन ते त्यौहार कौन खड़सी इस गल दा जवाब मैं घड़सी के बरा दे गुट ते रखड़ी कौन जड़सी
2: ओए गुगी तू इत्थे भी बौड़ गया साने परिवार
1: चाचा तुत सिंह जी तुसा दी हीक गल बहुत माड़ी जी ए घड़ी मुड़ी क्यों भूल सी के तुसा दी असन रिश्तेदारी बारी जी भारी नू मैं थोड़े कनी टैंक मारता हुई पहला रिश्तेदारी पास सी हुण घर आए नू ना बुला सी मैं मुड़ याद करा सी जिस तरह शंटू पिंकी बबली दी झाई असा दी घरवाली है उसे तरह तुसा दे पुत्र जेबी दी बोटी असा दी साली है ओए सोचिया सी जेबी व्यावांगे वोटी ले आवांगे सेवा करावांगे पर दिल दिया दिल विच ही रह गई हुई चुत सिंह जी तुसा दी सेवा मैं करा सी नीलू तू हिंज कर सी मूलियां दे परांठे नाल मखनी लिया सी ब्रेड नाल जैम नहीं ते आमलेट बना सी चौड़े डोंगे विच घी आले रेते नाल त्रै चार कोलियां लिया सी
3: चंगा चाचा जी मैं तो रसोई च वड़ा
4: गुग्गी जी मेनू क्यों कमा मैं की करा
1: ए बालकन तू हिंज कर फटाफट मेज साफ कर
4: क्यों
1: हुई क्योंकि असा दा नाश्ता तुसा दे घर
3: लो जी नाश्ता रेडी है छको
1: हुई हुई हुई हुई हुई हुई हुई
3: लो जी गुग्गी जी एक परांठा होर लो
1: छंटू दी जाई नू धरसी असा वल ते गिये वाले रेते दा डोंगा करसी नीलू तुसा रखड़ी वाले की गल करसी
3: मैं तो थोड़े आने तो पहला चाचा जी नू पूछ रही सी भी जे धरती ते हुण भैणा दी गिनती इसे तरह कटदी रही फिर भरा रखड़ी कित्तों बनाया करनगे
1: डोंट वरी बहना क्यों पासी रिवाज हुण असा वाला ही पैना डोंट वरी
4: तुहाडे कन्नी कड़ा रिवाज बई
1: हुई असा ते टू इन वन रिश्ता बना सी गुट ते रखड़ी ते भाई दूज नू टिक्का घरवाली तो ही लगा सी
2: ओए ओए
5: आ गया तुहाडा ताया आस्ट्रेलिया दे ब्रिस्बेन चो आजो ताया जी वेलकम
6: ताया आज रात साडे कोल ही रहना पऊ थोनू
5: ओ मैं आ ता गया मैं ता नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ इथो किथो मिलू इंडिया आले गद्दे
6: लो ताया आपा ले आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो
5: पंजाबी फर्नीचर
6: जी हाँ पंजाबी फर्नीचर एथो मिलदा सारा इंडियन फर्नीचर जो भी तुहानु चाहिदा सब एथो मिलू मंजे धार्मिक फोटवां चादरां साइकिल चूल्हे दातियां रंबे कई सब कुछ एथो मिलू ताया जी
5: लाया था तू मेरी टेंशन दूर कर दी नाले तेरी ताई कहिंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामण दा लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा
6: लिखो फिर 2A130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन अकाल कर लियो ताया जी 0404000536 ते वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture
7: रोटी हजम नहीं हुंदी वरतों गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिल्स दा गरेवाल चक्की आटा ताजा घट केमिकल दी वरतों वाली कणक जेड़ी के सिद्धी खेतां चो मिल च लई जांदी आस्ट्रेलिया दा बनिया शुद्ध आटा ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो आटे तो इलावा ताजा बेसन लड्डू वाली स्पेशल बेसन मल्टी ग्रेन आटा काबली छोले मसरां दी दाल चना दाल सोयाबीन ते बादाम भी साडे अपने प्रोडक्ट हन वधेरे जानकारी लई विजिट करो garewalgoldengrain.com.au या फोन करो 0428895564
8: अपनी बिजनेस दी तरक्की लई तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस दी ऐड देण लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करण लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन च विजिट करो
9: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन आस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो हरमन रेडियो
10: ਮੁਆਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘੰਟੇ ਦਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।

0: सुनो ते सुनाओ अर्बन रेडियो।
1: वेदा अनुसार जो भी है वो ब्रह्म है, यही ब्रह्म मैं हाँ। चंगे विचारां ले जुड़े रहो अर्बन रेडियो।

0: 24/7।
1: यात्रा बारे आइसलैंड दी कहावत है कि जे एक दिन दी यात्रा ते जाना होवे ता 7 दिन दा राशन लेके तुरना चाहिदा है। विद्या विचारिता पर उपकारी।

लालच बारे स्कॉटलैंड दी कहावत है कि लालची आदमी दियां बाहां लंबियां हुंदियां हन। चंगे विचार विचारो अते जिंदगी विच लागू करो।

0: Carmen Radio 24/7.
1: स्वै बारे बिलारस दी कहावत है कि जद गुआंडी दे घर नू अग लगी होवे ता अपना फिकर करना चाहिदा है। सोहणे विचारां लई सुणदे

जापान दी एक कहावत अनुसार जद तक थोड़े चुल्ले च अग रहेगी उदो तक मेहमान आन तो नहीं हटणगे। लेखक परमिंदर सोडी, किताब संसार प्रसिद्ध मुहावरे। चंगे अते सोहणे विचारां नाल जुड़े रहो हर मंडे।

0: अर्बन रेडियो दिल पंजाबी जज्बा पंजाबी पंजाबी।
1: जवानी ना है आदर्शवाद कठन काम नू हाथ पौन दा अते कुर्बानी दा साड़ी कसवटी ते ओही साहित खरा उतरेगा जेदे विच सोच विचार होवे आजादी दी भावना होवे हुसन दा जौहर होवे रचना दी रूह होवे जीवन दी सच्चाईयां दी रोशनी होवे जेड़ा साडे विच हरकत उवार अते बेचानी पैदा करे सानू सोआए ना क्योंकि हुण सोई जाना मौत दी निशानी होवेगी अजहे विचारां ले जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: 24 घंटे सत्ते दिन
1: जट दे जौ पक्के सकी मानो मारे तक्के।
2: जदो फसल पक के तैयार हो जाए उदो नशे विच आया होया जट मां दा भी निरादर करनो नहीं टलदा।

0: साड़ी अमीर सभ्यता दियां निशानियां, अपना अपना पराया पराया।
1: इस अखाण दा भाव ए है कि पराए पुरुष नू जिन्ना मर्जी मोह कर लवो, ओ अपने दी थां प्राप्त नहीं कर सकदा।
0: मुहावे अते अखाण साड़ी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। हरमन रेडियो, हरमन रेडियो, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया।

0: रेडियो
1: 24 घंटे 7 दिन।
2: एक फारसी कहावत अनुसार जदो अध्यापक प्रेष्ट हो जावे ता सारा संसार ही प्रेष्ट हो जावेगा। चंगे विचारां ले जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

अखियों में लग सके। अखियों में लग

0: खूबसूरत आवाज दा सफर हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया मुड़ हाजिर होने आ एक छोटे जे वक्फे तो बाद सुनते रहो आवाज दी खूबसूरत परवाज हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सेंड अस मैसेज ऑन info@harmanradio.com
1: रोटी हजम नहीं होंगी वरतो गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिल्स का गरेवाल चक्की आटा ताजा घट केमिकल दी वरतों वाली कणक जेडी के सीधी खेतां चो मिल च लई जांदी आस्ट्रेलिया दा बनिया शुद्ध आटा ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो आटे तो इलावा ताजा बेसन लड्डू वाले स्पेशल बेसन मल्टी ग्रेन आटा काबली छोले मसरां दी दाल चना दाल सोयाबीन ते बादाम भी साडे अपने प्रोडक्शन हन वधेरे जानकारी लई विजिट करो गरेवाल गोल्डन ग्रेन .com.au या फोन करो 0428895564
2: ओ आ गया तुहाडा ताया आस्ट्रेलिया दे ब्रिस्बेन चो ओ आजो ताया जी वेलकम ताया आज रात साडे कोल ही रहना पऊ थोनू ओ मैं आ ता गया मैं ता नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ इथों किथों मिलू इंडिया आले गद्दे लो ताया आपां ले आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो पंजाबी फर्नीचर जी हाँ पंजाबी फर्नीचर एथो मिलदा सारा इंडियन फर्नीचर जो भी तुहानू चाहिदा सब एथो मिलू मंजे धार्मिक फोटवां चादरां साइकिल चूल्हे दातियां रंबे कई सब कुछ एथो मिलू ताया जी लाया ता तू मेरी टेंशन ही दूर करती नाले तेरी ताई कहिंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामने दा लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा लिखो फिर 2A130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन आ कॉल कर लियो ताया जी 0404000536 ते वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture
3: अपनी बिजनेस दी तरक्की लई तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो हरमन रेडियो ते अपनी बिजनेस दी एड देन लई जां किसे भी पसंदीदा प्रोग्राम नू स्पॉन्सर करन लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन च विजिट करो
4: मुआफी चाहुंदे हां कि अज असी इस घंटे दा खबरां दा बुलेटिन तकनीकी कारणां करके पेश नहीं कर सके
5: सुनो भी दोस्तों भावे बैठे हुए हो या खड़े हुए हो घर वाली नाल रसे हुए हो या फिर बापू नाल लड़े हुए हो काम ते जा रहे हो या फिर काम तो घर वापस आ रहे हो ओ भाई नहा रहे हो के कुछ खा रहे हो या फिर घर विच रौला रप्पा पा रहे ने न्याणे ओ भाई दुखी ना होवो सब गल्लां छड्डो आ सुनो हरमन रेडियो तो गाने तुसी दोस्तो चाहे पिंडा विच बसदे हो या फिर बसदे हो विच शहरां हरमन रेडियो सदा मंगदा तुहाडियां खैरां।

सज राजा मेल करा दे वे सजना मेल करा दे मिलके दा शेर बगया। एक हुण आपां गाना सुनना इश्के दा मेल करा ही दिता ए गोड़ वाली चाह बहुत पींदा चाचा तेरा गोड़ वाली चाचा तेरा गोड़ वाली चाह बड़ी पींदा दे गुड़ नालो इश्क मिठा ला दे गुड़ वाली चाह घर भी मिल जू पर इश्क नहीं ओनू मिलना ए ला दे। वो कहिंदा मैं सुनना

0: गाना चंगा गाया भाई, ए दुर्गर नीले दा रंग देखे नहीं असि।
1: ताजी सोना सी गीत
0: ए, ते गाना है किसी का बस च मैं सुनिया, ए तर्ज भी इन्हें दुर्गर गिल ने चोरी की थी।
1: ओ ताया चोरी नहीं, इंस्पिरेशन
0: वो ने गाना रुके रुके बे रुके बे माया यहां से आवे किसे लाल नेड़े रहे बे हाय सोने आवे किसे लाल मिल गई। ये गाना ला हमारे देखिए दुर्गा रंगीला चोरी की थी कि नहीं।

0: ला भी सुनो इसको इसकी होए फिर दे आ। वाह भाई वाह, चंगा ताया अंकल आंटी ने गल छेड़ी आ। हाँ हले तो पोते वेदा गई, हाँ हले जो भी सुती पई नु हिच गया भी आऊगी आंटी नु। आंटी नु है भाई रेंगी कसर हरविंदर सोन ने पूरी कर दी आ। वादा गाना यो सोना सुती पई नु हिच गया गादियां होके आऊगे। उठ उठ के तबक तबके उठोगे।
1: हां जी हेलो जी अरविंदर भाजी, गीत तुसी भी बहुत सोना फरमाइश कीती है।
0: आज तो हड़ जो पासे मलकीत दियो अपने चाह भी रहने दे मलकीत चाह हर गए गीत आप अज लगी जाते ये सच पुछे
1: जी जी ताई सही गल
0: मनमोहन वारस ने भी आ गीत सोना सुनाया सी। ए मलकीत ए गीत यार आप सुनना पाई नहीं कहते सिंह जी अज तुम दूर रहो इश्क मुश्क दियां गल्लां चल दियां अज मेरे हिसाब न रेड़ुआ बंद कर दो अज तुहाडे सुन योग गीत नहीं गे सुन योग गीत नहीं आहो नहीं नहीं नहीं सुन वाले कई बार बंदे दे मन च भैड़ आ जांदी मैल आ जांदी भावना ही आ जांदी भावना ही जाग गई ते फिर तो पुत लांबे दा थां बणी जांदा लावे मिल गई ते ला दे पुत भावना जाग गई।

प्रीत भाजी और भी पहुंच चुके ने। प्रीत भाजी कहते ने आ गया भतीजी ताया दलबीर बिशन प्रीत ना ही मेरे ते नवे कट के लेके आउंदा नाम कर दिए किसी ने लै नहीं कहते अज गाना ला दियो तुसी गम तेरे जान वाले सोने वे दस किदा घट हो गे अज मिलकीत पासे हो जा सोने अज साब अपने अपने सजना नू बेलिया नू याद कर दे फिर दे जी सही गल अज हासे आलिया रोन आलिया प्यार आलिया मोहब्बत आलिया गड़ा साइड ते रखो तवियां दे मिलकीत माड़ा घटा ला तेरा हाले तो अज गीत अपना परम जोसन साहब की पसंद है जस बाजवे का भी सुनना सिट मिलकीत पहला प्रीत का भी प्रीत तेरे हल भी आने यह बाजवा एक बार सुन लीए अह बाजवा सुनना ही पहली बार आ परम जोसन की बदौलत ला मिलकीत गीत बाजवे का भी फिल्मा नहीं चाहिए पुत सीधा गाना चाहिए गाना सीधा।

0: थैंक यू भाई, ये अग थोड़ी लाई हुई
1: लव मिल गीत सोना गीत ये भी सोना गीत ताजी सोना गीत गीत सोने दे सोने आज तो सोने दे सुहागा जड़िया मिलगीत लवी टाइम दिया सारिया गल्ला समा जेड़ा ये बलवान बंदे दा समा चंगा होवे ना बहुता ते स्याणे कहिंदे हुंदे आ बई लल्लू कवलियां भी करे ते रब सिद्धियां पाई जांदा समा माड़ा चल जावे फिर तुसीं जो मर्जी करियो हर गल तुहाडी उल्टी जानी हर गल हर क्या उल्टी जाना समा चंगा जो मर्जी तुसीं करी जाओ ओहदे च बरकत आ इस करके स्याणियां ने कहा भी जदों माड़ा समा ना चुप करके थोड़ा बहुत इधर उधर हो के रब दा पाना मन के कट लो चंगे समय दी डी करो जो चंगा समा आवे फिर बड़क बड़क उठे जी लाभल की प्रीत आला भी गाना मिल गया क्या ये ना ते नशा हो ही गया वा हो गया सही गल ता जी वाज जग ने मिल गई तो वाज दी ना कमी रवे प्रीत आ गया अपना प्रीत उतर।

काले नियाम पुरी दे वार ये तो कटेगा ना चा सारे जगत नु बड़ा चढ़िया बड़ा लंबे लंबे वार रखे बैठा है सदके ओ नाई दे ताया जी नाई दी तुसी तारीफ करना ओ भरावा उना दे नहीं जेड़ा कले कले काले नाराजपुरी वाली करदा नाराजपुरी ओ यारा काला नाराजपुरी नहीं है जेड़ा लिखदा ओ नाराजपुरी थोड़ी है निजामपुरी आ चल यार दुनिया राज गाना चंगा ए लिखा लवी उदासी गीता ने मलकी जिते फटी पोच के रख दिती है मां ब्याह जाना ही मुंडे देते मैं लगता कुड़ी वालों ही जाना पैना हूं कुड़ी वाले के साथ जाना पैना गुरबाज सौंकी दे बिना उदास गीता महफल नहीं है मेरी गुरबाज सौंकी जेड़ा वो गा गया ना वो तो वो पता नहीं केड़े खून जे या लगा सही गल ला भी अरविंदर सौ मोगे लिए गीत सुना दे मलकीत जदों याद सजना में तेरी आई हरविंदर मोगे आला ना लागे छेड़ते करके अखाजो हंजू जेड़ा बिसलरी की बोतल दे नाल पानी ना मुंह ना धोता तो मैनू कह दी ला भी ला मलकीत गीत हो मोगे आले अरविंदर लई मोगे आले अरविंदर हां लावे अरविंदर सिंह वाह जगदी ते बिसलरी की बोतल लभ लावे।

0: भी सुनिया गीत गीत सिटी तेरे होने उधर
1: जी पहला होता है जी सैड गीत ने अज तेरी लिया
0: आज ते पता नहीं लगता किधरों साइड आ जाते हैं।
1: लाताया जी अरविंदर पाजी कुछ कहना चाहते ने।
0: हां जी अरविंदर सिंह जी दसो।
2: मैनू लगता ताया जी अपने तो रल मिल के पाप कमा हो गया। अज दास नमाणा मोगे तो सीनियर साहब उन्हां नू तुसी ना दा प्रोग्राम विच लिया ना कोई उन्हां दी पसंदी दा कोई गाना चलाया ना उन्हां दे बोल सुन नू मिले। ताया जी मैनू लगता गनाह हो गया अपने तो पाप हो गया अपने तो ताया जी
0: हो गया
2: भाई साहब नू प्रोग्राम विच शामिल करो
0: करो मिलकी तो उस सियाने कहिंदे बिल्ली मर जाए तो सोने की चढ़ाउणी पैंदी आ इथे दिल ही तुसीं दित्ता मारा हुण की करांगे। आए सिपाही नहीं कहिंदे सिंह जी
1: ताया जी अज आए नी
0: वो आप ही मना कर दिता पहला वे आप जो कहता भी आज गीत चौंदे चौंदे सिटने भाई साहब जी ओद नमोशी मन गए हने मन गए हने कहता आहो जिदा दे गीत सुनाए आदे बंदा हुण बोले की इसे हुण रब आली गल किथे अडजस्ट किथे करन सोचने आली गल
1: अडजस्ट ताया हो जानी है जरा बिरहावा तड़फ वा प्यार रब न जोड़ दो
0: जोड़न जोड़ा छड़िया
1: चला प्रोग्राम ता जी इथे ही समाप्ति करदे आ टाइम अगे आपां बहुत ज्यादा ले लिया जी ते प्यारे दोस्तों कल नू फिर आपां मिलांगे अपने प्रोग्राम दे विच ते हुण आपां चलदे आ ता जी ते जांदे जांदे एक गीत सुना दिंदे आ ते अपना ख्याल रखियो प्यारे दोस्तों रब रख
0: रब रब बड़ी छेती मुकया वे प्रोग्राम
1: गाने 45 रख दिते ता जी मुकना नहीं
0: हाँ जी ज्यादा ही लग गया गाने चल भाई रब रखा भाई।

खूबसूरत आवाज दा सफर हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया मुड़ हाजिर होने आ एक छोटे जे वक्फे तो बाद सुनते रहो आवाज दी खूबसूरत परवाज हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सेंड अस मैसेज ऑन info@harmanradio.com।

0: आजो ताया जी वेलकम। ताया आज रात साडे कोल ही रहना पऊ थोनू। ओ मैं आ ता गया, मैं ता नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ। इथों किथों मिलू इंडिया आले गद्दे? लो ताया आपां लै आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो। पंजाबी फर्नीचर? जी हाँ, पंजाबी फर्नीचर इथों मिलदा सारा इंडियन फर्नीचर। जो भी तुहानू चाहिदा सब इथों मिलू। मंजे, धार्मिक फोटोआं, चादरां, साइकिल, चूल्हे, दातियां, रंबे, कई सब कुछ इथों मिलू। ताया जी लाया था तू मेरी टेंशन दूर करती। नाले तेरी ताई कहिंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा। ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामण दा। लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा। लिखो फिर 2A130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन। आ कॉल कर लियो ताया जी 0404000536 ते। वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au। नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture।
1: रोटी हजम नहीं हुंदी, वरतो गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिलदा गरेवाल चक्की आटा, ताजा घट केमिकल दी वरतों वाली कणक जेड़ी की सीधी खेतां चो मिल च लई जांदी। आस्ट्रेलिया दा बनिया शुद्ध आटा, ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो। आटे तो इलावा ताजा बेसन, लड्डूआं लई स्पेशल बेसन, मल्टी ग्रेन आटा, काबली छोले, मसरां दी दाल, चना दाल, सोयाबीन ते बादाम भी साडे अपने प्रोडक्ट हन। वधेरे जानकारी लई विजिट करो garewalgoldengrain.com.au या फोन करो 0428895564।
2: अपनी बिजनेस की तरक्की लई तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देण लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करन लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो।
3: मुआफी चाहुंदे हां कि अज असी इस घंटे दा खबरां दा बुलेटिन तकनीकी कारणां करके पेश नहीं कर सके।

0: Harman Radio
1: 24/7.
2: एक अंग्रेजी कहावत अनुसार सारे ए पुछदे हन के ओ आदमी अमीर है जा नहीं, ए कोई नहीं पुछदा के ओ नेक है जा नहीं। लेखक परमिंदर सोडी, किताब संसार प्रसिद्ध मुहावरे। चंगे अते सोहणे विचारां नाल जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

अर्मन रेडियो कमाल बा कमाल। योग्यता बारे बेलीज दी कहावत है कि जे मौका ठुकरा दिता जावे

लालच बारे अरमानिया की कहावत है कि पंछी दाणिया नाल फसाए जाते हैं अते बंदे पैसिया नाल। विद्या विचारी तां पर उपकारी

0: happening in music, culture, community events.
1: Harman Radio.
2: The best from UK, Canada, USA and India.
3: This is a special, so completely different.
0: What's happening in music?
4: Classic comedy.
0: Candy.
5: कुछ बोले
6: कौन है भाई सवेरे
7: साले असी भी कोई कच्चियां गोलियां नहीं खेडियां
8: जरा वो कंजर बाहरों आया ओदी संग कर लो
9: कैन आई गो नाउ
10: Harman Radio.

पैसे बारे तमिल दी एक कहावत अनुसार सोने दा बिस्तरा बीमार नूं ठीक नहीं कर सकदा। लेखक परमिंदर सोडी, किताब संसार सिद्ध मुहावरे, चंगे अते सोहणे विचारां नाल जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: धर्म रेडियो ऑस्ट्रेलिया
1: 24 घंटे सत्य दी।
2: सफलता साड़ी पहचान दुनिया नाल करवाउंदी है, ते असफलता सानू दुनिया दी पहचान करवाउंदी है।

0: सुनो ते सुनाओ अरविंद रेडियो।
1: मां कुचजी पुत्रा कजी।
2: जदों किसे नलायक जां बेचजी मां दे पुत्तर सियाणे निकल जांदे हन ते मां दा सारा तोण धो दिंदे हन तां ए अखाण वरतदे हन।

0: आओ सुनावा अखाण सियाणिया दा ज्ञान। लो जी अज दा मुहावरा, गिद्दड़ दाख ना अपड़े आखे थो कौड़ी।
1: कम करन दी शक्ति अपने विच ना होना पर दोष दूजियां सिर देना।
0: मुहावरे अखाण अते पंजाबी बोले। हरमन रेडियो, ऑस्ट्रेलिया।

0: आजो आजो ताया जी वेलकम। ताया आज रात साडे कोल ही रहना पऊ थोनू। ओ मैं आ ता गया, मैं ता नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ। इथो किथो मिलू इंडिया आले गद्दे? लो ताया आपां ले आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो। पंजाबी फर्नीचर? जी हाँ, पंजाबी फर्नीचर एथो मिलदा। सारा इंडियन फर्नीचर जो भी तुहानू चाहिदा सब एथो मिलू। मंजे, धार्मिक फोटोआं, चादरां, साइकिल, चूल्हे, दातियां, रंबे, कई सब कुछ एथो मिलू। ताया जी लाया था तू मेरी टेंशन ही दूर करती। नाले तेरी ताई कहिंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा, ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामण दा। लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा। लिखो फिर 2A130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन। आ कॉल कर लियो ताया जी 0404000536 ते। वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au। नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture।
1: रोटी हजम नहीं हुंदी, वरतो गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिलदा गरेवाल चक्की आटा, ताजा घट केमिकल दी वरतों वाली कणक जेड़ी कि सीधी खेतां चो मिल च लई जांदी। ऑस्ट्रेलिया दा बनिया शुद्ध आटा, ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो। आटे तो इलावा ताजा बेसन, लड्डुआं लई स्पेशल बेसन, मल्टीग्रेन आटा, काबली छोले, मसरां दी दाल, चना दाल, सोयाबीन ते बादाम भी साडे अपने प्रोडक्ट हन। वधेरे जानकारी लई विजिट करो garewalgoldengrain.com.au या फोन करो 0428895564।
2: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो, 24 घंटे 7 दिन ऑस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो। हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन।
3: देश विदेश विच वसते हरमन रेडियो दे प्यारे श्रोतियां नूं दलजीत सिंह वल्लों गुरफते प्रवान होवे। हुण समां है जी दरबार साहिब अमृतसर साहिब तों अज दे बख्शिश होए हुक्मनामे दी कथा विचार दा। हर कथा तू सुन रे मन, शब्द मन वसाए

फतेह। परम सम्मान योग जबर शतर तखत दे मालक दसा पातशाहियां दी जोत रब्बी रहमतां दे भंडारे सर्ब सांझी वालतां दे प्रतीक जुगो जोगे अटल सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सचे पातशाह जी दी पावन हजूरी गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल सतगुरु जी दी गोद अंदर सुभाए मान गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत सतगुरु जी ने कनेरी नजर कीती है जो आप समूह संगत नू ये उदम उपराला बख्शिश कीता है। रोजाना दे बने हुए नेम अनुसार सचखंड श्री हरिमंदर साहिब तो आए पवित्र मुख वाक दी कथा विचार सरवण करन दी भावना दे नाल आप जी सतगुरु जी दे मुबारक चरण परसदिया साहिबां दी गोद अंदर जुड़ बैठ के अमृतमई पावन बाणी दे कीर्तन रूप विच जिते हर जस कीर्तन सरवण करदिया आत्मक लाहे प्राप्त कीते हन। सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पवित्र बाणी दे अनुसार धर्म दी दुनिया दा सब तो श्रेष्ठ ते उत्तम कर्म हर कीरत साध संगत है सिर करमन कै करमा कहो नानक तिस भयो प्राप्त जिस पुरब लिखे का लहना। महावाक अनुसार वडभागी हो जो गुरु चरणा दे विच जुड़ बैठ के परमेश्वर की कीर्ति जिथे कीर्तन रूप विच सरवण करदे आत्मक लाहे प्राप्त कीते गुरमत कथा विचारा शब्द विचार दे रूप दे विच गुरु रामदास सचे पातशाह महाराज जी दे दरों करे बख्शिश होए पवित्र मुख दा दी विचार नूं सरवण करन लई साहिबां दे चरण परस रहे हो। इस तो पहला कि सतगुरु जी द्वारा बख्शिश होए अज दे पवित्र मुख वाक दी विचार प्रारंभ कीती जावे आप समूह संगत करो कृपा बख्शो असीस क्योंकि धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पवित्र बाणी दे अनुसार मिल सत संगत खोज दसाई विच संगत हर प्रभ वसै जीओ। कोई भी बुलारा यह दावा करे कि अपनी अकल अपनी समझ के अनुसार शब्द नूं विचारिया जाएगा तो यह अतकत नहीं होएगी। हकीकत यह है कि जदों गुरु रहमत करता है संगत असीस बख्शदी है ते गुरु की कृपा संगत की असीस दे नाल ही रब्बी महिमा गुरु वडियाई दे विच कुछ किया जा सकता है। सो इस भावना दे नाल आप समूह संगत दे चरणा च बेनती करो कृपा बख्शो असीस मन विरतियां दी एकाग्रता ते रसना दी पवित्रता दे संबंध विच सारी संगत यक जबान

0: धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी अंदर साध संगत जो सतगुरु जी की पवित्र बाणी की अंदरूनी तरतीब दे असीं दर्शन करते हैं ते सत्कारयोग बाणीकार ने बहुतात बाणी जिहड़ी रागां दे विच उचारण कीती है। सारे जानते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर प्रमुख 31 राग हजूर ने वरते ने और उन्हां 31 रागों के विचों अज का जो पवित्र मुख वाक राग बिलावल के अंदर जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अंदरूनी तरतीब के अनुसार 31 के विचों 16वां राग जिदे अंदर शहीदां दे सरताज बाणी के बोहित धन धन श्री गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी की पवित्र रसना तो उच्चारण किया होया अज का यह पवित्र मुख वाक। संखेप बेनती के साध संगत जदों भी किसी राग दे अंदर कोई वचन भी सत्कारयोग बाणीकारा ने उच्चारण किया है तो गुरु ग्रंथ साहिब की संपादना वेले हजूर गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी ने भाई गुरदास जी को प्रमुख लिखारी ला किसी भी उपदेश तो पहला किसी भी शब्द की लिखाई तो पहला उस राग का जड़ा उचेचे तौर पर जिक्र किया है। हालांकि बाणीकार का जिक्र भी जड़ा वो बाद विच आया उस तो पहला राग का जड़ा है वह जिक्र किया गया है। ज्यादा नहीं तो सब संगत सानू इन्नी गल जरूर जड़ी ध्यान विच रखनी चाहिए है कि जे उपदेश तो भी पहला बाणीकार का जिक्र बाणीकार तो भी पहला जे सतगुरु जी राग का जिक्र करते ने तो यकीनन राग की कोई अहमियत जरूर है। सतगुरु कृपा करन असी हजूर के पवित्र बचना के अंदर रागों की जिहड़ी अहमियत है उन्हें पहचान सकीए। सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी महाराज पवित्र बचन बख्शिश करते हैं।
1: मात पिता सोत साथ ना माया।
0: हजूर गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी ने आरंभक बोल वरते हैं मात पिता सोत साथ ना माया। संत संगत माता पिता सोत तो भाव है पुत्र सेंस की है औलाद। हजूर गुरु अर्जन देव पातशाह जी महाराज बख्शिश करते ने कि साडे संसार तो जान वेले भाव के लोग तो अगे परलोक दे विच जिन्हें भी संसारक रिश्ते नाते ने जिदे विच सब तो पहला साडा तुहाडा संबंध जेड़ा है मां बाप दे नाल बनदा है भैण भरावां दे नाल बनदा है अगे गृहस्थी जीवन धारण करने पिछों जीवन साथन या जीवन साथी या औलाद दे नाल साडा संबंध जुड़दा है। जीवन निर्वाह वास्ते असी उदम उपराला करदे हां ते उपजीविका कोई ना कोई आधार बना के असी अपने जीवन निर्वाह वास्ते लोड़ींदे जिहड़े ने आर्थिक साधन जिहड़े आ जुटाउंदे हां। इहदे विच कोई शक नहीं कि इह सब चीज़ां जिहड़ियां ने साडे जीवन निर्वाह वास्ते जरूरी ने पर परलोक दे विच इन्हां दे विचों कोई भी जिहड़ा है अगे सहाई नहीं होएगा। सतगुरु जी दी पवित्र बाणी दा पवित्र संदेश मात पिता सुत साथ ना माया ये जिन्हें भी साडे संबंध ने यह सब संबंध साडे संसार दे संबंध ने क्योंकि दुनी सुहावे बाग दे विच जदों असी रब्बी हुक्म दे विच जन्म लैने आं ते सब तो पहला बाणी के अनुसार उदरे माहे आए किया निवास माता कह मन बहुत मिगास साडा माता पिता दे नाल संबंध जुड़दा है अगे परिवार दे जीआं दे नाल साडा संबंध जुड़दा है। पर इहदा भाव यह नहीं लैणा कि असी परिवार दे नाल जां संसार दे नाल कोई संबंध जिहड़ा नहीं रखना। गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज जी दे चलाए हुए निर्मल पंथ अंदर इसे गल की वडियाई है कि इत्थे परिवार ते संसार दे विच रहिंदिया होया निरंकार ने नाल जुड़ के रहण दा उपदेश है। गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज जी दे दर घर दी इहो वडियाई है कि सतगुर की ऐसी वडियाई पुत्र कलत्र विच्चे गत पाई। पर उपदेश हजूर ने बख्शिश कीता है कि संसार तो अगे निरंकार दे घर तक इन्हां दे विच्चों कोई भी जड़ा है साड़ा सहाई नहीं बनेगा। पंचम गुरदेव धन श्री गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी के पवित्र बचन आप संगतां दी रसना ते चढ़े हुए बोल ने, जय मात पिता सुत मीत ना भाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। इस तरह सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी ने जैतसरी राग दे अंदर पवित्र बचन बख्श के साडा मार्ग दर्शन किया है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे मुबारक अंग 700 ते जदों असीं जैतसरी राग अंदर गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे पवित्र बचना दे दर्शन करदे हां, कोई जानै कवन ईहा जग मीत, जिस होए कृपाल सोई बिद बूझै ताकी निर्मल रीत। कहिंदे कोई विरला ही जानदा है गुरु की कृपा दे नाल भी इस संसार दे अंदर साडा जान वेले सदीवी जेड़ा मित्र साथी वह कौन है। कोई जानै कवन ईहा जग मीत, जिस होए कृपाल सोई बिद बूझै ताकी निर्मल रीत। फिर सतगुरु जी ने उत्थे वचन किया इन्हां रिश्तियां दे संबंध विच। हजूर कहिंदे मात पिता बनिता सुत बंधप इष्ट मीत अर भाई, सारे रिश्ते जिहड़े ने इक्को ही पंक्ति दे विच गिण दित्ते, चाहे माता पिता है भैण भरा है चाहे साख संबंधी ने सज्जन मित्र ने। मात पिता बनिता सुत बंधप इष्ट मीत अर भाई, पूर्व जन्म के मिले संयोगी, जिहड़ा इत्थे आके साडा तुहाडा सब दा संबंध बनता है ना, इस संबंध का आधार गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज कहिंदे कि कोई पूर्वला संयोग है जिदे करके इत्थे साडा नाता साडा संबंध इन्हां जीआं दे नाल जुड़दा है। पूर्व जन्म के मिले संयोगी। पर अगली गल कहिंदे अंत को ना सहाई, पर अंत वेले हकीकत यह है भी इन

दे विच्चों किसे ने भी साढ़े सहाई नहीं होना। तो फिर सतगुरु जी जे इन्हों दे विच्चों सहाई किसे ने नहीं होना तो तुसी कृपा करो भी सहाई किन्ने होना है, साडा लोक परलोक सफला किदा होएगा। सतगुरु जी ने उत्थे फिर निर्णय दिता है कि हर के संत प्रे प्रीतम प्रभ के ताक है हर हर गाइए नानक इहा सुख आगे मुख उजल संग संतन कह पाई है। जिहड़ा गुरमुखां दी संगत दे विच रब्बी प्यारियां दी संगत दे विच जुड़ के हरी हरी जपिया, जिहड़ा उस मालक नूं चेते कीता, ओ बस कीता होया याद उस मालक नूं सिमरिया होया उस मालक नूं चेते कीता होया ही साडे लोक परलोक दा जिहड़ा साथी बनदा है। रही गल ए संसारिक रिश्तियां विचों

0: सब दुख मिटाया। तमाम जिन्हें भी साढ़े दुख ने आत्मिक जीवन नाल संबंधित, जो असी साध संगत करते हैं, साध संगत तो भाव असी गुरमुखां दी संगत कीती, गुरु दी संगत कीती, गुरु दी संगत दे विचों जेड़ा है साढ़े आत्मिक जीवन का यह दुख जेड़ा है यह खत्म हुंदा है। जिथों तक इन्हां संसारिक रिश्तिया नात्या का संबंध है, साध संगत बाणी दे अंदर हजूर ने कृपा करके सानू सोझी बख्शिश करदे आ, ऐसे वचन उचारण कर साडा मार्गदर्शन कीता कि भलिया ये जिन्ने भी संसारिक रिश्ते नाते ने, एक तां इन्हां दा संबंध जेड़ा है ना उदों तक है जदों तक साडे अंदर सवासां दी डोर जिहड़ी है चलदी है, जिहनूं कबीर साहिब कहिंदे जब लग तेल दीवे मुख बाती तब सूझै सब कोई, तेल जले बाती चहरानी सोना मंदर होई, रे बौरे तुहे घरी ना रखै कोई तू राम नाम जप सोई। भाव यह कि जदों बीते समय दे विच उदाहरण दे के कबीर साहिब कहिंदे भी जदों असीं अपने घरां दे विच रोशनी दे प्रबंध वास्ते इलैक्ट्रॉनिक साधन साडे कोल नहीं सी, असीं दीवा जगा के घर दे विच चानण करदे सी, हुण दीवे विच जदों तक तेल है जदों तक उहदे विच बत्ती है दीवा रोशनी दे रहा है सानू सारियां चीजां घर दीआं दिखाई देंदियां ने, पर जिवें ही तेल मुकदा है बत्ती सड़ जांदी है, बत्ती बुझ गई ते हनेरा होण दे नाल फिर सानू कुछ भी दिखाई नहीं देंदा। ठीक इसे तरह उदाहरण दे के कबीर साहिब कहिंदे ये जिन्ने भी रिश्ते नाते ने संसार दे, सच ये है भी जदों तक अंदर सवासां दा तेल है, जदों तक अंदर वह परमात्मा दे हुक्म विच बत्ती जगदी है उदों तक सारे अपने अपनी दिखाई देंदे ने, पर सच ये है भी जिदन तेल जले बाती चहरानी सोना मंदर होई, फिर अगे हकीकत जिहड़ी है साडे पल्ले फिर पा दित्ती, कहिंदे कि रे बौरे तुहे घरी ना रखै कोई, जिन्हां दी खातर परमेश्वर नूं भुला के सारी जिंदगी जिहड़ी सी इन्हां दे पिछे गुजार दित्ती। सच ये है जिदन अखीरी वेला अखीरी घड़ी आउंदी है कहिंदे इन्हां दे विच्चों कोई भी जिहड़ा घड़ी पल रखण वास्ते भी तैनूं तैयार नहीं हुंदा, इस करके रे बौरे तुहे घरी ना रखै कोई, राम तो राम नाम जप सोई। सहाई होना है केवल एक परमेश्वर दे नाम ने, ते परमेश्वर दे नाम संबंधी सानू सतगुरु जी ने फैसला दिता है भी साध संग सब दुख मिटाया, गुरमुखां दी संगत दे विचों जिहड़ा ये आत्मक तौर ते जीवन विच पैदा होने वाला दुख है वह कटिया जांदा है, क्योंकि गुरमुखां दी संगत विच लोक भी सुखिया हुंदा है पर लोक भी सुहेला हुंदा है।
1: रब रहिया प्रभ सब मह आपे।
0: सतगुरु गुरु अर्जन दे पातशाह जी महाराज अगले वचन अंदर बख्शिश करदे रब रहिया प्रभ सब मैं आपे। परमात्मा दी सर्व व्यापकता दे संबंध विच जिक्र कीता है कि वह परमात्मा जो सर्व व्यापक है सारे जीवां दे अंदर जोत स्वरूप सारिआं दे अंदर वह विद्यमान है। आप जी रब्बी बाणी दे विचों जदों गुरु अर्जन साहिब जी दे पवित्र बचना दे दर्शन करदे हो कि सगल बनस्पत मैं बैसंतर सगल दूध मैं घीआ ऊच नीच मैं जोत समाणी घट घट माधो जीआ, ओ परमात्मा

0: वो व्यापक है ते किस तरह व्यापक है, जिस तरह सगल बनस्पत मैं बैसंतर, जिवें समुची बनस्पति दे अंदर जिहड़ी अग मौजूद है लेकिन वह गुप्त रूप दे विच है, अदृष्ट रूप दे विच है, जिवें दुध दे विच घिओ दी होंद है लेकिन वह अदृष्ट रूप दे विच है, ठीक इसे तरह समुची कायनात दे अंदर ही वह परमात्मा रमिया होया है। और केवल साहिब सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे पवित्र बचन ही नहीं, एक जगह तां हजूर गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी ने वचन किया है, वो कहिंदे भी समुची लोकाई दे ही रब्बी याद विच जुड़न वाले रब्बी प्यारे पुकार पुकार के इस गल दा जिक्र करदे ने भी घट घट मैं हरजू बसै संतन कहो पुकार, जेड़ा परमात्मा सर्व व्यापक है
1: हर जप रसना दुख ना व्यापे,
0: हर जप रसना दुख ना व्यापे, उस सर्व व्यापक परमात्मा नूं ऐ प्यारिया तू रसना दे नाल जप, रसना दे नाल उस परमात्मा नूं सिमर, ते सिमरन दा वाधा जीवन विच होएगा कि हजूर कहिंदे दुख ना व्यापे, तेनू कोई दुख व्यापेगा नहीं, भाव के कोई दुख तेरे ते अपना जोर नहीं पा सकेगा। जिथों तक साध संगत दुनियावी तौर ते दुखां दी सुखां दी कहानी है, धन गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज जी ने कृपा कीती सानू ये गल समझाई है प्यारे है, जिवें सभ्यक समाज दे विच ना विचरण वास्ते साध संगत असीं अपने पंज भूतक शरीर दे उत्ते लिबास पहनदे आ, कपड़े पहनदे आ, तो सुभाविक है कि जदों कोई कपड़ा मलीन हुंदा है असी इशनान पान उपरंत दूजे वस्त्र पहन लैने, फिर मैले हुंदे ने असी इशनान पान उपरंत जिहड़ा अगला वस्त्र पहन लैने। दुनियावी तौर ते जिहड़ा दुख जां सुख है कि हरेक मनुख की जिंदगी का अटुट अंग है, सतगुरु गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज जी के पवित्र बचन के सुख दुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख। दुख का आना जीवन में होर गल हुंदी है लेकिन दुख व्याप जाना जिहड़ा है ना वह होर गल है। दुख का आना तो दुख का व्याप जाना वक्रा वक्रा किदा है, सच यह है कि आम मनुख की जिंदगी विच ही नहीं, जदों असी शरीरक तल ते जिहनूं असी दुख की परिभाषा दिंदे आ भी यह दुख की घड़ी है, दुख का समा है, सत संगत धर्म की दुनिया विच धर्मी अवतारी पैगंबरी पुरशां दे रब्बी प्यारियां दे जीवन विच भी जदों असीं देखदे आं उह दुख जिहनूं असीं संसारी अक दे नाल कहिंदे आ भी दुख दी घड़ी है ते उह तां सारिआं दे जीवन दे विच आउंदा है, पर जदों रब्बी प्यारियां दे जीवन दे विच उह घड़ी आउंदी है ना रब्बी सिमरन दी बदौलत उह दुख उहनां दे उत्ते फिर अपना जोर नहीं पा सकदा, उह दुख दे प्रभाव दे विच नहीं आउणगे। उदाहरण दे तौर ते साध संगत जदों असीं अरदास दे विच्चों तीसरे पदे दे दर्शन करदे आं कि जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दित्ते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सवासा संग निभाही। हुण इह जिहड़ा पवित्र अरदास दा तीसरा पदा है बहुतात असीं यह कह सकते हैं भी साडे शहीदी इतिहास दे नाल संबंध रखदा है। 18वीं सदी दे विच जिहड़ी समय दी हुकूमत वल्लों एक जुल्म दी हनेरी चली उस जुल्म दी हनेरी दे दौरान जिहड़े तशद्दद साडे पुरखियां ने अपने पिंडे दे उत्ते सहारिया जिहड़ा उह जुल्म उहनां हाकमां दा अपने पिंडे ते सहारिया उहदी एक तस्वीर है अरदास दा जिहड़ा इह तीसरा पद है। पर साडा इतिहास कहिंदा भी इहो जे जुल्म ते कष्ट सहारदिया होया भी साडे पुरखे जदों सोदर दे वेले अरदास करदे ते जिहड़े शब्द उत्थे अरदास दे विच कहे जांदे सी साडे इतिहास दे विच मिसाल है भी जदों मीर मन्नू दी जेल दे विच उन्हां सिंघणियां दे उत्ते गुरु कीआं बच्चियां दे उत्ते जुल्म कीते गए ते मीर मन्नू इह देखणा चाहुंदा सी भी जदों अरदास दे विच इह शब्द वरतदियां ने ना भी सतगुरु तेरे भाणे दे विच चार पैर दिन सुख का बतीत होया ते चार पैर रात आई है ते तुसी कृपा करनी सुख की बतीत करायो। वह हैरान इस गल नूं लैके सी भी जिन्हां दीआं गोदियां दे विच्चों मैं उन्हां दे बच्चे दुध चुंघदे बाल ਉੱਚੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਤੇ ਨੇਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਦਿੱਤੇ, ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਕੇ ਵੀ ਪਾਠ ਰਹਿ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੈਰ ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚਾਰ ਪੈਰ ਰਾਤ ਆਈ ਹੈ ਸੁੱਖ ਦੀ ਬਤੀਤ ਕਰਾਣੀ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂ ਸੁੱਖ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਆਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਆਤਮਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਆ ਦੁੱਖ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਵ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਮੈਂ ਆਪੇ, ਹਰ ਜਪ ਰਸਨਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵਿਆਪੇ। ਐ ਪਿਆਰੇ ਆ ਤੂੰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਬੈਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਦ ਵਿਆਦ ਉਪਾਦ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵਿਆਪੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਧ ਗਾਇਣ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਰਹੱਸਮਨ ਉਪਜਿਓ ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਪਲਾਇਣ। ਜਪਣ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪੇਗਾ ਤੇ ਵਾਧਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਧ ਗਾਇਣ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਖੇੜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਪਲਾਇਣ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਜਪ ਰਸਨਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵਿਆਪੇ,
1: ਰਹਾਓ
0: ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ

0: दुख बहुत तप्त व्यापिया। मनुखी मन दे अंदर सारे संसार दे अंदर ही हजूर गुरु अर्जन दे पातशाह महाराज बचन करते ने कि यह जेड़ी तृष्णा है, माया दी एक जेड़ी त्रेह है, मायक पदार्थां दी जेड़ी भुख है, सारा संसार ही इस भुख का जेड़ा है वह शिकार है। तो साध संगत तृष्णा वो रोग है। जो आप जी अमृत वेले आनंद साहब की पवित्र बाणी के दर्शन करते जे गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज जी ने वचन किए कि दुनी सुहावे बाग विच, जो असी रब्बी हुक्म विच जन्म लैने बाणी के वचन ने, जा तिस भाणा तां जम्मिया परिवार भला पाया। सानू इस दुनी सुहावे बाग विच आके जिहड़ा साडे आत्मक तौर ते पहला रोग व्यापदा है ना, वो की है? यह तिशना का रोग लगता है। हजूर ने गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने इस रोग नू पहला रोग आख्या कि यह तिशना वड्डा रोग लगा, यह सब तो पहला जिहड़ा साडे जीवन विच व्यापद है। हुण इस तृष्णा का शिकार कौन कौन ने? हजूर गुरु अर्जन देव पातशाह कहिंदे सारे जगत नू ही तृष्णा ने अपना प्रभाव जिहड़ा उह पाया होया है। सत संगत राग गौड़ी भगत कबीर साहब का एक पवित्र उपदेश है जिहदे विच कबीर साहब कहिंदे विख्या व्यापी सगल संसार, विख्या लै डूबी परिवार। कबीर साहब कहिंदे सारे संसार नू ही कहन लगे इस तृष्णा ने अपने प्रभाव दे विच कीता होया है। रे नर नाव चौड़ कत बोड़ी, हरस्यों तोड़ विख्या संघ जोड़ी। फिर उहदे विच उहनां ने अगे जिक्र कीता, व्याख्या स्वरूप उहनां वचन कीते, कहिंदे सुर नर दादे लागी आग। ए तृष्णा नूं तशबीह दित्ती एक अग दे नाल, ते कहिंदे इस अग दा शिकार कौन ने? की मनुख की देवते? भाव कहन लगे साधारण विरति दैवी गुणा दे धारनी वी कहन लगे इस अग दा शिकार। सुर नर दादे लागी आग कहिंदे, पर इस तृष्णा दी अग तों जिहड़ा ना बचा किस तरह हो सकदा है? निकट नीर पास पीवस ना झाग। बैरूनी तौर ते अग लगे ना, ते सब तो पहला साध संगत असी इस गल नू सारे महसूस करदे आ वी पानी पाईए ते अग बुझदी है, पानी पा दईए अग बुझदी है। कबीर साहब कहिंदे वी जिहड़ी अंदर तृष्णा दी अग लगी है ना, ये तृष्णा की अग भी जिहड़ी है परमेश्वर दे नाम जल दे नाल बुझेगी, पर पशु बिरति मनुख इस गल नू समझदा नहीं। सतगुरु की पावन बाणी के अनुसार वह नाम का कूटा जिहड़ा है ना वह अंदर भरिया पिया, अमृत कूटा जिहड़ा अंदर साडे ही है। हुण उस खूह दे विच्चों जिहड़ा है ना निर्मल जल कढ़ना किदा, जिहदे नाल तृष्णा की अग बुझनी है? कबीर साहब कहिंदे उहदा इक्को हल है, जिवें अग लगे बहरूनी तौर ते असीं पानी दी लोड़ नूं महसूस करके पानी पा के अग बुझाउण दा यतन करदे आं, अंदरले उस नाम अमृत दे खूह दे विच्चों निर्मल जल कढ़न वास्ते अमृत रूपी नाम कढ़न वास्ते कहिंदे उहदा इक्को हल है, चेतत चेतत निकसियो नीर। जिद्दां जिद्दां असीं परमात्मा नूं सिमरांगे उहदे सिमरन दे विच्चों ही दात मिलदी है, तिवें तिवें अंदरों नाम अमृत प्रगट हुंदा है। जिन्नू सतगुरु जी ने वचन कीते चेतत चेतत निकसियो नीर, सो जल निर्मल कथत कवी। साडी मुश्किल ए है सत संगत के जदों तृष्णा दे अधीन होके साडे मन दे अंदर किसे तरह दी कोई मंग उठदी है, असीं उस मंग नूं पूरियां करन वास्ते यतन करदे आं वी इस मन दी इह मंग पूरी कर दित्ती जाए, पर उहदा नतीजा की निकलदा है कि सैंस खट्टे लग तो उठता वै तृप्त ना आवै माया पाछै पावै। साडी मुश्किल ए है कि मन दी उस लोड़ नूं पूरियां करन वास्ते मन दी उह लोड़ पूरी कीती जाए, शायद इह मन दी भुख मिट जाए। पर जपजी दे आरंभ विच ही सतगुरु ने फैसला दित्ता है कि भुखियां भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां भार। इस भुखे मन नूं रजाउण वास्ते पदार्थां दे भार भावें जिहड़े ने भंडारे दे अगे रख दित्ते जाण इह कदी नहीं रजेगा। हुण अग बुझदी कित्थे है? हजूर ने निर्णा दित्ता है तिखा भूख बहुत तपत व्यापिया। ए जिहड़ी तृष्णा दी तपस्या सारे संसार नूं ही अपने प्रभाव दे विच कीता होया है।
1: शीतल भए हर हर जस जापिया।
0: हजूर ने अगे फैसला दिता भी ए तृष्णा दी अग बुझदी कितै है। हजूर कृपा करदे शीतल भए हर हर जस जापिया। जिवें जिवें गुरु कृपा ते गुरमुखां दी संगत दे विच रसना दे नाल परमेश्वर दा नाम जपिया, जपदिया जपदिया अंदर जिहड़ी उह ठंड वरत गई, जिनू हजूर कहिंदे तृष्णा बूझे हर कै नाम महा संतोख होवै गुर बचनी, प्रभ सिउ लागै पूर्ण ध्यान।
1: कोट जतन संतोख ना पाया।
0: सतगुरु गुरु अर्जन दे पातशाह महाराज वचन करदे कोट जतन, कोट तो भाव है करोड़ा, जतन दा अर्थ है युक्तियां तरीके वरत के। जे असीं बहरूनी तौर ते जेड़ा रबी उपदेश है उन्हों एक पासे रख के होर जिन्ने मर्जी यतन कर ले जान, पर किसे यतन दे नाल भी सतगुरु ने निर्णय दिता है करोड़ा यतन करन दे बावजूद भी जीवन दे विच जेड़ा संतोख नहीं आ सकता। ईरान सूफी संत शेख शादी जी का यह मानना है, कहिंदे देखो जेड़ा तृष्णालु वृत्ति दा धारी मनुख है ना, उहदे अंदर दी तपश नूं शांत किदां कीता जा सकता है। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾਈ ਯਾਦ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਪਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਖੁਦਾਈ ਯਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਤੋਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਖੁਦਾਈ ਯਾਦ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੈਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਹੋਰ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਨਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਪਾਈ, ਜਿਉਂ ਪਾਵਕ ਈਂਧਨ ਨਹੀਂ ਧਰਾਪੈ ਬਿਨ ਹਰ ਕਹਾਂ ਆਗਾਹੀ। ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ, ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੁੱਕਾ ਬਾਲਣ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਅੱਗ ਬੁਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੱਚੇ। ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਇਹ ਦੋ ਹੋਰ ਮੰਗਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਯਤਨ ਤੋਂ ਕਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
1: ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਕਾਇਆ।
0: ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ, ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ, ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੰਡਿਤ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੇ ਬਾਜਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਪਿੱਛੀ ਚੰਦ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਸੀ, ਆਮਦਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਧੀਕ ਸੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਰਥਿਕ ਟੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿ 500 ਮਣ ਬਾਜਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਚੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁਨਾਫਾ ਕੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਉਸ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਤੰਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਜਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ जो संगत सिल फुल सेवा कर सेवा दिता जाए सत संगत ओ सौ सौ मन करके बाजरा इतने भेजता रहा पर समा पा के जो 500 मन बाजरा गुरु घर के लंगर च दे चुका है सतगुरु जी वालों हाले तक ओन माया मिली कोई जिन्ना चिर ओन माया नहीं मिली वापस नहीं जा रहा ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਵਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਤੇਰੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਾਜਰਾ ਵੇਚਾਂਗਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ते आज गंगा राम मन त्रिपताना हर गुण गाया गुरु दी संगत करदियां करदियां अंदर इना तृप्त हो गया कहिंदे सतगुरु जिद्दन आया सी उदन सोच एहो ही सी वी गुरु घर विचों मुनाफा खट के आउणा है पर संगत करदियां सेवा करदियां करदियां तुहाडे मुखारबिंद तों वचन सरवण करदियां कहिंदे हरी जस करदियां करदियां अज अंदर दी बिरती हो गई सतगुरु ये 500 मन बाजरा मेरा सेवा दे विच ला दिओ मेरी हुण मंगण वाली बिरती नहीं जे त्रुठे हो ना ते मेरे ते ए कृपा कर दिओ मेरे अंदरों मंगण वाली जिहड़ी बिरती है ना बिलकुल खत्म हो जाए त्रुठे हो ते कृपा करो मैनूं सिक्खी दी दात बख्श करो उस गंगा राम नूं सतगुरु जी ने साध संगत त्रुट के सिक्खी दी दात भी बख्शिश की ते बठिंडे दे इलाके दा प्रचारक थाप ते उन्हूं उस इलाके दे गुरमत प्रचार दी सेवा भी बख्शिश की ए है बरकत जदों असी गुरमुखां दी संगत गुरु दी संगत करदे आ ते गुरु दी संगत दे विच जदों गुरु गुरु हरी हरी जपिया जांदा है ना ते अंदर जिहड़ी तृष्णा दी अग है ओह गुरु कृपा दे नाल बुझ जांदी है
1: देहो भगत प्रभ अंतर जामी
0: सतगुरु गुरु अर्जुन दे पातशाह ने फिर अखीर ते आके कृपा कीती देहो भगत प्रभ अंतर जामी हे परमात्मा हे अंतर जामी मेरी तेरे चरण अरदास है मेनू अपने दरों करो भगती दी इबादत दी बंदगी दी दात बख्शिश करो जी
1: नानक की बेनंती स्वामी
0: धन गुरु अर्जुन दे पातशाह जी महाराज सतगुरु गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज जी दा नाम वरत अरदास बेनती दे बोल कहिंदे ने नानक की बेनंती स्वामी हे मेरे मालिक मेरी तेरे चरणा दे विच इहो अरदास है कि मेनू अपने दरों करो नाम दी दात बख्शिश करो जिस नाम दी दात दी बख्शिश दा सदका ही अंदरों तृष्णालू बिरती दा खात्मा हो सकदा है सतगुरु कृपा करन अज दा जो पवित्र मुख वाक ओदे अखीर ते आके जिहड़ी सतगुरु ने अरदास कीती ओ अरदास दे बोल साडे सारिआं दी जिहड़ा है आत्मिक जीवन दा हिस्सा बनन ते विसर नाही दातार अपना नाम देहो गुण गावां दिन रात नानक चाहो देहो अरदास करनी है के दाता जी बस इन्नी कृपा कर दिओ भी अंदरों मंगण वाली बिरती ही जिहड़ी है ओह खत्म हो जाए बिण तुद होर जे मंगणा सिर दुखां कै दुख दे नाम संतोखिया उतर है मन की भुख सो सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी दे दरों घरों जो पवित्र मुख वाक बख्शिश होया गुरु कृपा संगत दी असीस सदका उस पवित्र वचन दे असी विचार रूप च दर्शन जिथे कीते ने सत संगत इस स्थान ते जो लड़ीवार गुर शब्द विचार दा निर्मल प्रवाह जारी है उस लड़ी दे अनुसार गुरु अर्जन दे पातशाह महाराज जी दी ही पवित्र रसना तो उच्चारण कीते मारू राग अंदर उस पवित्र बाणी दी विचार चल रही है सो आओ अगले दे कुछ पलां दे विच लड़ीवार गुर शब्द विचार दे अनुसार अखरी अर्थों दा पवित्र बचना दे दर्शन करिए जी
1: मारू सोलहे महला पंजवा
0: सत संगत लड़ीवार गुर शब्द विचार दे अनुसार ए पवित्र उपदेश राग मारू जो गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दा 21 नंबर राग है भाई कान सिंह जी नाभा जिक्र करदे ने कि अक्सर युद्ध विच जाण वेले ते किसे दे चलाने समय इन्हां पवित्र मारू राग दे पवित्र वचनां दा जिहड़ा सीगा ओह पाठ कीता जांदा जां गायन कीते जांदे सी इतिहास गवाही भरदा अज बाबा वीर सिंह जी नरंगाबाद वाले उन्हां दा भी शहीदी दिहाड़ा है। ते बाबा वीर सिंह जी नरंगाबाद वाले जदो नरंगाबाद उन्हां दे अस्थान दे उत्ते डोगरियां दी फौज ने हमला कीता सी ना ते तोप दा गोला उन्हां दे पट ते वज्जा सी ते आखरी साहां दे उत्ते सत्कारयोग बाबा वीर सिंह जी नरंगाबाद वाले उन्होंने भी अपने हजूरी सेवकां दे विचों भाई जस रबाबी सी उन्हां दे अस्थान ते उन्हां हुक्म कीता सी कहिंदे भाई जस मारू राग दा पवित्र वचन जिहड़ा पढ़ो। भाई जस ने उस वर्दियां गोलियां दे विच वी सत संगत बाबा वीर सिंह जी नरंगाबाद वालियां दे कहण ते मारू राग दा पवित्र वचन जिहड़ा सी अपनी रसना तों पढ़िया मान मोह अर लोभ विकार बीओ जीत ना ढालियो नाम रतन गुणा हर बंजे लाद वखर लै चालियो सेवक की ओड़क निभी प्रीत जीवत साहिब सेवे अपना चलते राख्यो जीत। मेरे कहण तो भाव के सत संगत गुरमुख विद्वाना दा मनना भी मारू राग जिहड़ा है युद्ध समय ते चलाने दे समय जिहड़ा सी साडी एक परंपरा सी जी इहदा पाठ कीता जांदा है। हजूर गुरु अर्जन दे पातशाह ने मारू राग दे अंदर 16 तो भाव है सत संगत 16 पदियां पवित्र वचन ने महला पंजवां गुरु अर्जन दे पातशाह दी रसना तो उच्चारण कीते हुए हन।
1: एक ओंकार सतगुर प्रसाद
0: आरंभ विच संखेप मंगल परमात्मा एक है एक रस सर्व व्यापक है ते उस एक दे नाल अभेदता सतगुर दी कृपा नाल हुंदी है।
1: करै आनंद आनंदी मेरा
0: सतगुरु गुरु अर्जन दे पातशाह बख्शिश करदे ने कि ओ परमात्मा जो आनंद दा मालक है ते ओ आप ही सरगुण स्वरूप दे अंदर सारे जीवां दे विच व्यापक होके आप ही आनंद मान रहा है।
1: घट घट पूरन सिर सिर नबेरा
0: परमात्मा दी होंद संबंधी साध संगत अन मत दे वक वक विचार लेकिन गुरमत दा फलसफा ए है कि परमात्मा घट घट पूर्ण है भाव कि ओ सारे शरीरां दे अंदर व्यापक है अदृष्ट रूप दे अंदर जिवें पहला बेनती कीती भी लकड़ दे विच अग है लेकिन ओ गुप्त रूप विच है शरीर दे अंदर करते दी जोत है लेकिन अदृष्ट रूप दे विच है। भाई गुरदास कहिंदे करता शटम अदृष्ट समाया घट घट पूरन ओ सर्व व्यापक भी है सिर करे सिर सिरे नवेरा ते हरेक जीव दे कीते हुए कर्मां दे अनुसार उन्हां दे फैसले करदा है।
1: सिर शाह कै सच्चा साहिब
0: ओ मेरा सदीवी होंदा मालक अकाल पुरख सिर शाह कै सच्चा साहिब ओ जिन्ने भी दुनियावी शाह ने बादशाह ने उन्हां दुनियावी शाह बादशाह दे भी सिर दे उत्ते है
1: अवर नाही ओ दूजा है
0: ते उस मालक दी इह वड्डी वड्याई है भी ओदे वर्गा होर कोई दूजा नहीं। रब्बी बाणी अंदर साध संगत तुसी रोजाना ही श्रवण करदे हो पवित्र वचना दे दर्शन करदे हो ते परमात्मा दीआं बेअंत वडियाईआं दे विचों इक वडियाई ए जिन्हों हजूर कहिंदे गुण एहो होर ना ही कोए ना को होवा ना को होए अगर नाही को दूजा है भाव के ओदे वर्गा दूजा होर कोई नहीं है।
1: हरखवंत आनंत दयाला
0: परमात्मा दीआं सिफतां करदेआं परमात्मा दे सफाती नाम गुरु अर्जन दे पातशाह ने जिक्र कीता कि हरखवंत ओ खेड़ियां दा मालक है अनंत जिहदियां वडियाईआं दा इक जीव दे नाल कथन नहीं कीता जा सकदा भाव दा पारावार नहीं पाया जा सकदा ते ओ दयालु बिरती दा धारनी है।
1: प्रगट रहयो प्रभ सर्व उजाला
0: ते ओ परमेश्वर जिहड़ा दयालु खेड़ियां दा मालक जिहदा पारावार नहीं पाया जा सकदा ओ सारे जीवां दे अंदर आप ही जोत स्वरूप प्रगट हो रहा है।
1: रूप करे कर वेखै विकसै
0: सतगुरु गुरु अर्जन दे पातशाह वचन करदे रूप करे कर वेखै विकसै ओ परमात्मा ने आप ही अपने हुक्म दे विच इह अपने रूप पैदा कीते ने। हजूर दी पावन बाणी अनुसार सत संगत परमात्मा दे ना दो स्वरूप ने जिन्हों बाणी कहिंदी निर्गुण आप सरगुण भी ओही कला धारजन सगली मोही जदों असीं निर्गुण स्वरूप विच कहांगे ते परमात्मा दा कोई आकार नहीं है इस करके असी निराकार जां निरंकार शब्द वरतदे आ, पर जदों सरगुण स्वरूप विच जिक्र करांगे ते कबीर साहब कहिंदे एते औरत मर्दां साजे ए सब रूप तुम्हारे। दाता जी ए जिन्ने भी नर ते मदीन ए सब तेरा ही रूप ने, परमात्मा आप ही ए सारे रूप रचदा है। रूप करे कर वेखै विगसै ते आप ही इन्हां जीवां दी संभाल भी करदा है।
1: आपे ही आप पूजा है,
0: आप ही इन्हां जीवां दे अंदर वर्त के आप ही आप

0: अपनी रची हुई कायनात दी संभाल भी करदा है।
1: आपे ही सच करे पसारा,
0: आप ही उस परमेश्वर ने ए सारा जगत जेड़ा खिलारा है खिलारिया होया है।
1: आपे खेल खिलावे दिन राती,
0: आप ही सारे जगत तमाशे नू अपने जीवां दे राही हर वेले दिन रात जिनू सलोक गुरु नानक साहिब दे पवित्र बचना चो आप पढ़दे सुनदे हो ना के दिवस रात दुए दाई दाया खेल है सगल जगत दिन ते रात खिडावी ते खिडावा बना के सारे संसार नू परमात्मा खिडा रहे है। भाव के दिने असी अपने काम कार दे विच रात नू सौं के ए जगत तमाशा इसे तरह है। हजूर कहिंदे आपे खेल खिलावे दिन राती हर वेले दिन रात परमात्मा आप ही जगत दी खेड जीवां नू

मालिक है, वो आप भी सदा कायम रहने वाला, उदा तख्त भी सदा कायम रहने वाला, उदी बादशाहत भी सदा कायम रहने वाली, सत संगत वड्डा तेरा दरबार, सच्चा तुद तख्त सिर शाह।

0: ऐसा शाहूकार है कि उदा जड़ा खजीना है ना वह भी सच है। खजीने तो भाव है खजाना, भाव के ओदे भंडारे जेड़े ने भरे हुए ने। जपजी साहब के अंदर जो सतगुरु जी ने उस दाते की वड्याई दे विच वचन कहे ना कि उदा खजाना किड्डा क वड्डा है, ते हजूर गुरु नानक सच्चे पातशाह कहिंदे देखो उस मालिक दे खजाने दी ये बरकत के आसन लोए लोए भंडार जो किछ पाया सो एक बार। असी साध संगत दुनियावी तौर ते गृहस्थी जीवन दे विच विचरदे आ, जीवन दे निर्वाह वास्ते साडा सारिआं दा कोई ना कोई बैंक बैलेंस किसी का थोड़ा किसी का बहुत है, पर सच यह है जदों तक असीं उहनूं छेड़दे नहीं उह सुरक्षित है, जदों उहनूं वरतदे आ उह घटना शुरू हो जांदा है। पर उस दाते दा खजीना एडा वड्डा है जिन्हों हजूर कहिंदे कि देंदा दे लैंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाही। जुगा जुगंतरां तों उहदी पैदा कीती कायनात उहदे खजाने नूं वरत रही है, पर उहदे खजाने विच कदी टोटा नहीं आउंदा है।
1: आपे सच धारियो सब साचा,
0: उह परमात्मा जो सदीवी हुंदा मालक है उहने आप ही सारे संसार नूं आसरा दित्ता होया है।
1: सच्चे सच वरतीजा हे,
0: और आप ही उह परमात्मा जिहड़ा है सारे पासे वर्तन विहार कर रिहा है।
1: सच तपावस सच्चे केरा,
0: फिर उस सदीवी हुंदे मालक अकाल पुरख दा जिहड़ा तपावस है, तपावस दा अर्थ हुंदा साध संगत इंसाफ न्या, जिन्हों जपजी साहब अंदर ही सतगुरु कृपा कर दे साचा साहेब साच नाए। दुनियावी तौर ते साध संगत असी किसी भी झगड़े नूं लैके जदों न्यायिक अदालतां दे विच जाने आ ते इह हकीकत है जांदे भावें असी न्याय दी आस दे नाल आ, पर इह सच है कि सारिआं दे नाल उत्थे भी जिहड़ा है ना उह न्याय नहीं हुंदा, ये हकीकत है। सच यह है भी उत्थे भी असी झूठ बेईमानी जां रिश्वत का सहारा लैके झूठ नूं जिहड़ा है सच दे विच तब्दील करन दा यतन करदे आ। इन्हां दुनियावी न्यायिक अदालतां दे विचों भावें कोई बच जाए, पर सतगुरु की पवित्र बाणी का एक उपदेश है उस मालक का न्याय जिहड़ा है ना वह सच्चा है, उहदे न्याय तों कोई नहीं बच सकदा। उहदी इह वी वडियाई है कि हर का एक अचंभो देखिया मेरे लाल जीओ जो करे सो धर्म

0: बाणी
1: ये जिन्नी भी कुदरत कायनात पैदा कीती और एदी बनावट एदी निजमावली भी सच्ची है।
0: सच साहेब सुख की जाहे
1: और सदीवी आंदे मालक उस परमात्मा ने आप ही अपने प्यारियां दे अंदर आत्मिक सुख पैदा कीता है।
0: एको आप तू है वड राजा
1: हे परमात्मा एक तू ही है जेड़ा सब तो वड्डा राजा है और ओ इदां दा राजा है साध संगत उस राजे दे समान होर कोई राजा नहीं उदे वर्गा होर कोई राजा नहीं। बाणी अंदर भगत कबीर साहब कहंदे को हर समान नहीं राजा कहंदे ए भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा। जिन्हें भी ए दुनियावी राजे महाराजे ने एक ही है चार दिन अपनी नौबत चले बजाए चार दिन की खेड है अज होर कल कोई होर होएगा ते साडे देश दे हुक्मराना दा इतिहास राजनीतिक इतिहास इसे गल दी गवाही भरदा है। इत्थे कदी लोधियां दा राज सी कदी इत्थे मुगलां दा राज आया इत्थे कदी ब्रिटिश दा राज आया ते सच ए है कोई भी वक्ती तौर ते तख्त ते बैठा होवे ना सच ए है भी उह सदीवी नहीं हो सकदा। इस करके कबीर साहब कहिंदे को हर समान नहीं राजा ए भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा। हजूर कहंदे परमात्मा तेरे वर्गा होर कोई राजा नहीं है।
0: हुक्म सच्चे कै पूरे काजा
1: और उस सर्व व्यापक परमात्मा दे हुक्म दे नाल समुची कायनात समुचे जीवां दे कार्ज रास हुंदे हन।
0: अंतर बाहर सब किछ जाण
1: उस मालिक दी वडियाई है भी साडे अंदर दी भी ते बाहर दी भी ओ जानदा है। क्यों क्योंकि सो अंतर सो बार अनंत घट घट व्याप रहा भगवंत ओ परमात्मा साडे अंदर बार दियां जानदा है।
0: आपे ही आप पतीजा है
1: जो आप ही परमात्मा इस वड्याई दा सदका संतुष्ट हुंदा है।
0: तू वड रसिया तू वड भोगी
1: धन गुरु अर्जन दे पातशाह बचन कर दे मेरे मालक इन्हां जीवां दे अंदर आप ही वरत के तू पदार्थां दे भोग भोगदा है आप ही इन्हां दे अंदर तू रस माणदा है।
0: तू निर्वाण तू है ही जोगी
1: ते दूजा पक्ष ए भी निर आकार निर्लेप हुंदियां दाता जी तुसी जीवां दे अंदर वरत भी रहे हो सदा अलेपा सदा सर्व निवासी सदा अलेपा ओ निर्लेप भी है तुसी निर्वाण भी हो ते तुसी जुड़े हुए भी हो।
0: सर्व सुख सहज घर तेरा
1: सतगुरु गुरु अर्जन दे पातशाह कृपा कर दे मेरे मालक तेरे घर दे अंदर तमाम सुख आत्मिक अडोलता आनंद खेड़े हन।
0: अमयो तेरी दृष्टि जाहे
1: तेरी दृष्टि दे विचों अमृत झड़दा है भाव के तेरी दृष्टि दे विचों अमृत वरसदा है।
0: तेरी दात तुझे ते हो
1: तेरे दरों घरों सिमरन दी ही नहीं बल्कि तमाम दाता जेड़ियां ने तेरे घरों ही सेवकां दी झोली विच पैंदियां हन।
0: देह दान सब सह जंत लोऐ
1: सारे लोकां विच सारे जीवां नूं दाता जी तुसी दाता दे रूप दे विच जेड़ा दान दे रहे हो।
0: टोट ना आवै पूर भंडारा
1: ते दाता जी तुहाडे भंडारे दे विच देण दे बावजूद कदी टोटा नहीं आया है।
0: तृप्त रहे आकी जाहे
1: सच ए है भी जदों रहमत करके तुसी किसे नूं तृप्ति दी दात बख्शदे हो ताही उहदा अंदर तृप्त हुंदा है।
0: जाचै सिद्ध साधक बनवासी
1: कहिंदे जिन्ने भी चाहे ओ जंगलां विच रहण वाले ने चाहे योग साधना करन वाले ने चाहे योग साधना विच पुगे हुए जोगी ने सब तेरे ही दरों घरों मंगदे हन।
0: जाचै जति सति सुखवासी
1: जिन्ने भी सुख रहने जति सति सब तेरे दर ते मंगदे हन।
0: एक दातार सगल है जाचक
1: साडा सारयां दा दाता केवल दा अकाल पुरख वाहिगुरु तू है ते असी सारे तेरे दर दे मंगते हैं। धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह कहंदे जगत भिखारी फिरत है सब को दाता राम।
0: देह दान सृष्टि जाहे
1: समुची ही सृष्टि नु समुची कायनात नु ही तुसी दाता दे रूप च दान बख्शिश करदे हो।
0: करे भगत अर रंग अपारा
1: तेरी याद विच जुड़न वाले रब्बी प्यारे तेरी इबादत करके तेरी भगती दे रंग नु मानदे हन।
0: छिन मह थाप उथापन हारा
1: एक छिन दे विच दाता जी तुसी एडी समर्था है तुहाडे विच भी तुसी थाप उथाप बना भी सकदे हो ते ढा भी सकदे हो ऐसी समर्था किसी होर विच नहीं। हरन भरन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र ना जानै होर
0: भारो तोल बेअंत स्वामी।
1: हे मेरे दाता जी भारो तोल बेअंत स्वामी बेअंत ताकतां दे तुसी मालक हो।
0: हुकम मन भगती जाहे
1: तुहाडी रजा नूं मन के ही तुहाडे भगत बनिया जा सकदा है।
0: जिस देह दर्स सोई तुद जाण
1: दाता जी जिनू तुसी रहमत करके दर्शन बख्श दे ओनू ही सोझी हुंदी है।
0: ओ गुर कै शब्द सदा रंग मान
1: और गुरु दी सिखिया गुरु दे उपदेश राही इस आत्मक आनंद नूं माणदे हन।
0: चतुर स्वरूप सियाणा सोई
1: कहिंदे सूझवान सुंदर स्वरूप ते अकल वाला उसे नूं आखिया जा सकदा है।
0: जो मन तेरा भा बीजा है
1: दादा जी जो तुहाडे मन नूं भा जाए असल विच ओनू ही सूझवान आखिया जा सकदा है।
0: जिस चीत आवै सोवे परवाह
1: जिहदे अंदर तुहाडी याद है सच है ए बरकत वरतदी है भी करती दी याद दे विचों ना बेमथाजी प्रगट हो जांदी बेमथाज हो जाता है बंदा बेप्रवाह हो जाता है।
0: जिस चीत आवै सो साचा शाह
1: जिदे हिरदे अंदर तुहाडी याद सच है भी ओ सच्चा शाह बन जाता है।
0: जिस चीत आवै तिस भाओ केहा
1: सिमरन दी ए बरकत है भी जिदे चित विच करते दी याद ओदे विचों हर तरह दा डर कटिया जाता है डर खत्म हो जाता है। निर्भउ जपै सगल भौ मिटे दी अवस्था प्राप्त हुंदी है।
0: अवर कहा किछ की जाहे
1: उस रब्बी प्यारे दा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकदा है।
0: तृष्णा बूझी अंतर ठंडा
1: जदों गुरु रहमत करदा है ते अंदरों तृष्णा दी अग बुझदी है ते अंदर नाम दी ठंड वरतदी है।
0: गुर पूरे लै टूटा गंडा
1: अरे बरकत कदों वरतदी है जदों पूरा गुरु रहमत करके टूटी हुई सुरत नूं अकाल पुरख दे नाल जोड़ देंदा है।
0: सुरत शब्द रिद अंतर जागी
1: गुरु दी रहमत दा सदका जेड़ा सुरत शब्द दे विच टकाउणी हिरदे दे विच सोझी प्रगट हो जांदी है।
0: अमयो झोल झोल पीजा है
1: ओ रस लै लै के रब्बी प्यारा उस आत्मिक आनंद नूं माणदा है।
0: मरे नाही साध साध ही जीवै
1: ओ रब्बी प्यारे दे उत्ते फिर ए बख्शिश हुंदी है के मरे नाही साध साध ही जीवै ओ सदा ही आत्मिक जीवन जिउंदा है ओनू आत्मिक मौत नेड़े नहीं टुकदी।
0: अमर भया अबनासी थीवै
1: हो जाता है भाव ओ अंदरों अविनाशी थीव है ओदे अंदरों मौत दा सहम डर खत्म हो जाता है।
0: ना को आवै ना को जावै
1: सच है भी जिदे उत्ते परमात्मा दी ऐसी बख्शिश हो जाए फिर ओदा आउण जाण दा गेड़ कटिया जांदा है।
0: गुर दूर किया परमीजा है
1: आउण जाण दा गेड़ ओदा कटिया जांदा है जिदे अंदरों गुरु रहमत करके भरम कट देंदा है।
0: पूरे गुर की पूरी बाणी
1: पूरे गुर की पूरी बाणी पूरा गुरु ते पूरे गुरु दा निर्मल उपदेश
0: पूरे लागा पूरे माहे समाणी
1: फिर इस पूरे उपदेश दे राही गुर शब्द दे राही ही जदों कोई गुरमुख उस पूरे दे नाल जुड़ जांदा है पूरे दे विच ओदी समाई हो जांदी है।
0: चढ़ सवाया नित नित रंगा
1: ते ओदी सुरत नूं फिर नाम दा जिहड़ा रंग है ना दून सवाया चढ़ जांदा है।
0: घटै नाही तो लीजा है
1: पड़ताल दे बावजूद भी पड़ताल कीतियां भी ओदी सुरत तों कदी नाम दा रंग उतरदा नहीं है।
0: बारह कंचन शुद्ध कराया
1: सत संगत जिस गुरमुख ते बख्शिश हो जांदी है ना ओदा जीवन फिर बाद लील गुरु अर्जन साहब कहिंदे बारह मन्नी दे शुद्ध सोने दी तरह हो जांदा है।
0: नदर सराफ नीस चढ़ाया
1: जदों कोई भी सुनियार वीर कोठाली दे विच पा के मैले सोने नूं मलीन सोने नूं शुद्ध करदे ने उहनूं ता दित्ता जांदा है ते जदों बारह मन्नी दा शुद्ध सोना हो जांदा है सुनियार दी नजर विचों परवान चढ़ जांदा है। हजूर गुरु अर्जन दे पातशाह कहिंदे इसे तरह जदों जीवन दे विचों हर तरह दा भरम खत्म हो जांदा है गुरु दी कृपा दे नाल हुक्म दी कुठाली दे विच पै के अंदरों भरम कटे जांदे ने ते जीवन जिहड़ा है ना ओ बारह मनी दे शुद्ध सोने वर्गा हो जांदा है ओ सिख फिर गुरु दी नजर दे विच परवान चढ़दा है।
0: परख खजाना पाया सराफी
1: जिवें कोई सराफ जिवें कोई सुनियार उस सोने नू अपने खजाने दे विच सांभ लैंदा है। इसे तरह गुरमुख प्यारे गुरु दे खजाने दे विच प्रवान चढ़दे हन।
0: फिर नाही ताई जाहे,
1: फिर उन्हां नू कहण लगे पटकणा दा शिकार नहीं होना पैंदा है।
0: अमृत नाम तुम्हारा स्वामी,
1: हे मेरे मालक तेरा नाम आत्मक जीवन देण वाला है।
0: नानक दास सदा कुरबानी,
1: धन गुरु अर्जन दे पातशाह बचन करदे ने तेरे दास तेरे तो सदा कुर्बान जांदे हन।
0: संत संग महा सुख पाया,
1: गुरमुखां दी संगत दे विच्चों ए आत्मिक सुख दी प्राप्ति हुंदी है।
0: देख दर्शन एहो मन भीजा है,
1: दाता जी गुरमुखां दी संगत दे विच्चों आत्मिक सुख दी प्राप्ति करदे आ, तेरे दर्शना नूं करके तेरे दर्शना तों बलिहार जांदे आ, तेरे दीदार करदे आ, ए मन उन्हां गुरमुखां दा प्रसन्न चित रहिंदा है, उन्हां दा मन जुड़िया रहिंदा है। सो साध संगत धन श्री गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी ने रहमत कीती मारू सोले दे अंदर, अखीर ते आके फिर ओहो कृपा कीती के आत्मक सुख मिलदा है सानू गुरमुखां दी गुरु दी संगत दे विच्चों, जिहड़ा असीं आरंभ विच जिक्र कीता सी के हर के संत प्रे प्रीतम प्रभु के ताके हर हर गाईए, नानक इहां सुख आगे मुख उजल संग संतन कह पाईए। इनियां बेनतियां प्रवान करनियां शब्द दी विचार दौरान साध संगत होईआं बेअंत भुल्लां, गुरु ते गुरु रूप साध संगत बख्शन योग है। कोटन कोट धन्नवाद सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दा, आप सरबत संगतां दा, श्री दरबार साहिब जी दे समुचे प्रबंध समूह सिंह साहिबान, विशेष तौर ते सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी अमरजीत सिंह जी जिन्हां दी राही आप संगतां दे दर्शन कीते हन। सतगुरु कृपा करन सानू सारिआं नू दरों करों नाम बाणी दा प्यार गुरसिखी जीवन बख्शन। आखरी बोल पढ़ के

0: तुरकी बाणी आई तेन सगली चिंत मिटाई। तुरकी बाणी सानू गुरु साहबान ने साडे ते तरस करके अपनी किरपा द्वारा प्रेम पदार्थ बख्शिया है। जद असी गुरबाणी विचारदे हां तां साडियां गुरु साहबां नाल गल्लां हुंदियां हन। गुरु साहबां नाल गल्लां करन दा एक नमाणा जिहा हीला प्रोग्राम गुरबाणी विचार दे तहत हर रोज सुनना शामी हरमन रेडियो ते।
1: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ।

जद तक अफसरशाही किसी असूल नू लागू करन वाले कागज तैयार करती है उदो तक उस असूल का माड़ा मोटा हिस्सा ही बचा रह जाता है। विचार लाड रही चंगे अते सोहने विचारन लई सुनो हरम रेडियो।

0: तेरा हो जाऊं, दिल करता है तेरे पास आऊं, तेरे पास आके तेरा हो जाऊं।
1: पेत वारे स्याने कहंदे हन कि जद म्यान टूट जावे तां तलवार लुकाई नहीं जा सकदी। विद्या विचारी तां

सेहत बारे रूस वाले कहंदे हन कि महंगियां दवाइयां दा फायदा जरूर हुंदा है, जे बीमार नू ना होवे तां दवाइयां दी दुकान वाले नू हुंदा है। सोहणे विचारां दे अंग

दोस्तो उम्र दा वधना किसी निराशा तो घट नहीं है ते इस दी कोई दवाई मौजूद नहीं है पर तद तक जब तक तुहानू समझ ना आ जावे कि हसना ही इस दा इलाज है इसलिए हसदे रहो वसदे रहो सुनदे रहो हरमा रेडियो आस्ट्रेलिया दिल पंजाबी जज्बा पंजाबी।

ओही टोटा नहीं जिथे पंज दरिया वेंदे सन। इस पंजाब दियां सरहदां तों बाहर भी धरती उत्ते कई पंजाब वसदे ने। सो इस पंजाब अते उस पंजाब विचली सांझ नाल तुहानूं रूबरू करावांगे प्रोग्राम सांझ राहीं तुहाडे अपने रेडियो स्टेशन हरमन रेडियो उत्ते। सुनदे रहो अते सांझ।

0: सुनावा खान सियाणियां दा ज्ञान। लो जी अज दा मुहावरा, उपरो डिग्गा संभले पर नजरों डिग्गा ना संभले।
1: भाव ए है कि अपने कारोबार विच असफल होया बंदा मुड़ पैरां ते खड़ा हो सकता है, परंतु किसे दियां नजरां विच डिग्या होया बंदा अपना सतिकार मुड़के बहाल नहीं कर सकता।
0: मुहावरे अखाण अते पंजाबी बोले, पंजाबी बोले। हरमन रेडियो, हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलिया।
2: सैड या रोमांटिक गीतां दे शौकीन हो।

0: के दीवार।
1: खूबसूरत आवाज दा सफर हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया मुड़ हाजिर होने एक छोटे जी वक्फे तो बाद सुनते रहो आवाज दी खूबसूरत परवाज हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया। For more information, send us message on info@harmanradio.com.
2: रोटी हजम नहीं होंदी वरतो गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिल्स दा गरेवाल चक्की आटा ताजा घट केमिकल दी वरतों वाली कणक जेड़ी के सीधी खेतां चो मिल च लई जांदी ऑस्ट्रेलिया दा बनिया शुद्ध आटा ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो। आटे तो इलावा ताजा बेसन लड्डुआं लई स्पेशल बेसन मल्टी ग्रेन आटा काबली छोले मसरां दी दाल चना दाल सोयाबीन ते बादाम भी साडे अपने प्रोडक्शन हन। वधेरे जानकारी लई विजिट करो गरेवाल गोल्डन ग्रेन .com.au या फोन करो 0428895564।
3: आ गया तुहाडा ताया आस्ट्रेलिया दे ब्रिस्बेन चो। ओ आजो आजो ताया जी वेलकम। ताया अज रात साडे कोल ही रहना पऊ थोनू। ओ मैं आ ता गया मई ता नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ। इथों किथों मिलू इंडिया आले गद्दे? लो ताया आपा ले आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो। पंजाबी फर्नीचर? जी हाँ पंजाबी फर्नीचर एथो मिलदा सारा इंडियन फर्नीचर जो भी तुहानू चाहिदा सब एथो मिलू। मंजे धार्मिक फोटवां चादरां साइकिल चूल्हे दातियां रंबे कई सब कुछ एथो मिलू। ताया जी लाया था तू मेरी टेंशन दूर करती। नाले तेरी ताई कहिंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामण दा। लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा। लिखो फिर 2A130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन। आ कॉल कर लियो ताया जी 0404000536 ते। वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au। नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture।
1: अपनी बिजनेस की तरक्की लई तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देने लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करन लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन च विजिट करो।
4: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन ऑस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो हरमन रेडियो।

0: जसविंदर भला भगवंत मान
1: साडी रैली च पहले बड़े नंग ते मलंग कठे हुए
0: भजना अमली
2: बड़े बड़े शिकारी रहे हैं संतिए
0: गुरप्रीत कुगी
3: मैं ते ओनू करदा सौरी दियो
0: माई मोनो
4: ए पोस्तियां
0: पोस्ती
5: भाई अपनी मारी जाने मेरी भी सुनो
0: पोटू शाह
3: पोटू शाह या जेल जाके बुल्ले

0: समय मुताबिक।
1: ओ बल्ले भी बल्ले, ओ मुलाजमो, ओ जिन्ने पैसे होया बोरियां च भर लो ते पोटू शाह मुड़ के फिर फड़ लो।
2: ओ जनाब की गल हो गई, पोटू शाह फड़ लो ना कातो फड़ लो।
1: ओ तैनू पता काके शाह भी अजकल लोकी पुलिस नू पैसा नहीं दिंदे, कलाकारां नू ज्यादा दिंदे आ। ते अहीं सोचा भी पोटू शाह नू बाहर कढ के मेला लाउने आ, जिहड़े चार पैसे कठे होउगे ओहदे नाल जेल दी मरम्मत कराने आ।
2: पर मेरी सुन लो गल, तुसी पोटू शाह नू दोबारा नहीं फड़ सकदे, क्योंकि मैं भी पोटू शाह दी जमानत लई पक्के कागज बनाए आ।
1: ओ तैनू नहीं पता ओए, ओ जमानत दे कागज जिहड़े जाली आ, जे मेला ना हुंदा सानू ते तनखा नहीं सी मिलनी।
2: ओ क्यों?
1: क्योंकि सरकार दे तां खजाने खाली आ। ओ चलो मुलाजम, पोटू शाह नू फड़ के फेर ला जाओ।
3: होलदार साहब, मैं जेल जाण तो पहला अपने श्रोतिया नू कुछ कहना चाहना।
1: ते कह ला, अहीं कहड़ा तेनू रोकिया।
3: हसदे रहना दोस्तो, वसदे रहना दोस्तो, बन के तुसी फुल्लां दे गुलदस्ते रहना दोस्तो, नेकियां दे चलदे तुसी रस्ते रहना दोस्तो, नेकियां दे रस्ते ते चलांगे ता फुल बन के खिलांगे, जिंदगी रही ता फेर मिलांगे, अलविदा।

0: के धूप में फंसो।
1: चट्टा के मुंडे साढ़े नाल है जो चंडा गाड़ के बदमाशी करना है।
2: थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए।
3: बापू जो आखरी सहा ते आ गए ना।
4: हाँ।
3: असी सोचा होने दा टट्टू पार होने आला बा।
4: अच्छा
3: भाई चलो इन्हें माड़े कर्म ता बड़े कीते हुण पंडित नु बुला के ना कुछ पाठ करवा दिए जा दान पुन करवा दिए गाहां जाके कोई चंगी जगह इन्हू मिल जू।
4: आहो भजनिया
3: असी पंडित नु बुला लिया।
4: अच्छा
3: पंडित कहन लग गया कहिंदा जी पाठ फूट करके कहिंदा बंता सिया वो जो लहू की नदियां है वो मनुष्य को पार करनी पड़ती है।
4: अच्छा
3: पता की कहिंदा।
4: हां
3: कहिंदा जी जिन्हें मैनू नदियों पार बुलाना होगा आपे मेरे पार बुलाने का कोई ना कोई प्रबंध करता फिरूगा। ये सिरदर्दी अगले दिया मेरी नहीं। पंडित कहिंदा जी आपको कुछ ना कुछ दान करना पड़ेगा सोना चांदी जा कोई तांबा।
4: अच्छा
3: की कीता संतिए जेड़ा पहला नहीं रुपया हुंदा मोरी आला।
4: आहो
3: कट के पंडित दे हाथ ते रखता। पंडित बोला बच्चा इतने से नदी पार नहीं होगी और दान करो
4: ना। फिर बापू की बोलिया
3: कहिंदा जी हुण इन्ने नाल ही सारो भांगा कदे फेर कढ देंगे। हांती पंडित ने सोचा ता पूछ नहीं फड़ाउंदा।
4: आहो
3: हुण इन्हू गऊ दी पूछ फड़ाई।
4: अच्छा
3: उन्हें सोचा जांदे चोर दी तैराकी सही।
4: हां
3: अरे बंता सिंह जी गऊ दान किए बगैर नरक कुंड में बहता रुद्र का दरिया कैसे पार करोगे।
4: अच्छा
3: अगर आप गऊ दान करोगे गऊ की पूछ पकड़ कर आप दरिया पार करो
4: ना। बापू की कहंदा
3: कहंदा पंडित जी मैं उरले किनारे बैठा रहूंगा पार जाके केड़ा मैं तरीक भुगतनी है। कांतिए पंडित गया उदू बाद बनवारी लाल हट्टी आला आ गया।
4: ना वो की कारण आ गया।
3: वो आके मेनू पुछण लग गया कहंदे जी पता लग गया सी बंता से उठ ला गया।
4: हाँ।
3: मैं कहा जी आहो
4: आहो
3: थोड़ी देर बैठा रहा बाद च कहंदा जी बंता से और ही बच जान गए।
4: अच्छा
3: मैं कहा जी कुछ पता नहीं तबीयत खराब ही है।
4: हाँ।
3: फिर थोड़ी देर बाद बैठा रहा।
4: अच्छा
3: फिर मेनू कहंदा कहंदा जी पूरा दसो भी बंता से और ही बच जान गए। मैनू गुस्सा चढ़ गया।
4: हाँ।
3: मैं कहा गल सुन तू का तो फिक्र बंद हुंदा। मैं कहा तेरी की ओदे नाल रिश्तेदारी है
4: ना। की कहंदा
3: कहंदा जी रिश्तेदारी तो साडी सके प्यो नाल नहीं हुंदी।
4: हाँ।
3: कहंदा बेचारा एक बारी कहंदा 2 रुपए दा गुड़ लै गया सी।
4: हाँ।
3: मैं सोचा जे बच जे नाले तो साडी सामी तरजू नाले दी औलाद करजे तो बच जू
4: ना। फेर भजनिया
3: होना की है शांति 2-3 दिन बाद फिर बापू साडा चलाने कर गया।
4: हाय हाय बहुत माड़ा होया भजनिया
3: सानू हत्था पैरां दियां पै गईयां।
4: अच्छा
3: छोटा भाई मेनू कहंदा वड्डे भी राय करिए बापू नू आपां वैन च लै के चलिए शमशान घाट तक।
4: अच्छा
3: ओ दूजा मेरा जेड़ा फौजी भाई सीगा।
4: हां
3: ओ कहंदा भी आया करो मैं सफारी गड्डी लै के आउणा।
4: अच्छा
3: मैं कहा नहीं फिर भी अपना बाप सी। मैं कहा बट्टी बस लेके आवांगे फूलां नाल सजा के। मैं कहा बैंड बाजा बजा के फिर बापू नू टौर नाल लेके जावां।
4: अच्छा
3: जदों मैं बड़ी गड्डी दी गल कीती बापू तो उठ के खड़ा हो गया।
4: हाय हाय
3: पता है की कहंदा।
4: की कहंदा
3: कहंदा पतो फजूल खर्ची करन दी लोड़ नहीं मैं शमशान घाट तक तुर के चले जाऊं।
5: खुश रहो तंदुरुस्त रहो हरमन रेडियो।

0: काके शाह जी मेनू एक गल दी बड़ी खुशी है।
1: कादी
0: तुहाडे व्याह दी
1: लदा समीरा बेड़ा गर्क हो गया तेनू खुशियां चढ़ियां।
0: क्यों भाभी तुहानू प्यार नहीं करदी?
1: ले ओ तो बोरियां भर भर प्यार करदी है और शुक्र है मेनू ही करदी है। मेनू इन्ना प्यार करदी है मैं कल रात नू शो तो अपने घर गया। मैं घर अपने रूम च जिद्दां ही एंटर होया मेरी वाइफ कहंदी
2: जी आ गए हो?
1: हां जी।
2: पहला ये दसो खाना पीना की है?
1: खान पीन नू भागवान ने रहन दे गर्मी बहुत है तू एक पानी दा गिलास पिया दे। मेरी वोटी मेरे वासे किचन दे विच पानी दा गिलास लैन चलेगी। मैं थकिया सी मेरी अख लगी मैं सो गया और मैं सवेरे उठ के की वेख्या कि सवेर तक मेरी वोटी पानी दा गिलास लेके एदा ही खड़ी। भाई मैं बड़ा हैरान होया मैं कल युग दे विच इन्नी कहने कल जनानी ओ तू मैनू इन्ना प्यार करदी है मैं अपनी वोटी नू क्या मंग की मंगदी
0: ना फिर की मंगया भाभी ने
1: कहिंदी तलाक दे दियो।
0: पर काके शाह जी इन्ने वड्डे कलाकार हो सोहरे दा तुहानू तकड़े ही मिले होणगे।
1: ओ सोहरे दा ठीक ही है पर सास यार बहुत ही तकड़ी है। मैनू अपने सोहरियां दे विचों किसे तो डर नहीं लगदा सिवाय अपनी सस तो। जदो हैप्पी मैं ब्याह तो बाद पहली बारी अपने सोहरियां दे गया मैनू कोई चाह नहीं पुछिया मैनू कोई पानी नहीं पुछिया सीधा ही मेरी सस मेरे दुआले हो गई। मैनू कहिंदी
2: वे काके मेरी एक गल ध्यान नाल सुन लै तू मेरी कुड़ी नाल ब्याह ता लिया करा ते हुण मेरी कुड़ी नू तंग ना करी मैं अपनी कुड़ी नू फुल्ला वांग रखिया।
1: कोई नी मम्मी जी मैं पानी लांदा रहूंगा। ए ता हैप्पी उदो दी गल सी जदों मैं अपने सोहरियां दे घर गया सी। हुण तू ओ गल सुन लै जदों मेरी सस मेरे घर रहण आई मेरी सस बेडरूम दे विच आराम नाल सुती पई इन्नी च मैं की देखिया कि मेरी सस दे बेड दी ढो ते आ के सिर दे उत्ते सप्प बह गया। मैं बारो दुआवा करी जावा ओ मैं गया हे भोले शंकर जी किते सप नू मेरी सस ते प्यार आ जावे मेरी सस दी चुम्मी ले लवे तो मेनू मजा आ जावे। इन्नी गल कहण दी देर सी सप भाई तुर पए। मेनू बड़ा बट चढ़िया मैं सप नू रोक के पुछया मैं गया भाजी किधर कहिंदा बस चले आ। मैं गया चले दा ठीक है जेड़ा काम करना कीता क्यों नहीं कहिंदा केड़ा मैं कहा तुम डंग मारने आए सी कहना मैं डंग थोड़ी मारना आया सी मैं कहा होर कहना मैं ता जहर पराउन आया सी। ओ मैं ता हैप्पी अपनी सास को इन्ना दुखी हां मैं हमेशा अपनी वोटी नू एही गल कहना हुन्ना तेरी मां ने डरामा नवा कड़िया कड़िया है तेरे करके कल छोटा साड़ा मेरे नाल लड़िया लड़िया है तेरे करके तेरा प्यो ना जवाई मेनू जानदा ना कोई पहचानदा मैं रोवा मथे हाथ तारके मेरे घर च बड़ी तेरी मां जो पुसरी होगा ओ घूमदी चड़ेल बनके।
3: तुसी सुन रहे हो कॉमेडी आवर हास्य ते गीत हरमन रेडियो।

0: लाला जी राम राम
1: राम राम। आयो लंघे आओ, कितो खज्जल हुंदे आया।
0: ओ मैं खज्जल हुंदा आया इन्हां कचहरियां तो। सच्ची जे बाकी महकमे दी तरह कचहरियां भी प्राइवेट हो जान ते स्वाद आ जू।
1: ओहो तू कचहरियां नूं रोई जांदा, इत्थे रब प्राइवेट होण नूं फिरदा।
0: रब प्राइवेट होण नूं फिरदा?
1: मैं कहा पुछना
0: ना फिर की होऊ।
1: ला होना की आ, फिर ते जने गणे दा फोन रब दे दफ्तर जाया करू। हैलो रब जी, असीं तुहानूं कल दे फोन करी जांदे आ, आप तुसी ठंडी जगह बैठे, असीं इत्थे गर्मी च मरी जांदे। असी पहला बथेरी धुप सेकी, हुण होर ना गर्मी झलनी आ। रब जी सानू ए भी दसो साडे शहर हवा कद चलनी आ।
0: ना फिर लाला इन्नी गल सुन के रब कुछ ना कहू।
1: रब क्यों नहीं कहूगा? रब ने कहना भाई लै गए हवा बठिंडे वाले, हजे दो दिन उन्हां दबलनी आ, धमकियां दिंदे चंडीगढ़ीए, फिर पंज दिन उत्थे घलनी आ।
0: ना जे लोग हवा अपनी मर्जी दे नाल चलाउणगे, लाला जी ए भी दसो फिर मीह किद्दां पवणगे।
1: ओहो भाई मीह दे फोन भी रब नूं इस तरह जाउणगे।
2: आप जिस मोबाइल पर कॉल कर रहे हैं वो या तो इस समय बंद है या कवरेज क्षेत्र से बाहर है।
1: हेलो मैं कहा रब जी कई दिन हो गए तुसी आप दे मोबाइल दा स्विच बंद रख दे हो, है बाकी शहरां च बरसात हो रही है, सानू क्यों मीह तो तंग रखदे हो।
0: ना फिर इन्नी गल सुन के रब की जवाब दऊगा?
1: रब ने कहना शिमले वाले गर्म ना हो, शहर थोड़ा सब तो ठंडा है, पिछले मीह दे पैसे नहीं दिते, पदार्थ थोड़ा बहुता गंदा। मीह दे खर्चे बढ़ते जाते, केड़ा समय सुबले आ, बदल हजे नहीं वेला कोई, सब लुधियाने कले।
0: ना लाला जी जदों किसी दा बुढ़ा मरिया करूगा ओ रब जी ने किद्दां गिले करिया करूगा।
1: हेलो रब जी आ गल सुनो, तुसी साडा बापू मारता, सानू दस्सिया ही नहीं, है गुआंढियां दा बड़ा चंगा भला तुरिया फिरदा, ओनू अजे चक्किया ही नहीं। ओहो हो हो रब ने कहना भाई मेरे जमदूतां नूं भी किते किते भुलेखे पै जांदे आ, बंदा पुलिस वालां वांगू चक के कोई होर ही लै जांदे।
3: कॉमेडी आवर हरमन रेडियो।

0: नप तेज हूं चुप करी बैठा फोटो लहाना है
1: नहीं अपना सिर दिखाना आया नीलू चाह बना के लिया क्या
0: बेंदक होया अजे अंदर कॉफी सिट के हटे हूं चाह मंगन डे पंजा मिनट तेन कतूरे जाऊंगे
1: ना तुहानू हर वारी मेरे दादे लभदा तवे लो ओनू
2: ओ बाबा किते मेरे दादे नू ना हुण खज्जल करा दी
0: नीलू तेरे दादे दा बाले दे दादे नाल की मुकाबला तेरा दादा एडा चावल के ओदे मूहरे बाले दा दादा कुछ भी नहीं
2: शर्मा जी आ चावल किन्नू कहंदे आ
0: वध चावल खाण वाले नू कहंदे आ भाई बाले कोई वेला सी जदों नीलू दे दादे दा रोह वेखण वाला सी मैं क्या बस च चढ़ के सवारियां दा त्राह कढ दिंदा सी ओए बंदे दे पुत बन के बह जाओ खबरदार जे कोई अपनी सीट तो हिलिया मैं छलियां लैके आप तुहाडे कोल आऊंगा ₹5 छली आया भैन जी ₹5 छली लो भाई साहब तुसीं ₹5 छली
2: करी जाओ बकवास
0: भाई एदा दादा एडा स्कीमी सी के बाजारों सब्जी हमेशा मुफ्त लेके आउंदा सी
1: ओ किवें
0: जाके कहंदा सी ₹3 दा धनिया दे दिओ नाल थोड़ी जी सब्जी पा दिओ हमेशा उस दुकान ते जांदा सी जिथे रश हुंदा सी सब्जी वाला जेड़ी भी सब्जी विखाउंदा सी जदे ही कहंदा सी कल दी आ अखीर नू अगला आके कहंदा सी ला जा दफा हो यार गाहक ना खराब कर एडा कंजूस सी के मझ गोहा करदी हुंदी सी ओनू वेख वेख के झूरी जांदा हुंदा सी भैण जी करना करी चलो वैसे है फजूल खर्ची आ एडा सूम एक दिन बाजार च तुरिया जावे एक अख ते हथ रखिया होया मैं क्या बिशंबर जी की गल अख ते सट लगी आ नहीं दुखनी आई आ नहीं भूंड लड़िया नहीं फिर हथ क्यों रखिया कहना जदो एक काम दे रही है फिर दूजी अख जरूर वेस्ट करनी है
1: नीलू जी इन्ना सबर अजे तक बैठे ही हो
0: जेड़ा इन्ना को सुन के भी नहीं उठी किते चिंगम ते तां नहीं बैठी
2: शर्मा जी हुण मैं की कहा इन्ना नू कई बारी मैं सोचदी हां कि जदों आपां नू कोई चाहुंदा ही नहीं आपां क्यों आ जांदे आ इत्थे
0: ओए पुत्रो खुश नसीब हो तुम जिन्हें हम इतनी शिद्दत से चाहते हैं वरना हम तो वो शख्स हैं जो सपने में भी अपॉइंटमेंट से आते हैं
2: वेख लिया तुहाडा सुक्का हेज
0: ओए सुक्का साका कोई नहीं अजमा के वेख ली नीलू तू दिल मंगे जान मंगे जिस्म मंगे धड़कन मंगे आंखें मंगे तेरे लिए सब हाजिर है
1: इन्ना मेहरबान
0: इहदे च मेहरबानी वाली केड़ी गल्ल आ पंजे फिल्मां दी वीसीडी अलमारी च पईआं जिहड़ी मर्जी चक्के लै जावे हरमन रेडियो

0: शराब भी बड़ी अजीब शाय है। शराब दी खूबी किसी ने दो लाइन च बाखूबी बयान की है
1: कि
0: पाइया पी के बुलबुल बन जा, अदिया पी के तोता, तिनपा पी के बांदर बन जा, बोतल पी के खोता। एक एदां दा खोता नवंबर दिसंबर दी ठंड च सड़कदे पिया, उन मैं जाके चुकिया, मैं उठो भाई साहब, बस सरदार जी वो मेहरबानी सानू टिके रहन दो। मैं गया इनी ठंड च मरना ही, उठो। मैं महाराज उठो। कहिंदा सरदार जी उठन दा फायदा ही कोई नहीं। मैं क्यों? उठ के भी सौरा डेगी पैना।
2: वैसे शराब दी आदत ते माड़ी है कुगी साहब, पर कई यारी शराबी रौनकां भी बड़ियां लाउंदे आ।
0: गल तेरी बिल्कुल ठीक है, शराबियां तो बिना पंजाब दे व्याह भी अधूरे ने। हुण व्याह वाले दिन रात जदों घर भंगड़ा पैंदा हुंदा ते शराबी जेब च जिन्ने पैसे हुंदे ने भंगड़े तो वार वार के ढोली नूं फड़ा दिंदा।
2: अच्छा,
0: ते सवेरे उठ के फिर भंगड़े वाली थां फरोलन डिया हुंदा। पुछो की होया? कहिंदा यार भंगड़ा पाउंदे ते राती पैसे डिग पए किते। हुण पंजाब च कोई ऐसी बरात नहीं हुंदी जिदे विच एक शराबी मुंह च रुमाल पा के ऐदा बीन ना वजाउण डिया होवे ते दूजा एक मोटा जिहा शराबी भुंजे सप्प वांगू ना लेटण डिया होवे। कुड़ी वालियां दे घर टका दो पहला ही कपड़े गंदे कर पैंदे।
2: ਕੁਗੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
3: ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਯੂ ਗੁੱਡ ਮੀ ਨੋਟ, ਬਿਗ ਬ੍ਰਦਰ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਸੈਂਡ ਮੀ ਪੈਗ, ਓਕੇ ਆਈ ਗੋ।
0: ਤੇ ਕਈ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਦੇਈ ਜਾਣਗੇ, ਯੂ ਰਿੰਗ ਮੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਕਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਸੁੱਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨੀਲ ਗੱਲ ਤੇ ਪਏ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੋਂ ਕੱਚੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬਸ ਐਵੇਂ ਪੀਤੀ ਖਾਧੀ ਜੀ। ਇਹ ਪੀਤੀ ਖਾਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਛਤਰੌਲ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਤੀ ਖਾਧੀ।
4: ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਬਸਦੇ ਰਹੋ, ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ।

हासे खुशियां सब लब जांदे तो देखण वाली अख तां रखी यार भी मन जू प्यार भी मन जू तो सच्चे दिल तो पख तां रखी जिद भी चलदी अपनियां कोले बस जिद जोगा हक तां रखी बस जिद जोगा हक तां रखी।

0: क्लॉक दे इना 60 मिनटा विच तुसी सुन रहे हो पंजाबी दे नवे प्यार भरे गीत, सैड गीत, पंजाबी शायरी, विचार अते पुराना गीत।
1: हार्मन रेडियो 24/7।
2: सैड जा रोमांटिक गीतां दे शौकीन हो

0: Harman Radio
1: 24/7.
2: परदेस क्यों परदेसी होयो ते तेरिया नित वतना वल लोड़ा कमली करके छड़ दिताई ते मैं बैठी कख गलियां ते रोला गुलाम फरीदा मैं ते तो चक सड़ जावा जे मुख माही वल मोड़ा बातां पावा काग उड़ावा सोचा मथे हथ तरके खैर होवे मेरा दिल भी डोले ते नाले कलती अख भी फड़के अखियां नींद ना मानन सहीओ अखियां नींद ना मानन सहीओ पईयां रोवन होके परके ते ईद आई मेरा याद नहीं आया ईद आई मेरा याद नहीं आया ओ रब्बा खैर होवे ओदे दम दी हार शिंगार मैनू चंगा नहीं लगता वो किसे चीज ते नजर नहीं जमती वो खुशियां वाले लोकी ईद मनावन ते मैं रात गुजारा गमती ते यार फरीदा मेरे सोने माही बाजो मेरी ईद नहीं किसे कम दी मेरी ईद नहीं किसे कम दी।

0: हरमन रेडियो रेडियो कमाल बा कमाल
1: ऊ नहीं समझ लगती ता छड़ो। जिस दिन मेरे नाल मोहब्बत हो गई उस दिन मेरे गूंगे बोल खुद ब खुद समझ लग जाएंगे। कदे हंजुआ दी आवाज सुनिए जेकर नहीं सुनी ता रातां नूं रो के वेखी हंजू भी किन्ना वैण पाउंदे अखां तो अलग हो गए। हुण बोलण दा कोई मतलब नहीं रहा जो मेरी चुप पहचानदा सी ओ हुण मैनू नहीं जानदा। तुसी मोहब्बत करो तहानू मोहब्बत मिलेगी तुसी नफरत करो ता भी तहानू मोहब्बत मिलेगी। इत्थे कवि वसते ने जनाब आपां कदे भी जुदा नहीं होवांगे। तू आप दस खां भला बंदा रब नूं छड्ड सकदा है। तू कह दिंदी खां जांदी वार मैं रह लवांगी तेरे बगैर ते हुण नूं मैं मरिया हुंदा। तेरे फुल्लां चों निकलिया मेरा नाम मेरे लिए पूरी हुई दुआ वांग राए। खत्म करन लग्या सब कुछ खत्म करी आप दियां यादां भी ते हां मेरे साह भी। मैं कई बारी चा चा च रो पैंदा जे किते तू मेरे हंजू पूई थी। फेर की होया जे तेरे जिस्म दा व्याह होण जा रहा आपां ते कद ते रूहां तां करी बैठे आं। तेरे अथरुआं नूं वेखणा मेरे लिए सब तों वड्डा दुखां ते किसे दे जज्बातां नाल खेडना रब दी दित्ती सौगात ठुकराउण दे बराबर है।

तेरे नैना दा नीर कदे ना डुले, पावे मेरे सा खुर जावे। मेरी इको रीज, मौत पिछों तू कवर ते फुल लेके खुसरो पुरावे। मेरे तो जुदा होके तेरे बुल्लां दी मुस्कुराहट वेखी, मैनू एहसास होया आपां पहला जुदा क्यों ना हुई।

0: हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया तुहाडे अंग संग
1: बहुत कुछ अजिहा है जो शाइनिंग इंडिया दे नारे पिछे रुकिया पिया। इस मामले च जसविंदर होना ने बहुत खूब लिखा सी कि पौन नालों तेज रथ उत्ते है इंडिया जा रहा, पौन नालों तेज रथ उत्ते है इंडिया जा रहा, धूड़ विच गड्ढे ते पिछे आ रहा है हिंदुस्तान।

0: ब्लॉक दे इना 60 मिनटा विच तुसी सुन रहे हो पंजाबी दे नवे प्यार भरे गीत, सैड गीत, पंजाबी शायरी, विचार अते पुराना गीत।
1: हार्मन रेडियो 24/7।
2: जख्मी जे आसां वाले खंभां दे सहारे किवें मार लो उडारी यह दिल मर जाना। नंगे पैरां हेठ छाले उत्तों तपदा दुपहरा किवें कक्के रेतियां ते पैर पाऊगा दीवाना। लेके दुनिया दी भीड़ च उम्मीदां वाले बोझ एह कमला जिहा किवें होऊगा सियाणा। किवें उस नूं दुबारा कदे मिलेगा तू दिला ओह ना पिंड तेरे आऊ तू नी शहर ओहदे जाना। ओह ना पिंड तेरे आऊ तू नी शहर ओहदे जाना।
3: हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया
0: 24 घंटे 7 दिन।
3: सैड जां रोमांटिक गीतां दे शौकीन हो।

0: सुनो ते सुनाओ अर्बन रेडियो।
1: हरमन रेडियो सुन रहे सारे दोस्तां नूं मेरे वल्लों जाने के करमा टॉपर वल्लों प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं उस परमात्मा अगे अरदास करदा हां कि हरमन रेडियो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे ते तुसीं जुड़े रहो इसे तरह हरमन रेडियो।

0: अपनी बिजनेस की तरक्की लिए तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकते हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देन लिए जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करन लिए संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो।
1: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन ऑस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन
2: हरमन रेडियो
0: ब्लॉक दे इना 60 मिनटा विच तुसी सुन रहे हो पंजाबी दे नवे प्यार भरे गीत सैड गीत पंजाबी शायरी विचार अते पुराना गीत
3: Harmon Radio 24/7
4: Sad ja romantic geetan de shaukeen ho

0: हार्मन रेडियो
1: 24/7
2: दिल दा बुहा खोलता क्यों नहीं, अंदर इत्ते बोलता क्यों नहीं, मोती ने ते सांभ लवेना, ओए हंजू ने ते डोलता क्यों नहीं, रब नू इत्थे लभदा फिरते, अपनी जात फरोलता क्यों नहीं, तीर नजर दे तोली जन्ना, ओए मेरा जिगर तो तोलता क्यों नहीं, ते बुलिया मैं हैरान हाँ उसती पीती या ते डोलता क्यों।

0: हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन।
1: क्यों बनके जला तू जंगल कटे रुख कटे तू सारे जिन्ना नाल है जीवन तेरा रोंदे पंछी प्यारे। क्यों बनके जला तू जंगल कटे रुख कटे तू सारे नाल जिन्ना है जीवन तेरा रोंदे पंछी प्यारे। क्यों जंगल कट के शमशान बनावे कुछ ता सोच विचार कर तू भी अपने साहा वांगू कुदरत दे नाल प्यार कर। वातावरण नू साफ रख दे ठंडिया देन हवावां जिथे जंगल हरे भरे खुशहाल रहन ओ थावां। वातावरण नू साफ रख दे ठंडिया देन हवावां जिथे जंगल हरे भरे खुशहाल रहन ओ थावां। तू भी देश खुशहाल बना ला ना रुखां उत्ते वार कर तू भी अपने साहां वांगू कुदरत दे नाल प्यार कर। फल खाण लई सानू दिंदे अंत दे बन सहारे अपने हिस्से दे दो पौधे तू भी ला लै प्यारे। फल खाण लई सानू दिंदे अंत दे बन सहारे अपने हिस्से दे दो पौधे तू भी ला लै प्यारे। रुख वड्ढण दी गलती ना हर वार कर तू भी अपने साहां वांगू कुदरत दे नाल प्यार कर। रुखां सहारे जीवन साडा ऑक्सीजन ने दिंदे कोयलां बह के गीत गाउंदियां ओ मरना जान परिंदे। रुखां सहारे जीवन साडा ऑक्सीजन ने दिंदे कोयलां बह के गीत गाउंदियां ओ मरना जान परिंदे। वीर पाल कहे सत्ते रुख लगा के अंत सहारा तैयार कर तू भी अपने साहां वांगू कुदरत दे नाल प्यार कर। क्यों जंगल कट के शमशान बनावे कुछ ता सोच विचार कर तू भी अपने साहां वांगू कुदरत दे नाल प्यार कर। तू भी अपने साहां वांगू कुदरत दे नाल प्यार।

0: अर्बन रेडियो दिल पंजाबी जज्बा पंजाबी पंजाबी।
1: अपने मन दी सल्तनत नूं कर लिया जिसने फतेह, अपने मन दी सल्तनत नूं कर लिया जिसने फतेह। दोस्तो, वो आदमी समझो सिकंदर हो गया।

मेहमान बारे जमैका दी कहावत है कि खोते दे कर जाके लंबे कन्ना दी गल नहीं करनी चाहिदी। विद्या विचारी ता पर उपकारी।

0: ब्लॉक दे इना 60 मिनटा विच तुसी सुन रहे हो पंजाबी दे नवे प्यार भरे गीत, सैड गीत, पंजाबी शायरी, विचार अते पुराना गीत।
1: हार्मन रेडियो 24/7।
2: कल राती कुछ लकड़हारे काले वन चों लंघ रहे सन, सावे सावे बिरखां कोलों बलदा चुल्ला मंग रहे सन। केड़े सेक ने इउं पिघलाए, पानी नीवे उतर आए, तरत सुहागण दे पोरां नूं कतरा कतरा अंग रहे सन। लंघ दे नंगे बाजारां चों आउंदे वारस जांदे पुरखे, ओले ओले बचदे बचदे एक दूजे तों संग रहे सन। लोहे नूं हथियार बना के बंदे भुख प्यास मिटा के आपे घड़ियां मूर्तियां तों रो रो माफी मंग रहे सन। एक बंदे दे हुकम दे बदे एक नू सूली टंग रहे सन। किन्ने कोलों दुख च डुबे चुप चपीते लंघ रहे सन। अर्श ते तारे तरत ते अखर चमक रहे सन रात बराते सन। कुछ लोक जो कायनात नू प्यार दे रंग च रंग रहे सन। दोस्तो साड़ी भी ए निमानी जी कोशिश इस कायनात नू प्यार दे रंग विच रंगन दी। तुसी इस कायनात नू प्यार दे रंग च रंगन लई की कर रहे हो? रचना सुरजीत पात्र, आवाज सरबजीत सिंह।
3: हरमन रेडियो
0: 24 घंटे 7 दिन।
4: सैड या रोमांटिक गीतां दे शौकीनों

हर प्रोग्राम दी जानकारी, रेडियो दी हर गतिविधि ते नजर। ज्वाइन करो साडा फेसबुक पेज facebook.com/harmanradioaustralia जां जुड़ो टेलीग्राम ते telegram.me/harmaninfo। वधेरे जानकारी लई विजिट करो साडी वेबसाइट harmanradio.com।

0: हरमन रेडियो तमाल बा कमाल
1: ते ना कर परदिया मेरी मेरी ना ए तेरी ना मेरी चार दिना दा मेला दुनिया फिर मिट

हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया तुहाडे अंग संग विज्ञान दे खेत्र विच साडी दिलचस्पी बंदियां विच नहीं वस्तुआं लई होनी चाहीदी है। मैरी क्यूरी। सोने विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: अपने बिजनेस की तरक्की ले तुसे भी हरमन रेडियो दिया सेवावां हासिल कर सकते हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देने ले जा किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नु स्पॉन्सर करने ले संपर्क करो accounts@harmanradio.com या harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो।
1: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन ऑस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन
2: हरमन रेडियो
0: क्लॉक दे इना 60 मिनटां विच तुसी सुन रहे हो पंजाबी दे नवे प्यार भरे गीत सैड गीत पंजाबी शायरी विचार अते पुराना गीत
3: Harmon Radio 24/7
4: Sad ya romantic geetan de shaukeen ho

0: हरमा रेडियो ऑस्ट्रेलिया
1: 24 घंटे 7 दिन।
2: सत श्री अकाल दोस्तों, पंजाबी साहित्यिक मंच ते मैं दीप जगदीप हाजिर हां जी गुरवीर कौर पिंडर दी कलम तो एक रचना लेके। दोस्तो आज दी रचना एक छोटा जिहा विचार है कि असी किस युग दे वाली, उम्मीद है तुहानू ए पसंद आवेगी। तो पेश है आज दी रचना। बड़ा ही गहरा रिश्ता है साहां ते राहां दा, मिट्टी ते पैड़ां दे निशान छड़ना कोई माड़ी मोटी गल नहीं, पानी भी वहिंदा ही सोहना लगता है, तुसी की हिसाब लगाओगे दरियावां दा। वहना चलना गति दा नाम है, सिरनामे हवावां दे भी हुंदे ने, कि अंबर दी पुकार धरती कदे नहीं सुनदी, अंबर भी बोलता है धरती भी सुनदी है। कुदरत दे रंगां नूं किसने नहीं माणिया, 100 वार सिजदा करन ते इक हुंगारा फिर मिलता है तेरे अगे सीस नवाउण दा, मन भरदा ही नहीं तेरी दीद ही ऐसी है, फिर क्यों ना कुर्बान जावां तेरी बख्शी दात तों। बदल गरजे अंबर हसन लगा, क्या सोहना मेल सी कायनात दा, हवावां आईयां धुप्पां ने छां कीती, रहबर बैठा सी अंबरी ताकदा, आसमानी शो धरत ते नतमस्तक होई, हर खिड़ गया फुल कायनात दा, ते पौन बातां अणख दियां पौन लगी, हर रुख भी पंछी नूं पुकारदा, सुरख सवेर सरगी ले आई, खूब बजिया रंग कायनात दा, खामोशी गूंज उठी चुप होर शांत हुई, एक अनोखा पंध सी तेरी बात दा, एक अनोखा पंध सी तेरी बात दा। सफर कौन नहीं करता, असी सारे पांधियां, राहां ते तुरना कोई छोटी गल नहीं, राही बनना भी बड़ी वडभागी गल है, वेंदे समुंदरां दियां छल्लां कौन नहीं सुनदा, राहां दी हलचल साहां नूं नवां दृष्टिकोण दिंदी है, बस एक नजरिया ही है जो साडे सफर नूं अनोखा बनाउंदा है। मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं, इस विच भी बहुत कुछ छिपिया है, मिट्टी तो पत्थर, पत्थर तो मिट्टी, ते मिट्टी चो रंग लभना कोई विरला ही जानता है। ये एक कुदरती मुस्कुराहट है जो साडे अंदर है, क्यों ना फिर पहचानिए नवियां राहां नूं, नैणा दे सन्मुख होके ते पांधी बनिए नवें युग दे, जिसका कोई वाली नहीं।

0: रेडियो 24/7।
1: उल्फत बदल गई, कदे नीयत बदल गई, खुद गर्ज जद होए तां फिर सीरत बदल गई। अपना कसूर दूजियां दे सिर ते पाके कुछ लोग सोचते ने हकीकत बदल गई।

0: ब्लॉक दे इना 60 मिनटा विच तुसी सुन रहे हो पंजाबी दे नवे प्यार भरे गीत, सैड गीत, पंजाबी शायरी, विचार अते पुराना गीत।
1: हार्मन रेडियो 24/7।
2: दुनिया दारी विच होया मशरूफ जिड़ा, उम्र जाया उस नादान कीती। दुनियादारी विच होया मशरूफ जिड़ा, उम्र जाया उस नादान कीती। रहमत रब दी उस ते नहीं हुंदी, जिन्हें नेकी ना विच जहान कीती। ते रब ओदे गुनाह बख्शदा नहीं जे, रब ओदे गुनाह बख्शदा नहीं जे, सच्ची तौबा न जिस इंसान कीती। ओदे दिल दी अख नहीं खुल सकती, ओदे दिल दी अख नहीं खुल सकती, गौर जिन्ने ना विच कुरान कीती। ओ बंदा हैवान दे नाल दा है, ओ बंदा हैवान दे नाल दा है, जिन्ने नफस दी नहीं पहचान कीती। उस बंदे दा कोई मुल ना, जिन्ने यार दे नाम ना जान कीती। ते जिन्नू राह हिदायत होया, रब उस दी मुश्किल आसान कीती। ते सच्चा आशिक उसनू जान बुलिया, सच्चा आशिक उसनू जान बुलिया, जिन्ने यार दे उत्ते जान कुर्बान कीती, जिन्ने यार दे उत्ते जान कुर्बान कीती। ते गिल्ला शिकवा गहरा दा करन नालों, झाती अपने अंदर पान चंगा। गिल्ला शिकवा गहरा दा करन नालों, झाती अपने अंदर पान चंगा। ज्यादा बोलना कम है मूर्खा दा, घट सौन ते घट खान चंगा। गहरा अगे रोन नालों, रब अपने अगे अरज सुनान चंगा। किसे कोलो खिदमत लैन नालो, करना किसे दे उते एहसान चंगा। किताबां उरलियां परलियां पढ़न नालो, पढ़ना खोल के पाक कुरान चंगा। ते जेड़ा अपने गुस्से नू पी जावे, उन्नू सब तो जान पिलाउन चंगा। ते जेड़ा जवानी विच करे तौबा, बुढ़िया नालो ओ जवान चंगा। आए गए दी जड़ा करे सेवा, आए गए दी जड़ा करे सेवा, सब नालों बुलिया ओ इंसान चंगा। जड़ा किसे दा दिल नहीं दुखी करता, जड़ा किसे दा दिल नहीं दुखी करता, समझो सुनो ओ इंसान चंगा, समझो सुनो ओ इंसान चंगा।
3: हार्मन रेडियो 24 घंटे 7 दिन।

0: हरमन रेडियो दिल पंजाबी जज्बा पंजाबी पंजाबी।
1: हाँ जी सत श्री अकाल दोस्तो, आप सुन रहे हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया, मैं तो अपना मर्जी।

तुहाडी आवाज, तुहाडी खबर, तुहाडी गल, तुहाडे अंदाज च। आओ बनाइए समाज नू बेहतर। आले दुआले किन्ना कुछ वापरदा जो खबरां दा हिस्सा नहीं बनदा। खबर ओ जो बेहतर समाज दा निर्माण करे। तां फिर आओ भेजो अपने आले दुआले दियां खबरां। तुहाडी आवाज, तुहाडी खबर, क्योंकि गल इंज बनदी है।

ये गंगा जैसा।

0: एक बार फिर दस दिए भाई तुसी पुराने गीत सुनने ना है मशहूर मशहूर गीत दोपहर नू 12 बजे तो लेके 1 बजे तक गाने ला छड़ने इथे गुगे गा छड़ने आ सुन वाले बस एन मगद मोहद कर देने आ उन्हां नू चेता ही भुल जा करे भी टाइम हो गया इना पाले हुणे गड्डे गां लै जा करन कोबरम तो पता लगे भी 200 मील गां आ गए ऐदां दे गीत सिटी सुने आ
1: तुसी आनंद मान रहे हो मेरी पसंद ओल्ड इज गोल्ड समय दे गीतां दा।

0: कोशिशां सदा रहियां ने कि कुछ अजिहा करिए कि साडे आपणियां नूं सदा माण रहे। तुहाडे संग तुहाडे तों तुहाडे लई ही सदा ए आवाज है। बहुत कुछ कर चुके हां, बहुत कुछ करना अजे बाकी है। आओ इस काफले संग दिओ सानू सहयोग। तुहाडी हाजरी साडे लई मायने रखदी है। तन मन धन नाल इस परवाज दे सारथी बनो दोस्तो। हरमन रेडियो तुहाडे सहयोग नूं हमेशा सलाम करेगा। इस दिल पंजाबी दी सुहानी आवाज पंजाबी नूं स्पोंसर करो। साडी वित्तीय मदद करन लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां विजिट करो साडी वेबसाइट harmanradio.com।
1: मेरी पसंद के गीतां दा आनंद माणन दे लई तुसी हो अपनी दोस्त सीमा दे नाल।

0: दोस्तों मैं दीप जगदीप ते तुसी सुन रहे हो हरमन रेडियो हरमन रेडियो हुण मैं हरमन रेडियो ते अपनी आवाज विच पंजाबी साहित विचों प्रसिद्ध कहानियां कवितावां अते अणमुल्ले विचार लेके हाजिर हुंदा हां मेरियां होर भी रचनावां सुनन लई अते अपने कीमती सुझा देण लई यूट्यूब उपर मेरा चैनल पंजाबी साहित्यक मंच देख सकते हो।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी आहा टॉप गीत।

0: सुनावा खान सियाणिया दा ज्ञान। लो जी अज दा मुहावरा अन्नी कुत्ती जलेबियां दी राखी।
1: ए अखाण उदों वर्त्या जांदा है जदों किसे अयोग व्यक्ति नूं अधिकारां वाला कम सौंप दित्ता जावे ते ओ उल्टा नुकसान कर देवे।
0: मुहावरे अखाण अते पंजाबी बोले पंजाबी बोले हरमन रेडियो हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया आस्ट्रेलिया आस्ट्रेलिया।
2: सैड या रोमांटिक गीतां दे शौकीनों।

हरमन रेडियो सुन रहे सारे श्रोतियां नू मेरे वालों यानी कि हरमन सिद्धू वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं परमात्मा अगे दुआ करदा कि हरमन रेडियो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे ते हमेशा जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

यात्रा बारे श्रीलंका की कहावत है कि यात्रा नाल सियाणप लब्बी जा सकती है। चंगे विचार विचारो अते जिंदगी विच लागू करो।

0: कोई को कामार। जाता उस दे वेड़े तिया जा कोई रूह ते पार। इस नगर दे लोका उत्ते किंज करिए इतबार। हत्थां विच गुलदस्ते रखना बुकल विच कटार। कि सुबह सवेरे अख सी खुली रूह ते बड़ा सी पार। राती सुपने दे विच आया किस दे संग तकरार। कि साजा दी तोहीन देख के हुंदा बहुत खुआर। मेरे अंदर नित ही रोंदा रोंदा एक फनकार। अज भी सारा दिन तू देखी रहना सिर ते पार। डिगी है दहलीज ते आके रत भिजी अखबार। ना गजलां दी पैड पछानन ना नजमां दी सार। अन्ने बोले खिची फिर दे दो तारी तलवार। के ना मैथो इनकारी है तू ना कर दें इनकार। भोले पंछी अपनी रूह नू एदा ताना मार। उड़न दे इना नू हुण तू घर रख के ना मार। तेरियां गजलां जीकन लोची कुंजड़ियां दी डार। तेरियां गजलां जीकन लोची कुंजड़ियां दी डार। कि असी तां सदा लिखी है लहू विच भिज के गजल। होर हुंदे ने जो लिखते बैर दे अंदर।
1: तुहाडे मन दी रीज पुगावांगे मन चाहे असी गीत सुनावांगे हर मन रेडियो जी।
2: धन्यवाद।

जर्मनी दी एक कहावत अनुसार मेहमान सब तो चंगा उदो लगदा है जदो ओ जा रहा होवे। लेखक परमिंदर सोडी, किताब संसार प्रसिद्ध मुहावरे, चंगे अते सोहणे विचारां नाल जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

पेत बारे इटली दी कहावत है कि अपने बटुए अते अपने दिल दी तह कदे नहीं दिखानी चाहिदी। चंगे विचार विचारो अते जिंदगी विच लागू करो।

0: साड़ी अमीर सभ्यता दिया निशानियां। तेल वेखो, तेल दी धार वेखो।
1: ए अखाण किसे कम लई टुकवां समा विचारन अते उड़ीक करन दी प्रेरणा देन लई बोलिया जांदा है।
0: मुहावे अते अखाण साड़ी अमीर सभ्यता दिया निशानियां। हरमन रेडियो, हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया।
2: कुलदीप मानक, मोहम्मद सदीक, रणजीत कौर, मोहम्मद रफी, शिंदा, दरशाद अते होर।

0: रोज दोपहरे 12 तो 1 बजे सिवनी समय अनुसार हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया ते।
1: पुरानी कहावत है कि सबसे ऊपर जाना है तो बहुत सारी मेहनत चाहिए, लेकिन अगर सबसे ऊपर टिकना है तो माँ की दुआ चाहिए। तुम्हारा मुझ तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि धूल कितनी भी ऊंची चली जाए कभी आसमान को गंदा नहीं कर सकते।
2: Hey yo, G-Funk, the flame's about to drop.

0: बदलाव कुदरत का खूबसूरत नियम है, सो असी बदल रहे हैं ताकि बेहतर कर सकिए। असी आ रहे हैं नवे अंदाज नाल ताकि संवाद होर खूबसूरत बना सकिए। स्टूडियो दे इस पार असी, स्टूडियो दे उस पार तुसी, आओ मिलके जिंदगी दी खूबसूरत जुगलबंदी पेश करिए। तुहाडा सहयोग साडा हौसला, हरमन टीम हरमन परिवार दे संग पूरे मन दे नाल। आखिर कुछ बेहतर करना ही ता जिंदगी दा राग।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी आ

सुनी जाओ हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया।

रात बारे हीब्रू दी कहावत है कि रात इस लई बनाई गई है ताकि असी दिन विच कीते कर्मां ते विचार कर सकीए। सुने विचारां दे अंग संग हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया नाल

0: मिनट के दो मिनट खत्म।
1: जट्टा के मुंडे साढ़े नाल है जो चंडा गाड़ के बदमाशी करना है।
2: थोड़ा थोड़ा हसना जरूर चाहिए।
3: ना हुण किते ते कोका जड़न लगे हो
4: अपने मानसे आले अशोक बंसल ते।
3: बस ऊ ही छड़ी जाऊ।
4: नीलू तू ओनू कदे फिर कार चलाउंदे नू नहीं वेख्या?
5: अच्छा
4: मैं क्या करके कार दे सारे शीशे बंद, बस जने खने नू गाला कड्डी जाऊ।
5: अन्ना वे दिखदे नहीं प्यो वाली सड़क बीमा करे कि तेरे बाल छड़ दे बच्ची नी जे अग्गे अग लगी चल कुत्ता दा अंजद।
4: फिर बस फिर की कोलो लंघदे किसे ट्रक आले ने वेख लिया भी गाला कड़ दे। उन्हें ट्रक ला के साइड ते नाल ही हाथ दे के कार रोक ली।
6: ओ लाला गाला किनू कड़दा सी ओ?
5: सॉरी सॉरी सॉरी भाजी मेरा कसूर है, मेरी गलती है, शीशे खुले रह गए जी।
7: ना इस शीशे खुले रहन नाल की संबंध सी?
4: ओए नीलू जे शीशे खुले रह गए सी ताही ता गाला दी आवाज बाहर गई सी। सच कहा किसी ने भी कला शरीर ही मोटा नहीं हुंदा नाल दिमाग भी मोटा हो जांदा। तैनु मैं केड़ी केड़ी गल समझावां? तेरा ता ओ हिसाब आ जिवें एक बस कंडक्टर सवारी नूं पुछदा उसने झोले च की आओ, वो कहना सरदार जी जे बुझ लो मेरे झोले च की है, तो झोले विचले सारे आंडे थोड़े। कंडक्टर दे मुंह वल चाके लाला कहना मैं सवाल नूं होर सौखा करदा, जे तुसी हुण इह बुझ लो कि मेरे झोले च किन्ने आंडे आ, तो झोले विचले सत दे सत आंडे फिर थोड़े। कंडक्टर तेरे वांगू सोच सोच के कहिंदा ओ मैं कोई वेला हां, टिकटां नहीं कटणियां, नाले बुझण नूं मैं कोई जोशी हां, तू कोई माड़ा मोटा हिंट तां दे।
7: शर्मा जी हुण ना मैनूं रोकियो, मैं चली।
4: भतीजे नु कदा गुस्सा चढ़िया?
3: गुस्सा चढ़े ना जेड़ा हुणे हुणे कोका चढ़िया।
8: शायरी दी गल करिए ते इह गल याद कराउणा चाहांगे, तुहाडे विचों बहुते बंदिआं दे अंदर बहुत खूबसूरत महक हुंदी है जे इस नूं दुनिया भर दे विचों खंडा दिंदे ने, जिहनूं छूंदे खुशबू खुशबू कर दिंदे, जिन्हों छूंदे खुशबू खुशबू कर दिंदे। कुछ बंदे अंदर कस्तूरी हुंदी है,

बच्चे दी नजर विच दुनिया विच सत अजूबे नहीं हुंदे सगों 70 लख अजूबे हुंदे हन। एलन विल्सन। सोने विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो।

0: आओ सुनावा अखाण सियाणियां दा ज्ञान। लो जी अज दा मुहावरा, फाथियां नूं छड के उड़दियां मगर नहीं पैदा।
1: जेड़ी शै हथ विच आई होवे उस नूं छड के अजिही शै दे मगर पैणा जिस दी प्राप्ति सौखी जां यकीनी ना होवे मूर्खां दा कम है।
0: मुहावरे अखाण अते पंजाबी बोले पंजाबी बोले हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया।
2: एक बार फिर दस दिए भाई तुसी पुराने गीत सुनने ना, अहम मशहूर गीत दोपहर नू 12 बजे तो लेके 1 बजे तक मलकी दी ड्यूटी लाती है मालिका ने, ते जुत्ती मैं फेरनी है जे माड़ा गीत लग गया, नहीं तो अजे गीत वधिया लाऊगा। हां मेरे को तबेला जी बहुत पुराने सुने पाया।

0: तूफाना विच हौसलिया दा दीप जगाउणा आउंदा ऐ ते फिर तू आशिक चोटी दा।
1: सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हां तुहाडा अपना राज काकड़ा, हरमन रेडियो पंजाबीयत दी पंजाबी दी बहुत बहुत सेवा कर रहा है। एदे लई इह वधाई दे पात्र ने ते मैं इन्हां दा बहुत थैंक्स करदा कि इह नवें नवें लोकां नूं तुहाडे रूबरू करदे ने ते करदे रहणगे। मेरे वल्लों दिल दीआं गहराईआं चों इन्हां नूं बहुत बहुत लख

0: आवाज दी खूबसूरत प्रवास हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया ते आप सब दा स्वागत है। रेडियो ते अपने गीतां दी फरमाइश ले तुसी साडे नाल ईमेल अते टेलीग्राम राही जुड़ सकते हो। टेलीग्राम मैसेज करो इस नंबर ते 9197080149499। तुसी सानू ईमेल भी कर सकते हो request@harmanradio.com।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी।

ना शुकरापन बारे लिबनान दी एक कहावत है, जिस बंदे ले तुसी कुछ चंगा कीता होवे उस तो बच के रहना चाहिदा है। लेखक परमिंदर सोडी, किताब संसार प्रसिद्ध मुहावरे, चंगे अते सोहणे विचारां नाल जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: साड़ी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। कर ना कर बन्ने ता खड़।
1: इस अखाण विच बेकार मनुख नूं कुछ करन दी प्रेरणा दित्ती गई है।
0: मुहावे अते अखाण साड़ी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया।
2: दिल वाली गल हर शनिचरवार अते एतवार सुन सकते हो harmanradio.com ते एंड्रॉइड अते आईफोन एप्लीकेशन दे राही आईट्यून एप्लीकेशन दे राही या किसी भी वाईफाई सेट ते बिना

0: अपनी बिजनेस की तरक्की लिए तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकते हो। हरमन रेडियो ते अपनी बिजनेस की एड देने लिए जा किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नु स्पॉन्सर करने लिए संपर्क करो accounts@harmanradio.com या harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी

तभी चलो काम ते सुनी जाओ हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया।

लालच बारे सियाने कहंदे हन कि हवस ते लालच दी कोई सीमा नहीं हुंदी। विद्या विचारी तां पर उपकारी। हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया।

दिन नु होर भी वजा। तो हाडे मन दी रीत सुगावांगे मन चाहे असी गीत सुनावांगे हर मन रेडियो।

0: बाद उस पुछिया की हाल है। मैं कहा चंगा जी, मत्थे ते पेंदियां परेशानी दियां लकीरां लुकोंदियां। उस फिर पुछिया मैनू ते हुण अपने आप नूं वी, मेरे तो बिना भी कुछ उपरा जिहा लगता है। ओदे मोढे तो परां तकदियां मैं हौली जिही कहा, ओपरिया वांगू पुछदा जवाब ओपरा ही लगू। पलट देनी ओ बोलिया, ते अपने वांग पुछा फिर। मैं इस वेर उसदिया अखां अंदर झाक के कहा, अपनिया दा हाल पुछी दा नहीं हुंदा, हाल आपे पता लग जांदा हुंदा।
1: तुहाडे मन दी रीझ पुगावांगे, मन चाहे असीं गीत सुनावांगे। हर मन रेडियो ते।

जना खना कहिंदा है ट्रेंड कर गया साडे आला ही गया सी इहनू शुरू करके साडे आला ही जांदा जांदा एंड कर गया तेरी फायर वर्ग।

युद्ध बारे अफ्रीका दी कहावत है कि जदों अन्ना एक कहे कि ओ पत्थर सुटेगा ता समझ जाओ कि उसदे पैर हेठां पत्थर पिया है। सुने विचारा ले सुने।

0: सुनावा अखाण सियाणिया दा ज्ञान। लो जी अज दा मुहावरा, हाड़ सड़े सावण वरे जट पड़ोले परे।
1: इस दा मतलब है कि जदों हाड़ विच चंगी गर्मी होवे अते सावण विच रज के वर्खा होवे तां अन्न दी उपज चोखी हो जांदी है।
0: मुहावरे अखाण अते पंजाबी बोले, पंजाबी बोले। हरमन रेडियो, हरमन रेडियो, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया।

सफर ते शहर तो सारी दुनिया तक दा सफर तय करांगे असी ते तुसी मिलके पूरी सांझ दे नाल। प्रोग्राम सांझ तुहाडे अपने रेडियो स्टेशन हरमन रेडियो ते। इस सांझ भरे सफर दा हिस्सा

0: केड़े मंत्री ने कीता एक बार फिर लोकतंत्रता नु नीलाम ते केड़ी बॉलीवुड हस्ती दे प्यार दे चर्चे हो गए आम। इस सब नाल सानू जानू करवाएगा तुहाडा अपना हरमन रेडियो। तो जुड़ो हरमन रेडियो दे नाल ते सचेत होवो अपने आले दुआले बारे, अपने देश बारे, विदेश बारे। इत्थे तुहानू मिलणगियां ना सिर्फ खबरां बल्कि खबरां दी मरम्मत भी, सिर्फ ते सिर्फ तुहाडे अपने हरमन रेडियो।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसीं।

बड़े शब्द कोश गदाम दे धूड़ परे कोनिया वांग हुंदे हन जिथे कोई कदे कदाई ही आंदा है। रिचर्ड वैले। सोने विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो।

ओही टोटा नहीं जिथे पंज दरिया वेंदे सन। इस पंजाब दियां सरहदां तों बाहर भी धरती उत्ते कई पंजाब वसदे ने। सो इस पंजाब अते उस पंजाब विचली सांझ नाल तुहानूं रूबरू करावांगे प्रोग्राम सांझ राहीं तुहाडे अपने रेडियो स्टेशन हरमन रेडियो उत्ते। सुनदे रहो अते सांझ।

0: झूठ चढ़ जाए पतझड़ वांगू, मेरा झूठ चढ़ जाए पतझड़ वांगू, खिड़ेगी हमेशा हकीकत खिड़ेगी। इसलिए असि लैके आने तोड़े लिए ताजा तरीन सोहनिया खुशनुमा सचिया सुचिया खबरां दा सिलसिला। देश ते विदेश दियां खबरां ते जानकारियां दी अपनी डेली डोज लई जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल, जो दवेगा तुहानू तुहाडे कल अज ते कल दी पूरी खबर। तुहाडा अपना हरमन रेडियो।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसीं।

0: बोलन बारे चीन दी कहावत है कि दो चंगे बुलारे भी एक चंगे सोते दी बराबरी नहीं कर सकते। चंगे विचार विचारो अते जिंदगी विच लागू करो। हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया।
1: Show mercy on it.

0: जनाब सुरेंद्र मोहन होनी लिखते ने जदों कृपान खंजर तीर मैनू मार ना सके जदों कृपान खंजर तीर मैनू मार ना सके तो फिर दुश्मन ने मेरे विकण की अफवाह फैला दी।
1: तुहाडे मन दी रीझ पुगावांगे मन चाहे असीं गीत सुनावांगे हर मन रेडियो ते।

जे तुसी किसे उजड़ नू अपने घर दे बूहे तक आन देवोगे तां ओ अगले दिन तुहाडे वेहड़े अंदर आन वड़ेगा। विचार जॉनसन लिंडन। सोहणे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: सुनावा अखाण सियाणिया दा ज्ञान। लो जी अज दा मुहावरा, जिधर गई बेड़िया उधर गए मला।
1: किसी बंदे दे जान नाल उस दे असर सुख जां दुख दे चले जान ते ए अखाण वर्तदे हन।
0: मुहावरे अखाण अते पंजाबी बोले। हरमन रेडियो, ऑस्ट्रेलिया।

0: की वापर रहा है। हर देश विच हो रही भिन्न भिन्न गतिविधियां दी जानकारी मुहैया करवाएगा हरमन रेडियो। हरमन रेडियो, हरमन रेडियो विदेशी बसदे पंजाबियां दी रूह नूं पंजाब दी मिट्टी नाल जोड़न दा उपराला कर रहा है हरमन रेडियो। हरमन रेडियो, हरमन रेडियो, हरमन रेडियो, हरमन रेडियो।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसीं आहा।

0: पहरावे अते अखाण साडी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। पाप दा बेड़ा भर के डुबदा है।
1: इस दा पाव है कि बुरे कम करन वाले दी अत उसनू तबाह कर दिंदी है।
2: अपनी बिजनेस दी तरक्की लई तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस दी एड देण लई जां किसे भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करन लई संपर्क करो। अकाउंट्स एट harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन च विजिट करो।
3: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन ऑस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो हरमन रेडियो।

काम करना ना मेहना है ना सराप, वेलड़पुणा मेहना भी है सराप भी। घालना विचों ही आत्म सम्मान प्राप्त हुंदा है, ते आत्म सम्मान अध्यात्म दी जिंद जान है। विचार जसवंत सिंह नेकी, किताब गुरमत मनोविज्ञान। सोहने विचारां ले जुड़े रहो हरमन रेडियो नाल।

कलयुग दे इस कोहर समय अंदर आत्मिक सुखा दी प्राप्ति लई अपने आप नु परमात्मा दे चरणा नाल जोड़न वास्ते हरमन रेडियो आप लई रोजाना लेके हाजिर है गुरबानी प्रभात प्रोग्राम जिस विच तुसी अंदरूनी सुख देन वाली पवित्र बाणी आसा की वार दा कीर्तन नितनेम दी बाणिया दा जाप उपरांत गुरबाणी विच पए होए कीमती हीरे मोती गुरबाणी कथा विचार दा लाहा लवोगे तुसी रोजाना सवेरे 4 बजे तो लेके 8 बजे तक सिर्फ ते सिर्फ अपने प्यारे हरमन रेडियो राही प्रोग्राम गुरबाणी प्रभात विच

निंदा दे मामले दे विच जसवंत सिंह नेकी अपनी किताब गुरमत मनोविज्ञान दे विच लिखदे ने कि निंदा दा सब तो वद उचित उत्तर खामोशी है। निंदा दी परिभाषा इउं कीती जा सकती है, किसी व्यक्ति बारे ऐसे कथन करने ते प्रसारने जो झूठियां गलत बयानियां ते उसरे होण ते उस दे कम्मां ते इरादियां दी गलत पेशकारी कारण उस दी बदनामी ते मानहानी दा कारण बनदे होण, इस नूं तोमतबाजी ते बद जुबानी तो नखेड़ के वेखना बनदा है। झूठ तो इलावा इस विच मंदभावना, फुणस ते ईरखा दे अंसर हुंदे हन ते निंदित व्यक्ति नूं अपजस दा शिकार बनाउण दे यतन भी शामिल हुंदे हन। इस विचला झूठ इतना स्पष्ट हुंदा है कि कोई मूर्ख ही उस नूं सच समझ सकता है, पर निंदक उस नूं सच मन के उसका प्रसारण करता है, वह भी बेपरवाह होके। जेकर झूठ होण दी थां लाई गई तोमत सच्ची होवे तां उह निंदा नहीं कहाउंदी, ऊज लाउण दी क्रिया बन जांदी है जो निंदा तो भिन्न समझी जांदी है। निंदा असलों निर्दोषां उपर कुड़ावे दूषण लगाउण दी क्रिया हुंदी है। सिख धर्म अनुसार निंदा वड्डी मूर्खता समझी जांदी है। गुरमत विच संसार दे हर प्राणी नूं इस तो परहेज करन दी ताकीद कीती जांदी है ते चेतावनी दित्ती जांदी है कि निंदक दा खोखलापन झट ही नंगा हो जांदा है, नंगा होए बिना रह ही नहीं सकता। भगत रविदास जी हरेक नूं निंदा तो बड़े करड़े शब्दां राहीं वरजदे हन, निंदक नूं नरकां दा भागी मानदे हन। गुरु साहब दे विचार अनुसार निंदक प्रभु दे नाम नाल प्रीत नहीं करदा, जे नाम नाल प्रीत करदा होवे तां किसे दी वी निंदा किवें कर सकदा है, वह तां केवल निंदा करन विच्चों ही खुशी लैंदा है। इह कैसी मूर्खता है। इस बारे एक बड़ा प्रभावशाली प्रमाण गुरु अर्जन देव जी पेश करते हैं। राग सारंग विचों कहिंदे हन, नाम अमोला प्रीत न तिस्यो पर निंदा हितकारै, शापुर बांध सवारे त्रिणको द्वारे पावक जारे। भाव निंदक घा फूस नूं बन के तीले तीले नूं सवार के अपने लिए छपरी या घर बनाउंदा है ते फिर उस बूहे विच अग बाल के बैठ जांदा है। इस तो वड्डी मूर्खता होर की हो सकती है। विचार जसवंत सिंह नेकी, किताब गुरमत मनोविज्ञान।

दुनिया भर दे कोने कोने विच वसदे पंजाबियां दी दिली चाहत हुंदी है कि ओ हर हिले सिखी दे मुकद्दस स्थान दरबार साहब अमृतसर साहब नाल जुड़े रहन। पंजाबियां दी इस अध्यात्मिक चाहत नूं पूरा कर लई हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया वल्लों सिडनी समय अनुसार रोजाना शाम 5 बजे दरबार साहब अमृतसर तों बख्शिश होए हुक्मनामे दी शब्द विचार ब्रॉडकास्ट की जा रही है। हरमन रेडियो, सबदा रेडियो।

टे सिक्के चलदे देखे, जिन्ना दा ना जगदे कोई ओ वी पुत्तर पलदे वेखे। उस दी रहमत दे नाल बंदे पानी उत्ते चलदे वेखे, लोकी केंदे दाल निगलदी मैं ता पत्थर गलदे देखे। जिन्ना ने कदर न कीती रब दी हथ खाली ओ मलदे देखे। कई पैरां तो नंगे फिरदे सिर ते लब्बण छावां, मैनू दाता सब कुछ दिता क्यों ना शुकर मनावा। कई पैरां तो नंगे फिरदे सिर ते लब्बण छावां, मैनू दाता सब कुछ दिता क्यों ना शुकर मनावा।

0: मन दे स्रोत जसवंत सिंह नेकी लिखते हैं कि जिवें बिल्ली दे बलूंगड़े नूं चूहे फड़ने सुभाविक ही आउंदे हन उवें मनुख नूं पूर्वले जन्मां दे संस्कार सुभाविक ही भजाई फिरदे हन। जदों तक जीव मुक्त नहीं हुंदा जूनां विच पिया रहिंदा है। पिछले जन्मां विच जो डिठा सुनिया कीता कमाया खाया सब साडे मन दीआं गुप्त तहां दे विच संस्कारां दे रूप दे विच मौजूद रहिंदा है। पूर्व जन्म दे संसे दुख मल किलविक प्राचित तोक दुरमत सब नाल हो तुरदे हन प्राप्त होई विरासत वांग। होमे दा बीज भी नाल नाल तुरदा है। फिर असी इसे होमे वाले मन दे मगर लग के तुरदे हां ते जन्म मरण दे विच पए रहिंदे हां। ये सब साडे मन दे स्रोत हन जो जन्मां जन्मां तों मन दा स्वरूप निरूपण दा कारण बनदे हन। इउं भी कह सकदे हां कि मन दी घाड़त निर्धारण करन वाले एहो वड्डे कारण हन। पूर्वले जन्मां दे विच बीज नहीं बोया ओ हुण फुटदा नहीं। इउं साडे मन दा खास करके उस दे अचेतन तो पराचेतन भागां दा एक अहम हिस्सा पूर्वले जन्मां दी एकत्रित संस्कारां तो उपजिया मन्निया जांदा है। भैड़े कर्मां कारण इस मन नूं जन्मां दी मैल लग जांदी है ਅਤੇ ਉਹ ਇਤਨਾ ਕਾਲਾ ਸਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਧੋ ਹੋਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੱਚੀ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਸਿਆਹ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਈ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸੁਮਤ ਕਿਸੇ ਰਸਿਕ ਬੈਰਾਗੀ ਪੁਰਖ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਤੀ ਆਤਮਾ जाग पैंदी है। गौड़ी पूर्वी दे विच पंजवें पाशा लिखदे हन पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे भेट्यो पुरख रसिक बैरागी मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी। विचार जसवंत सिंह नेकी किताब गुरमत मनोविज्ञान।
1: लख लाता एहो जियां जवानियां दे चिट्टे ते समैकां पी के मुल भुल गए ने जो बच्चियां दियां कुर्बानियां दे।

मजलूमा दे ओ दोस्त ने नेकी ओना दी पहचान है। शीश चुका के आदर करिए श्री गुरु गोविंद सिंह ओना दा नाम।

तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। तुरकी बाणी सानू गुरु साहबान ने साढ़े ते तरस करके अपनी किरपा द्वारा प्रेम पदार्थ बख्शिया है। जद असी गुरबाणी विचारदे हाँ तो साडिया गुरु साहबान नाल गल्लां हुंदियां हन। गुरु साहबान नाल गल्लां करन दा एक नमाणा जिहा हीला प्रोग्राम गुरबाणी विचार दे तहत हर रोज सुनना शामी हरमन रेडियो ते।

विचार नाम दी, विचार शब्द दी, विचार अखुट खजाने दी, विचार महान उपदेशां दी, विचार दृढ़ता दी, विचार आत्मक अडोलता दी। प्रोग्राम गुरबाणी विचार विच रोजाना तुहाडे अपने रेडियो हरमन रेडियो ते वधेरे जानकारी लई लॉग इन करो harmanradio.com ते।

0: अपनी बिजनेस की तरक्की ले तुसी भी हरमन रेडियो दी सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देने लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करने लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन च विजिट करो।
1: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ।

0: नित उठ गावो प्रभ की बाणी, आठ पैर हर सिमरो प्राणी, घर बाहर प्रभ सिमणी थाई, संग सहाई जय हौ जाय। नित उठ उस प्रभु दे गुण गाउन लई, गुरु नानक पातशाह दी पंजवी जोत दे इन्हां अलाही बोलां दे नाल आप सब दा जो दुनिया दे कोने कोने तो आवाज दियां जादूमई तरंगा राही हरमन रेडियो दे वेड़े विच संगत रूप विच जुड़ बैठे हो, आप जी दा दिल दियां गहराइयां तो स्वागतम है। अते दलजीत सिंह वालों प्यार ते सत्कार भरी गुरफते प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अमृत वेले दे पंज वज चुके ने, ते अमृत वेले आप जी रोजाना सरवण करदे हो अमृतमई प्रोग्राम गावो सच्ची बाणी। अज दे इस प्रोग्राम विच रोज दी तरह सच्ची बाणी दा शब्द गायन, गुरमत विचारां अते नितनेम दी बाणी आप जी सरवण करोगे। ते आओ रोजाना दी तरह इस प्रोग्राम दी आरंभता करदे हां नितनेम दी बाणी जपजी साहिब दे नाल।
1: एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सोचै सोच न होवी जे सोची लहवार, चुपै चुप न होवी जे लाय रहां लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार, सह सियान पाला खोए ता एक न चले नाल। किव सच्यारा होई है किव कूड़ै तुटे पाल, हुकुम रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहा जाई, हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वड्याई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पुआई है। हुक्म

पर हासो कर लै जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रिया समाई, गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई। जे हों जाना आखा नाई, कहना कथन न जाई, गुरा एक दे बुझाई। सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। तीर्थ नावा जित सपावा, विन पाने के नाए करी। जेती सृष्ट उफाई वेखा, विन कर्मा के मिले लई। मत विच रतन जवाहर मानक, जे एक गुर की सिख सुनी। गुरा एक दे बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। जे जुग चारे आर जा, होर दसूनी होए। नवाख नाम विच जानिए, नाल चले सब कोए। चंगा नाव रखाए कै, जस कीरत जग ले। जे तिस नदर न आवे, ता वात न पुछे के। कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोष तरै। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतिया गुण दे। तेहा कोई न सुजे, जे तिस गुण कोई कर।

करै विचार, करते कै करनै नाही समार। तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। जे को बुझै होवै सचियार, तौलै उपर केता पार। धरती होर परै होर होर, तिस्ते पार तलै कमन जोर। जी

एक बार जो तुद पावे साई पली का, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जाप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर।

कार जो तुद पावे साई पली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवट हत्या कुमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कुड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेच मल पाक खाए।

जोत दुपावै साई पलिकार। तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कै सिर पार होए, अखरी नाम

सुनिया मनिया मन कीता पाओ, अंतर गत तीर्थ मल नाओ, सब गुण तेरे मैं ना ही कोई, विन गुण कीते भगत ना होए, स्वस्थ आत बाणी परमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ, कवन सुवेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार,

पाताल लख आकाशा आकाश ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक वात सैंस अठारा कहन कतेबा असलू एक तात लेखा होए तां लिखिया लेखा होए विनाश नानक वड्डा आखिया आपे जाने आप साला ही साला एती सुरत न पाईया नदियां अत्ते वाह पवे समुंद न जानिया समुंद सा सुल्तान गिरया सेती माल तन कीड़ी तुल न होनी जे तिस मनो न विसरै अंत न सिफती कहन न अंत अंत न करना दे न अंत अंत न वेखन सुन न अंत अंत न जापै क्या मनमंत अंत न जापै।

चाहे ए अंत न जाने कोए, बहुता कहिए बहुता होए, वड्डा साहेब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ, एवड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तुमाए, केते

मूर्ख खाई खाए केतिया दुख पुख सदमार, ए बेदात तेरी दातार बंद खलासी पाने होए, और आख न सके कोए जे को खाएक आखन पाए, ओ जाने

नानक पातशाही पातशाह अमूल गुण अमूल व्यापार अमूल व्यापारिये अमूल भंडार अमूल आवे अमूल ले जाए अमूल पाए अमूला समाए अमूल धर्म अमूल दीवान अमूल तुल अमूल प्रवान अमूल बख्शीश।

आखे पड़े करे वख्यान, आखे ब्रह्मे आखे इंद, आखे गोपी तै गोविंद, आखे ईसर आखे सिद्ध, आखे केते कीते बुद्ध, आखे दानव आखे देव, आखे सोर नार मुन जन सेव।

जुग जुग एक वेश एका माई जुगत वे आई तीन चेले परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान जिव तिस भावै।

आसन लोए लोए पंडार, जो कुछ पाया सोए कावार, कर कर वेख है सिर जनहार, नानक सते की साची कार, आदेश तसै आदेश,

लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश ए तरह पत पवड़िया चढ़िया होए अकीस सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै ठीस आखन जोर चुपै नहीं जोर जोर न मंगदे न जोर जोर न जीवन मर न जोर जोर न राज माल मनसोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुती तिथि वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती था परखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिन के नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथै पाए नानक गया जापे जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का खो करम केते पवन पानी बैसंतर केते कान महेश केते ब्रह्मे कार्त कड़िया रूप रंग के वेश केतिया करम भूमि मेर केते केते तूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवेश केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद केतिया खानी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरती सेव केते नानक अंतरांत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथै नाद मनोद कोट आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथै कार्त कड़िए बहुत अनूप ता किया गल्ला कथिया ना जाए जे को कह पिछे पछताए तिथै कड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथै कड़िए सुरा सिदा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर न कोई होर तिथै जोध महामलसूर तिन मैं राम रिया भरपूर तिथै सीतो सीता मैं मामा ताके रूप न कथने जाए ना ओ मरे ना ठागे जाए जिन कह राम वसै मन माहे तिथै भगत वसे के लोए करे आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसे नंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथै।

सच बाणी सच शब्द है पाई, गुर कृपा ते होए। धन गुरु अमरदास महाराज जी दे इन्हां बोलां दे नाल आओ सरवण करदे हां गुरबाणी दा एक शब्द।

पाव खंडन प्रभ तेरो नाम राग राम कली विच पंचम नानक किदे सोने बचन कर रहे ने कि मालिक तेरा नाम ही पापा तो मुक्ति कराउन वाला है। जिसनु सुन सुन के मन नु धीरज मिलता है। अगे राग सोरठ विच भी सतगुरु ने ऐसे बचना नाल होर दृढ़ता बख्शिश कीती है। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकर देसा। आपा भी पंचम पातशाह वांग अकाल पुरख दे सामे खड़े होके कबूल करिए कि असी मैल दे नाल भरे हुए हां, पर तेरा मुटक तीमा नो ये सुभाए कि जीवा नू अपने नाल जोड़ के उन्हां दे हिरदियां लई मैल धो दवे। असी औगणा नाल भरपूर हां ते मालिक तेरा सुभाव है कि सेवकां दे पर्दे ढकदा है। जिवें छोटे बच्चे दे औगणा नू मां बाप चितार दे नहीं, सगों बहुड़ पिता गल लावे वाली अवस्था बनती है। एक गल होर सांझी करनी है कि मनुखा सुभा अपने गुणा की तो चर्चा बड़ी खुशी नाल करवाउंदा है। जे थोड़ा जा किते दानी सुभा होए किसी गुरुद्वारे किसी मंदिर विच अपने नाम की सिल लगवा के किसी गरीब गुरबे नू रोटी पानी जां वस्त्र दे के वो अपनी थां थां ते वड़ियाई करवाउंदा फिरदा है। किसी गरीब की मदद करेगा तो बड़े मान नाल गल करेगा कि मैं फलां काम कीता, पर कदे किसी गरीब का हक ते हक ते डाका मारन दी पिणक उन्हें कदे किसी दूसरे नूं भी नहीं दित्ती। पर जे बाबा फरीद जी नूं पुछदे आ ना वो कहिंदे अपनी वड्याई कराउण तों पहलां अपने हिरदे विच झाक लिया करो। फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिखना लेख, आप नड़े गरीबान में सिर नीवा कर दे। जिनी दुख जिनी देर मनुख दी मैं है मेरी है, इसका हिरदा शुद्ध ते कोमल नहीं हो सकता। पर जदों ए तू तू करता तू हुआ इस अवस्था विच हो गया ना, फिर मुड़के मुझ में रहा ना हो, फिर मैं खत्म हो जाती है, मेरी खत्म हो जाती है। तो जब मेरी खत्म हो जाए तो वो रूप विच हो जाएगा जेड़े मालक दा जेड़े मालक नूं असीं याद कर रहे हैं। तो आओ राग श्री राग विच दर्ज भगतां दी बाणी दा एक शब्द जो भगत रविदास जी दा बख्शिश कीता होया है, हजूरी रागी भाई साहब भाई रविंदर सिंह जी दे जथे पासों सरवण करते हां। तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा।

0: वो करतार है, करता पुरख है, उसने आप ही किरत दा महान चक्कर चलाया। ता फिर ओ अपने सरजे जिया नू किरत करदियां देख के कितना खुश हुंदा होवेगा। अकाल पुरख तो अगे साडे गुरां ने भी किरत करन दी ही मिसाल कायम कीती। विचार जसवंत सिंह नेकी, किताब गुरमत मनोविज्ञान। सोहने विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो नाल।
1: आनंद गुरबाणी विच इस सिद्धांत बहुत बार दृढ़ कराया गया है, पर समाजिक तौर ते असीं आनंद दे अल्फाज नूं दुनियावी सुखां दे लई वरतदे हां, पर सतगुरु सानूं समझाउंदे ने आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जाणिया। हुण बाबे कबीर नूं पुछ के वेखीए तां उह कहिंदे मैनूं तां मौत विचों वी आनंद आउंदा है। कबीर जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाई है पूर्ण परमानंद। ता सतगुरु इस सिद्धांत नूं होर भी गुरबाणी दे शब्दां विच दृढ़ कराउंदे ने, अपने सतगुर कै बलहारे आगे सुख पाशे सुख सहजा घर आनंद हमारे। ए रहाओ दी पंक्ति है, राग सोरठ विच पंचम पातशाह जी दी बख्शिश है। ते ए पवित्र शब्द साडा मार्गदर्शक बनदा है। अपने सच्चे सतगुरु तों बलहार जाइए, जिस ने अपार कृपा करके मेरे मन नूं सुख सहज ते आनंद अवस्था विच टिकण वाला बना दिता है। ता जिवें आपां भगत कबीर जी दी गल कीती है, बाणी भावें ओह भगतां दी है, गुरु साहिबान दी है जां गुरसिखां दी है, उन्हां सारिआं ने अपने पिंडे ते ओह हंडा के, ओह अवस्था नूं हंडा के आनंद अवस्था दा प्रमाण दिता है। नहीं तां सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह ओह तत्ती तवी ते बैठ के भी तां आनंद लै रहे सन। भाई मनी सिंह दी गल कर लईए, पोटा पोटा करके उन्हां दा बंद बंद कटिया जा रहा सी, ओह भी आनंद अवस्था विच सन। आम इंसान दुनियावी पदार्थां ते भोगां विचों आनंद पालदा है, पर ओह आनंद कदे भी सदीवी नहीं हो सकदा। इस करके आओ गुरु जी नूं पुछदे हां, पातशाह दसो ये आनंद अवस्था किवें प्राप्त कीती जाए। ते गुरु साहिब दे गुरु अमरदास महाराज जी ने तां 40 पौड़ियां वाली बाणी आनंद साहिब दी रचना भी कर दित्ती। सिख मत विच लावां दे पाठ नूं भी आम तौर ते आनंद कारज किया जांदा है। ते इस आनंद अवस्था नूं आओ आपां शब्द गायन दे रूप विच सरवण करदे हां। शब्द है आनंद पिया वडभागी हो, ते इस नूं आवाज दित्ती है हजूरी रागी भाई गगनदीप सिंह जी दे जते ने। आओ सरवण करिए आनंद पिया वडभागी हो।

विचारे ए मनमुख का आचार हरे नाम न पाया जन्म व्यर्था गवाया नानक जम मार करे खुवार। राग गुजरी दी बाणी विचों पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी दे बोल ए मनमुख दी अवस्था दा वर्णन कर दे ने जिहड़े नाम नहीं चितवदे नाम दा चेता नहीं करदे जिहड़े कदे शब्द नूं नहीं विचारदे इहो तां मनमुख दा आचार है। मनमुख मन पिछे चलदा है ना गुरु दे शब्द पिछे नहीं तुरदा ते हालत की है हर नाम ना पाया जन्म बिरथा गवाया। ए जन्म नाम दी अवस्था पाउन लई मिलिया सी पई प्राप्त मानक तेहरिया गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। दसचे पाचक ने नानक जम मार करे खवार फिर ओ दोबारा जम्मन मरण दे गेड़ विच पै जांदा है। कदों ए मनुखा जन्म मिले कदों ए सफला कर सके ते मालिक दे दर ते कबूल पए हुण तां वेला है। अब कलू आयो रे इक नाम बोवो बोवो इस समा है मालिक दे नाम दी खेती करन दा ता आओ अपने हिरदयां विच गुरु शब्द दियां तनकारां

त्यो से काहे जग आए राम राजे। ए मानस जन्म दुलंब है नाम बिना बिरथा सब जाए। रागासा विचों धन गुरु रामदास पातशाह दे पवित्र बोल जिन्हां ने उस अकाल पुरख का नाम सिमरिया नहीं उसनु चेता नहीं कीता उन्हां दा इस जगत विच मनुखा जन्म लेना असफल है। सतगुरु सानू रोज समझाउंदे ने भई प्राप्त मानक देहुरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। वारी मिली है इस करके चेता तो रखना पैना है क्योंकि ए मानस जन्म दुर्लभ है ए दोबारा नहीं मिलना। दुर्लभ बड़े जुद्धा दे नाल मिलिया बड़ा जोर लगा 84 लाख दा गेड कटिया फिर ए मनुखा जन्म बनिया। ते जे ए असी व्यर्थ गवा लिया नाम बिना बिरथा सब जाए नाम जपन तो बगैर ए मनुखा जन्म व्यर्थ जा रहा है। आओ सतगुरां दे इन्हां बचनां नूं मानदे होए इस मनुखा जन्म दा लाहा खटिए व्यर्थ ना गवाईए तां आओ गुरबाणी दे लड़ लग के सरवण करिए गुरबाणी दा एह पवित्र शब्द।

टेक पाव स्पोर्ट। मेरे राम राय संता टेक तुम्हारी, जोत दुपावे सो परवान, मन तन तुही आधारी। संता टेक तुम्हारी, भाव के हे वाहेगुरु मेनू तेरी सपोर्ट है, तेरा ही आसरा है। साडी जिंदगी दे घर नूं थमलियां दी लोड़ हुंदी है, इस जहान विच कोई भी वस्तु बगैर किसी आसरे नहीं टिकी हुई, ये आपां सारे जानते हाँ। हर जीव किसी ना किसी ढंग नाल एक दूजे उपर निर्भर है, पर असलों जे जीव दूजे नूं कोई सहारा दे रहा है ना, ते ओ उस कोलों कुछ ज्यादा लैण दी लोचा रख रहा है। मां बाप बच्चे नूं पालदे ने, पढ़ाउंदे ने, चंगे गुण कला दिंदे ने, पर मन विच ए लालसा जरूर रहिंदी है कि साडा बच्चा वड्डा होके साडा सहारा बने। पर जदों इस टेक बारे भगत ते परमात्मा दा रिश्ता जांचदे हां, तां भगत परमात्मा दे दर ते अरजोई करके इउं कहिंदा दिसदा है, हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड्डा है, जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा है। ये शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच दो वार दर्ज है, एक वार बिल्कुल स्टार्टिंग विच जिथे नितनेम सोहले दी बाणी ते गुरु ग्रंथ साहिब जी दा अंग 13वां, ते दूजी वार ए अंग 171 उपर भी गौड़ी राग विच पंचम पातशाह दी बख्शिश सरलेख अधीन दर्ज है। वेखो परमात्मा सच्ची सृष्टि दा आसरा बनिया होया है, उसकी किसी कोलों कुछ लैण दी कोई तमा नहीं है, भगतां दी तो हर वेले टेक रखदा है, भगतां दी टेक तों संतां की ओट तों सच्चा सिरजणहारा। पर यह गल भी आप सारे जानते हाँ, भगतां ते संसारियां जोड़ कदी ना आया, इहो दोवां दा फर्क है ना। भगत सिर्फ उहदी ओट रखते ने, उहदा आसरा लेंदे ने, पर दुनियावी पुरख जिहड़ा है इह दुनियावी बंदियां धंदियां फंदियां दे विच फसिया, उहनां दे आसरे तुरिया है। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पवित्र अंग 746 उपर राग सुही विच दर्ज पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज जी की बख्शिश, आओ एक शब्द सरवण करते हां, भगतां की टेक तों। इस शब्द का कीर्तन रूप विच गायन किया है हजूरी रागी भाई गगनदीप सिंह जी के जथे ने, आओ सरवण करिए भगतां की टेक।

ज्ञान गुरमुख रिहा समाई गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई। जोगियां कोल एक टेढ़ा मेढ़ा जिहा सिंह दी शकल दा साज हुंदा है जिस विचों निकली आवाज नूं ओ नाद कहिंदे ने। सिंगी शब्द सदा तुन सोहै एनस पूरे नादं। पर राग सुर गुरु रामदास महाराज जी नूं पुछदे आ ते ओह कहिंदे ने आपे सिंगी नाद है प्यारा। किसे चीज दा किसे सिंह दा ओदी आवाज नूं नाद कहना ये भुल है। ओ मालक आप ही ओ साज ओ आवाज बख्शदा है। आपे सिंगी नाद है प्यारा तुन आप वजाए आपे। आपे जोगी पुरख है प्यारा वो ते जोगी भी आप है संजोग भी ओ बनाउंदा है। आपे ही तप तापे। सतगुरु गुरु अमरदास जी ता ए कहिंदे ने कि राग नाद ताई सोहणे लगदे ने जे साडी सुरत साडा ध्यान मालिक नाल जुड़ सके। जे जीव आवाजा साजा विच फसिया रवे ता मालिक दी दरगाह विच प्रवान नहीं पैंदा। राग नाद शब्द सोहणे जां लागे सहज ध्याना राग नाद छोड़ हर सेविए ता दरगे पाइए मान। भाई गुरदास जी अपनी रचना दी 15वीं वार दी 16वीं पौड़ी विच कुछ इउं फरमान करदे ने। रतना देखे सब को रतन पारखू विरला कोई। वडमुले मोती ता सब कोई वेख लेंदा है पर इस मोती दी परख किसे पारखू नूं भाव जोहरी नूं हुंदी है। राग नाद सब को सुने हर कोई चंग कहिंदा है बड़ा आनंद आया राग गा रहा सी नाद वज रहा सी। पर सतगुरु दी बाणी दे उपदेशां नूं भाई गुरदास जी इउं वर्णन करदे ने शब्द सुरत समझ विरलोई को विरला विरला इस नूं समझ सकदा है। सो रागां नादां नूं सुन के सिर तां सबदा हिलदा होएगा पर राग नाद विच सुरत जोड़न वाले बहुत विरले ने। ਤਾਂ ਆਓ ਗੁਰਮੁਖਰੋ ਰਾਗ ਕਲਿਆਣ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਣ ਨਾਦ ਧੁਨ ਆਨੰਦ ਬੇਦ ਕਥਤ ਸੁਣਤ ਮੁਨ ਜਨਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਮੰਡਲੀ।

अथ कहानी जन बोले अमृत बाणी। पंचम पातशाह धन गुरु अर्जुन देव महाराज जी रब्बी गल सानू सरवण करा रहे ने कि परमात्मा दी कहानी उसकी गल कहनी बड़ी अकथ है, कहने तो बारी है, पर जदो असी सेवक बन के ते अमृतमय बाणी दे बोलां राही उसकी उस्तत करदे हां ते उसकी अकथ कथा विच जुड़दे हां ता आओ रब्बी अकथ कथा विच जुड़िए, शब्द गायन सरवण करिए ए शब्द दे रूप विच।

0: इस मन को कोई खोजो पाई। गुरबाणी की आत्मक खोज अते आत्मक लाहे की प्राप्ति लई गुरबाणी दियां गुझियां कुंडियां नूं खोलदा प्रोग्राम गुरबाणी विचार सुनते रहो सिर्फ ते सिर्फ तुहाडे अपने हरमन रेडियो ते जुड़े रहो हरमन रेडियो नाल।
1: ऊच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे गावते उदरे सुनते उदरे बिन सहे पाप कनेरे। राग बिलावल दी बाणी विच्चों पंचम पातशाह दे ए पवित्र बोल। हे मालिक अकाल पुरख तू बेअंत है सारी सृष्टि दा मालिक है तेरे गुणा दी कोई सार की जाने कोई उसते गुण गा रहा है गावे को तान होवे किसे तान के उसने ताकत दिती है गावे को दा जाने निशान कोई इस करके गा रहा है कि मालिक ने निशानियां दित्तियां ने जीव साडे नाल जोड़े ने दातां दित्तियां ने कोई अपने आचरण करके मालिक आचरण वाला है कोई इस करके गा रहा है कि मालिक बनाउंदा है टाउंदा है भाव के हर गुण गाया तो जा रहा है पर उहदे गुण बेअंत ने ते जिहड़े भी उहदे गुण गाइए गावते उदरे सुनते उदरे सुनते पनीत कहते पवित जिन्हां ने उहदे गुण गाए उहदे गुण सुने सारिआं दा उद्धार होया बिनसे पाप कनेरे उहनां दे जिहड़े पाप संताप दोख दलिद्र सब दूर हो गए। तां आओ आपां वी उस मालिक दे गुण गाउण लई ए शब्द राही अपने अंतर आत्मा नूं गुरबाणी दीआं इन्हां लहरां विच जोड़दे हां।

जप मन गोविंद हर गोविंद गुणी निधान, सब सृष्ट का प्रभ मेरे मन हर बोल हर पुरख अविनाशी अविनाशी, जो सदा सदा ले कैन है। संसार दे बाकी सब जीव जंतु रुख बिरख जो भी सन दिसता है सब नाश बनता है, पर अकाल पुरख सदा सदा ले अविनाशी है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। पर उस अविनाशी मालिक दे बारे पूरे गुरु तो ही ज्ञान प्राप्त हुंदा है। वर्ण न साको तुमरे रंगा, गुण निधान सुख दाते। अगम अगोचर प्रभ अविनाशी, पूरे गुरते जाते। ओ अविनाशी वाहिगुरु, जो आवागौन दे चक्कर विच ने पैंदा, काल दे चक्कर विच ने, अकाल मूरत है। सच हुकम तमारा तख्त निवासी, आए न जावे मेरा प्रभ अविनाशी। असी जीव उसनु अविनाशी तो कह दिंदे हां, पर असल तत्थ जानदे नहीं। इहो अवस्था सी उन्हां सिद्धा जोगियां दी जिन्हां नाल बाबे नानक ने गोष्टियां कीतियां ते फरमान कीता, अविनाशी प्रभ खेल रचाया गुरमुख सोझी होई, नानक सब जुग आपे वरते दूजा अवर ना कोई। वो वाहिगुरु सारे जुगां ते जुगां तो भी पहला आप ही वरतदा आया है। जे सतगुरां नूं पुछिए कि अविनाशी अकाल पुरख नूं सिमरिया मिलदा की है, तां सतगुरु बचन करदे ने, कटिए जम फासी सिमर अविनाशी, सगल मंगल सुगियाना, हर हर जप जपिए दिन राती लागे सहज ध्याना। आओ गुरु प्यारियो, उस अविनाशी वाहिगुरु नूं याद करिए जिसका सिमरन कीतियां जन्मां जमांतरां दियां मैलां लै जांदियां ने। राग सूरत विच पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज जी दी बख्शिश इक शब्द, अविनाशी जीयन को दाता सिमरत सब मल कोई। आओ ये शब्द सरवण करदे हां। इस पवित्र शब्द दा कीर्तन रूप च गायन कर रहे ने भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह श्रीनगर वाले, उन्हां दा कीर्तनी जत्था। ये पवित्र शब्द साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पवित्र अंग 617 उपर राग सोरठ विच दर्ज है। आओ सरवण करिए, अविनाशी जीवन को दाता।

अकाल पुरख सब दा दाता है ते असी असी उसते दर दे मंगते। मैं उस कोलो केड़ी दुनियावी दात मंगा, केड़ा दुनियावी पदार्थ मंगा, क्योंकि उसने तो पहला ही सानू सब कुछ दे के तो रहा है। बस हुण एक दात नाम दी बख्शिश, ये चोली चढ़ के मैं उदे कोल मंगदा, दे नाम संतोखिया उतरे मन की भुख। सिर्फ असी उसके दर दे पकारी नहीं, सगो वड्डे वड्डे देवी देवते भी उस मालिक दे दर दे मंगते ने। पर जिहड़े उसके हुक्मी बंदे ने ना, वो संसार विच सोभा खटके जांदे ने, बाकी जिहड़े आकी होए आफर के ही मरदे फिरदे ने। हुक्मी बंदे बन लई निम्रता सहज सेवा भाव की लोड़ हुंदी है, ते साड़ी सेवा भाव एहो जी होनी चाहीदी है। जे हर प्रभ का मैं देह स्नेहा, इस मन तन अपना देवा, नित पक्खा फेरी सेव कमावा, इस आगे पानी ढोवा। वाहिगुरु साड़े अंदर दी गल जानदा है, साड़े फैसले भी ओदे हाथ विच ने। तां गुरसिखो अरदास करिया करो, मालक बख्श लवो, क्योंकि असी बहुत वड्डे गुनाहगार हां। अंतर की गत तुम ही जानी, तुम ही पाहे नवेरो, बख्श लयो साहेब प्रभ अपने, लाख खते कर फेरो। प्रचलित रवायत अनुसार 84 लख जूनिया विचों करोड़ा अरबा सालां दी कवायत तों बाद यह मनुखा जन्म मिलिया है। हुण अपने आप नूं मालिक दे दरों बख्शा लईए। कबीर जी की कहिंदे ने, कहे कबीर सुनो रे संतो, खेद ही करो नवेरा, अब की बार बख्श बंदे को, और न पाजल फेरा। ता आओ गुरु प्यारियो, राग तनासरी विचों धन गुरु अमरदास जी का बख्शिश कीता होया ये शब्द सरण करदे हां। बहुते फेर पहे किरपन को, अब किश कृपा कीजे। शब्द सरवण करवा रहे ने हजूरी रागी भाई साहब भाई बलदेव सिंह वडाला जी। ये शब्द दी टेक है, अब किश कृपा कीजे,

रतन ताकि दुर्मत नास सगल मनोरथ पावे नानक पूर्ण होवे आस। राग कानड़ा विच पंचम पातशाह दा ए उपदेश जो रब्बी कीर्त विच जुड़दा है, रब्बी नाम दी विचार करदा है। कीर्तन दा भाव भी रब्बी विचार विच जुड़ना हुंदा है। किंदे सतगुरु के ओदी भैड़ी मत नालो नाल दूर हुंदी जांदी है। सज्जन ठग उसने कदी चेता भी नहीं कीता होएगा कि मेरे जिहड़े गुनाह ने ओह बख्शे जाणगे, मैं एक चंगे मार्ग ते चल सकांगा। पर सतगुरु दे एक शब्द ने उसका जीवन बदल दिता। उज्जल किहां चिलकणा घोट मकालड़ी मस। ता इवें साडी दुरमत जिहड़ी है भैड़ी मत दूर हो सकती है। सतगुरु कहिंदे सगल मनोरथ पावे नानक। जिंदगी दे जो मनोरथ ने, जो शुभ मनोभावना ने, वो पूरियां हुंदियां ने। पूर्ण होवे आस, आसा पूरियां हुंदियां ने। ते जीवन दी आस तां इहो ही है कि असीं उस मालिक नूं मिल सकीए। तां आओ उस मालिक नूं मिलन दा उपराला करिए। आओ शब्द सरवण करिए।

0: सरगुण दुनिया विच विचरदे होए असी गुर शब्द दे अखरी स्वरूप गुरबाणी दे लड़ लगना है अते भाव भावनी नाल पाठ कीर्तन ते विचार करनी है जो कि आत्मक पंध लई अत जरूरी है। गुरबाणी पाठ कीर्तन ते विचारां लैके आप सरबत संगत दी सेवा विच हाजिर है तुहाडा अपना हरमन रेडियो प्रोग्राम गुरबाणी विचार दे राही।
1: सावेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई सो मूरत भला संजोग है जित मिले गुसाई। जैसी दीवार पंचम पातशाह जी की पवित्र रचना ते पंद्रवी पौड़ी दी ए पंक्ति ओ केड़ा वेला है केड़ा संजोग है जदों मैं अकाल पुरख नूं पा लवांगी ए जीव आत्मा कह रही है। ओ केड़ा वेला है तन सवेला जित दर्शन करना सो मूरत भला संजोग जित मिले गसाई। ओ कदों मुहूर्त खुलेगा मेरे ओ कदों संजोग बनोगे जो मैं गुसाई अकाल पुरख नूं पा लवां तां सच्चे मालक नूं पाउण लई सतगुरां दे पवित्र शब्द ही साडा सहारा ने शब्द ही संजोग मिलदे ने शब्द ही ओ समां लियांदे ने। तां आओ गुरबाणी दे इस अथाह प्रवाह विचों शब्द कीर्तन दे नाल जुड़ना करदे

अंत ना पारिया से होए भगत जिना किरपारिया। जुगां जुगां तो लोग परमात्मा दी भाल विच उसनों खोज दे रहे ने, पर सिर्फ भगत ही उसनों महसूस करदे ने, क्योंकि भगतां ते मालक दी किरपा दृष्टि हुंदी है। आम मनुखी नहीं, दैंत देवी देवते शिवजी दे भगत सब अकाल पुरख दी खोज विच फिरदे रहे ने, पर ओ ता अविनाशी है, जूना तो रहत है, अचल अशेद है, अपने आप तो पैदा होया है, परखोतम परे तो परे है। पायो नहीं अंत, सुर असुर नर गन गंधर्व खो जंत फिरे, अविनाशी अचल अजोनी संभव पुरखोत्तम अपार परे। जाको खोजे सर्व उपाय, वडभागी दर्शन को विला पाए। बड़े वड्डे भाग हो ता उस मालक नू कोई विला विला टावा टावा गुरमुख जी पाउंदा है। खोजन वाले बड़े ने, ऊच अपार अगोचर थाना वो महल गुरु देखाई जीव। जिथे उसका टिकाना है ना, जिथे उसका महल है, वो सिर्फ राह गुरु दिखा सकता है। लभन वाले अपने ढंग तरीकियां चलाकियां चतराइया दे नाल लभन की कोशिश करते ने। धन गुरु अर्जन देव जी बख्शिश करते ने कि उस अकाल नूं लभन दे बड़े ढंग वरते गए, पर बड़े वड्डे भागां वाले उस तक पहुंच कर गए। वो तां अपरंपार है, ज्ञान इंद्रिया दी पहुंच तो बाहर है, पर उसके दरबार तक पहुंचन दा राह सिर्फ ते सिर्फ गुरु दिखांदा है। नाम निदान दे वंजारे, ए हीरियां मोतियां दे खजाने, जेडे जीव तेनों अपने काया तो बाहर लभदे फिरदे ने ना, वो मूर्ख ने, बेताल ने। सतगुरु फरमान करदे, नाम निदान हर वन जिए हीरे परवाले, विण काया जे होर खोज होर थै तन खोज दे से मूड़ बेताले। बन बन खोजत फिरत बैरागी, बिरले काहू एक लिव लागी, जिन हर पाया से वड पागी। बड़े गुरबाणी दे प्रमाण ने कि परमात्मा नूं खोजन वाले थक गए मुक गए। सतगुरां ने बाणी विच बार बार समझाया कि अकाल पुरख जीव दे हिरदे विच वसदा है। बंदे खोज दिल हर सोच, अपने अंदर झाती मार, हे मनुख तू कद उस नूं जंगलां पहाड़ां विच लभदा फिरदा है। तां इस बाबत नौवें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे फरमान, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। इस शब्द नूं पैसा भाई गुरमेल सिंह जी जी दे जथे पासों सरवण करदे हां। काहे रे बन खोजन जाई।

0: हुण तक तुसी सरवण कर रहे सी गुरबाणी कीर्तन दा प्रवाह। तुहाडा अज दा ए दिन सतगुरां दी बाणी दे आनंदमई बोलां दे नाल शुरू होया सी। ते वाहिगुरु अगे साडी बेनती जोदड़ी अरदास है कि सारे स्रोतियां दा अज दा ए भागां भरिया दिन मालक दी रजा विच खुशियां खेड़ियां दे नाल बतीत होवे। आओ सरबत दे भले दी अरदास करिए। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: आ गया तुहाडा ताया आस्ट्रेलिया दे ब्रिस्बेन चो। आजो आजो ताया जी, वेलकम।
2: ताया अज रात साडे कोल ही रहना पऊ थोनू।
1: ओ मैं आ ता गया, मैं ता नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ। इथों किथों मिलू इंडिया आले गद्दे?
2: लो ताया आपा ले आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो।
1: पंजाबी फर्नीचर?
2: जी हाँ, पंजाबी फर्नीचर। इथों मिलदा सारा इंडियन फर्नीचर, जो भी तुहानू चाहिदा सब इथों मिलू। मंजे, धार्मिक फोटोआं, चादरां, साइकिल, चूल्हे, दातियां, रंबे, कई सब कुछ इथों मिलू। ताया जी
1: लाया था तू मेरी टेंशन ही दूर करती। नाले तेरी ताई कहिंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा, ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामण दा। लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा।
2: लिखो फिर 2A 130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन। अकाल कर लियो ताया जी 0404000536 ते। वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au। नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture।
3: रोटी हजम नहीं हुंदी, वरतो गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिलता गरेवाल चक्की आटा, ताजा घट केमिकल दी वरतों वाली कणक जेड़ी कि सीधी खेतां चो मिल च लई जांदी। आस्ट्रेलिया दा बनिया शुद्ध आटा, ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो। आटे तो इलावा ताजा बेसन, लड्डुआं लई स्पेशल बेसन, मल्टी ग्रेन आटा, काबली छोले, मसरां दी दाल, चना दाल, सोयाबीन ते बादाम भी साडे अपने प्रोडक्शन हन। वधेरे जानकारी लई विजिट करो garewalgoldengrain.com.au या फोन करो 0428895564।
4: अपनी बिजनेस दी तरक्की लई तुसी वी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपनी बिजनेस दी एड देण लई जां किसे वी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करन लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन च विजिट करो।
5: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो, 24 घंटे 7 दिन आस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो। हरमन रेडियो, हर्मन रेडियो।

एक ब्रह्मचारी बाबा अमरदास जी नूं कह दिंदा है कि मेरा जन्म बिरथा चल गया क्योंकि मैं उसका संग कर लिया है जिसका अपना जन्म बिरथा जा रहा है। बाबे अमरदास ने पूछा, ब्रह्मचारी मेरा जन्म तू बिरथा किवें कह दिता? मैं चंगी किरत करदा हां, मैं हर साल तीर्थ यात्रा ते जांदा हां। ब्रह्मचारी ने कह दिता कि ए तीर्थ यात्रा किसे काम नहीं। बाबा जी ने पूछा कि क्यों? ब्रह्मचारी ने कहा, मेरा जाती तजर्बा है, इसने आज तक मैल वधाई जरूर है, किसे दी मैल उतारी नहीं। तीर्थ यात्री हंकारी हो जांदा है, निर्माण नहीं हुंदा, यात्रा ही गिनता रहिंदा है किन्नियां हो गईयां। ऐसे बंदे नू आत्म रस नहीं आ सकदा, जिंद दा साथ देण वाली तीर्थ यात्रा नहीं है। जिंद दा साथी तां सतगुरु दा शब्द है। विचार ज्ञानी जसवंत सिंह परवाना, सोहणे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो नाल।

खूबसूरत दिन की खूबसूरत शुरुआत, सूरज दियां सुनहरी किरणां रुमक दी पौण, आसमानी चादर दे थले लहलहाउंदियां फसलां दे नाल लहरां लहरां तुहाडी सवेर नूं होर निखारन लई पेश है प्रोग्राम लहरां लहरां लहरां लहरां लहरां तुहाडे मन दे वलवलियां दियां लहरां तुहाडे वडमुल्ले विचारां दियां लहरां तुहाडे दिल दे जज्बातां दियां वखरा दिन वखरा दिन वखरी आवाज वखरी आवाज वखरी गिरां वखरी गिरां लहरां सोमवार तो शुक्रवार सिडनी ऑस्ट्रेलिया समय के मुताबिक सवेरे 8 बजे तो 10 बजे तक लहरां लहरां

0: आओ सुनावा अखाण सियाणिया दा ज्ञान। लो जी अज दा मुहावरा उदम अगे लक्ष्मी पखे अगे पौण।
1: इस अखाण दा भाव ए है कि जिवें पखा चलण नाल हवा प्राप्त कीती जा सकती है, उमे ही हिम्मत करन नाल तन प्राप्त हो सकता है।
0: मुहावे अते अखाण साडी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया।
2: सुनो भी दोस्तों भावे बैठे हुए हो जा खड़े हुए हो, घर वाली नो रसे हुए हो जा फिर बापू नाल लड़े हुए हो, काम ते जा रहे हो जा फिर काम तो घर वापस आ रहे हो, ओ भाई नहा रहे हो के कुछ खा रहे हो जा फिर घर विच रौला रप्पा पा रहे ने न्याणे, ओ भाई दुखी ना होवो, सब गल्लां छड्डो आ सुनो हरमन रेडियो तो गाने। तुसी दोस्तो चाहे पिंडा विच बसदे हो जा फिर बसदे हो पिछे शहरां, हरमन रेडियो सदा मंगदा तुहाडियां खैरां। ते लो जी हाजरां लेके प्रोग्राम लहरां। आस्ट्रेलिया दे सिडनी स्टूडियो तो सोमवार तो शुक्रवार तक सवेरे 8 बजे तो लेके 10 बजे तक।

सरगश्तगी करते हुए स्वेत दी ताजगी संग ताजा खबर महत्वपूर्ण जानकारियां मनमोहक संगीत सेहत संबंधी सिलसिले मुलाकातों का दौर अति सरगोशियां मालवन तो माणो मेरे नाल यानी अमरदीप कौर नाल हरमन रेडियो दे प्रोग्राम लहरां दे विच सवेरे 8 बजे तो 10 बजे तक।

0: मुआफी चाहने हां कि अज असी इस घंटे दा खबरां दा बुलेटिन तकनीकी कारना करके पेश नहीं कर सके।
1: जिवें कि असीं हर रोज सांझियां करदे हां पंजाब सिख तारीख अते देश दुनिया नाल वापरियां कुछ अहम घटनावां दी जिन्हां दा संबंध खास तौर ते अज दे दिन नाल जुड़िया हुंदा है। सो लैके हाजिर हां जी कुछ अजिहियां इतिहासिक घटनावां कुछ वाकियात।
2: सन 1924 जथेदार अच्छर सिंह नूं गिरफ्तार किया गया सी। राजा नाभा दे गद्दियों लाहे जाण संबंधी 29 सितंबर 1923 दे दिन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी इक मीटिंग श्री अकाल तख्त साहिब उत्ते हुई। इस विच जैतो दे गुरुद्वारे विच अखंड पाठ खंडित करन दी जबरदस्त निंदा कीती गई सी ते मता पास कीता गया कि सिख जथा जैतो जाके अखंड पाठ मुड़ शुरू करेगा। श्रोमणी कमेटी ने जैतो विच अखंड पाठ मुड़ शुरू करन वास्ते 25-25 सिखां दे जथे भेजने शुरू किते जिन्हां नूं बुरी तरह कुटिया जांदा, कुछ नूं जेल विच भेजिया जांदा ते कुछ नूं 250 तों 500 किलोमीटर दूर जंगलां जां उजाड़ां विच छड़ दित्ता जांदा। इह मोर्चा कई दिन चलदा रहा ते इस दौरान 5000 दे करीब सिखां ने इस मोर्चे विच हिस्सा लिया। इन दिन ही 12 अक्टूबर 1923 दे दिन बरतानवी सरकार ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अते श्रोमणी अकाली दल नूं गैर कानूनी जमात करार दिता। उधर 4 महीने दे बावजूद जथिया वालों जैतो वल मार्च किया जा रहा सी अते गिरफ्तारियां दित्तियां जा रही सी पर नतीजा कोई ना निकलिया तां श्रोमणी कमेटी ने जद्दो जहद नूं तेज करन दा फैसला किया और यह ऐलान किया कि अखंड पाठ शुरू करने वास्ते जैतो वल नूं 500 सिखां दा

चीन दी एक कहावत अनुसार इको दरख्त नूं मिठे ते कौड़े फल लग सकते हन, इको मां सियाने ते निकम्मे बच्चे जम सकती है। लेखक परमिंदर सोढी, किताब संसार प्रसिद्ध मुहावरे। चंगे अते सोहणे विचारां नाल जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: सुनो ते सुनाओ अरविंद रेडियो।
1: छुट्टी वाला दिन सी, घर दी साफ सफाई करन दा दिन। मैं वैक्यूम क्लीनर नाल घर दे अंदर अते मेरी पत्नी बाहर वेड़े विच सफाई कर रही सी। जदों ओ अंदर आई तां उस दे तेवर बदले हुए सन। मैं सोचन लगा मैं अज बाहर गया नहीं ते इन्हें हाले अंदर निगाह नहीं मारी, फिर ए नाराज केड़ी गल्लों हो गई। ओ परी पीती रसोई च जा वड़ी, मैं मलकड़े जहे बाहर वेड़े विच वेखन गया। चारे पासे नजर दौड़ाई, कुछ भी ऐसा नजर ना आया जिस तो उसकी नाराजगी का पता चल सकता। अंदर आके मैं टीवी चला लिया, अपना काम मुका के वह भी आके बैठ गई। मैं चोर अख नाल वेख्या, वह हाले भी नाराज ही दिस रही सी। मैं अपनी वल्लों बड़े प्यार नाल पुछया, चाह बनाईए? वह अगों गुस्से नाल बोली, मैनू चार दिन हो गए तुहाडे वल वेखदिआं, रोज वेहड़े विच जांदे हो पर यह नहीं कीता कि मेज चुक के अंदर रखदिआं। मैं समझ गया कि किहड़े मेज की गल हो रही है। साडे घर विच एक लकड़ी का छोटा जिहा मेज है, दो कप चाह रखन जोगा। कदे कदे मैं ते मेरी पत्नी जदों बाहर वेहड़े विच चाह पीन बैठदे हाँ तां उह मेज बाहर कढ लैंदे हाँ। जदों मेज की लोड़ नहीं हुंदी चुक के वापस अंदर रख देंदे हाँ। इस वार अंदर रखना भुल गए। मैं छेती नाल उठिया, मेज चुक के अंदर रख आया। आके अपनी पत्नी कोल बैठदिआं मैं कहा, तू पिछले चार दिनों तो सिर्फ इस मेज करके नाराज है, मेरा तो मेज वल ध्यान भी नहीं गया। पर जे तेनू लगदा सी कि मेज अंदर रखना चाहिदा है तां तू मैनू पहले दिन ही कह देंदी। जिंदगी दे चार दिन नाराजगी च बर्बाद ना हुंदे। वो कहन लगी, तुहानू भी तां पता सी ना कि मैं नाराज हाँ, तुसी ही पहले दिन पुछ लेंदे, तुसी ही बचा लेंदे जिंदगी दे चार दिन बर्बाद होण तों। मैं लाजवाब होके मुस्कुरा पिया। दोस्तों, रुसना मनाउना नाराज होना यह सब साडी जिंदगी का हिस्सा है। पर जे दूसरे बंदे नूं तुहाडी नाराजगी का पता ही नहीं तां नाराज होके तुसी सिर्फ अपने आप नूं ही दुखी नहीं कर रहे, घर दे माहौल नूं भी विगाड़ रहे हो। इसलिए याद रखो, जदों भी किसी नाल नाराज होवो उसनूं पहले दिन ही दस दिओ कि तुसी किस गल तो नाराज हो। ते जे तुहानू लगे कि कोई तुहाडे नाल नाराज है तां उसनूं पहले दिन ही पुछ लो। हो सकदा है एक छोटा जिहा मेज अंदर रखण नाल ही नाराजगी दूर हो जावे। विचार अते आवाज, सरबजीत सिंह।

0: 24/7.
1: सत श्री अकाल दोस्तो, मैं हां अमरदीप सिंह गिल, ते तुसी सुन रहे हो हरमन रेडियो।

एशिया इस धरती का सब तो वड्डा महाद्वीप है। इसकी आबादी 4 अरब है, जो कि संसार की कुल आबादी का 60% हिस्सा है। अजिहियां होर वडमुलियां जानकारियां दे लई बने रहो हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया दे नाल। दिल पंजाबी, जज्बा पंजाबी।

0: रोटी हजम नहीं होंगी। वरतों गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिल का गरेवाल चक्की आटा ताजा घट कैमिकल की वरतों वाली कणक जिड़ी कि सीधी खेतों चो मिल च लाई जाती आस्ट्रेलिया का बनिया शुद्ध आटा ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो। आटे तो इलावा ताजा बेसन लड्डुआ लई स्पेशल बेसन मल्टी ग्रेन आटा काबली छोले मसरां दी दाल चना दाल सोयाबीन ते बादाम भी साडे अपने प्रोडक्ट हन। वधेरे जानकारी लई विजिट करो गरेवाल गोल्डन ग्रेन .com.au या फोन करो 0428-895-564।
1: आ गया तुहाडा ताया आस्ट्रेलिया दे ब्रिस्बेन चो। ओ आजो आजो ताया जी वेलकम। ताया अज रात साडे कोल ही रहना पऊ थोनू। ओ मैं आ ता गया मैं ता नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ। इथो किथो मिलू इंडिया आले गद्दे? लो ताया आपां लै आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो। पंजाबी फर्नीचर? जी हाँ पंजाबी फर्नीचर एथो मिलदा सारा इंडियन फर्नीचर जो भी तुहानू चाहिदा सब एथो मिलू। मंजे धार्मिक फोटवां चादरां साइकिल चूल्हे दातियां रंबे कई सब कुछ एथो मिलू। ताया जी लाया था तू मेरी टेंशन ही दूर करती। नाले तेरी ताई कहिंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामने दा। लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा। लिखो फिर 2A 130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन। अकाल कर लियो ताया जी 0404-000-536 ते। वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au। नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture।
2: अपनी बिजनेस की तरक्की लई तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देने लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नू स्पॉन्सर करने लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवरटाइजमेंट सेक्शन विजिट करो।

खूबसूरत दिन की खूबसूरत शुरुआत, सूरज दियां सुनहरी किरणा रुमक दी पौण, आसमानी चादर दे थले लहलहाउंदियां फसलां दे नाल लहरां। तुहाडी सवेर नूं होर निखारन लई पेश है प्रोग्राम लहरां लहरां लहरां लहरां लहरां तुहाडे मन दे वलवलियां दियां लहरां, तुहाडे वडमुल्ले विचारां दियां लहरां, तुहाडे दिल दे जज्बातां दियां। वखरा दिन वखरा दिन वखरी आवाज वखरी आवाज वखरी गिरां वखरी गिरां लहरां। सोमवार तो शुक्रवार सिडनी आस्ट्रेलिया समय के मुताबिक सवेरे 8 बजे तो 10 बजे तक लहरां लहरां।

0: हरमन रेडियो 24 घंटे सत्ते दिन
1: धर्मी राजे दा अन्न खान वाले विद्वाना दी बुद्धि प्रिष्ट हो जांदी है। महाभारत
0: सुने विचारां ले जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

अरुण रेडियो, दिल पंजाबी, जज्बा पंजाबी। पंजाबी युद्ध बारे रोमन दी कहावत है कि युद्ध अंदर हारन वाला तबाह हो जांदा है अते जीतन वाला रोंदा है। सोने विचारां दे अंग

खुशामदी बारे हंगरी दी कावत है कि खुशामदी लुकवां दुश्मन हुंदा है। चंगे विचार विचारो अते जिंदगी विच लागू करो। हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया।

0: 24 घंटे 7 दिन।
1: सफर बारे इटली वाले कहंदे हन कि सफर लंबा होवे ता कहां दा एक तिड़का भी भारी लगन लगदा है। विद्या विचारी ता पर उपकारी।

कर्म दे संबंध विच दो रूसी कहावतां पेश हन, तेज चलन वाला शामत नूं जा रलदा है, हौली चलन वाले नूं शामत आ रलदी है। दूजी, नरक विच जाके भी गरीब किसान नूं अमीर जगीरदार दी सेवा करनी पैनी है, क्योंकि अमीर नूं जिस तेग विच उबालिया जांदा है उसदे हेठां। कर्म दे संबंध विच दो रूसी कहावतां पेश हन, तेज चलन वाला शामत नूं जा रलदा है, हौली चलन वाले नूं शामत आ रलदी है। दूजी, नरक विच जाके भी गरीब किसान नूं अमीर जगीरदार दी सेवा करनी पैनी है, क्योंकि अमीर नूं जिस तेग विच उबालिया जांदा है उसदे हेठां लकड़ गरीब ने ही पाउणी है।

0: महक दियां यादां दे नाल रात दा काफला, खूबसूरत आवाज दा सफर।
1: रोजाना राती 11 बजे सुनना ना भुल्यो महक दियां यादां, सिर्फ हरमन रेडियो।

0: हरमन रेडियो रेडियो कमाल बा कमाल
1: ओही बुड़ी खोती ओही राम दयाल
2: ए अखाण उदों वर्तदे हन जदों किसे बंदे बारे एह दसना होवे कि उसने सारी उमर इको ही काम कीता है जां सारा जीवन थोड़ी आमदन नाल ही गुजारिया है।

0: आओ सुनावा खान सियाणियां दा ज्ञान। लो जी अज दा मुहावरा, चिड़िया दी मौत गवारा दा हासा।
1: माड़े बंदे दे सिर दुखा पवे ता मूरख लोक दुख कटाउण दी थां हसदे अते खुश हुंदे हन।
0: मुहावे अते अखाण साडी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। हरमन रेडियो, हरमन रेडियो, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलिया।

0: करो। ओ आजो आजो ताया जी, वेलकम। ताया आज रात साडे कोल ही रहना पऊ थोनू। ओ मैं आ ता गया, मैं ता नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ। इथों किथों मिलू इंडिया आले गद्दे? लो ताया आपां लै आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो। पंजाबी फर्नीचर? जी हाँ, पंजाबी फर्नीचर इथों मिलदा। सारा इंडियन फर्नीचर जो भी तुहानू चाहिदा सब इथों मिलू। मंजे, धार्मिक फोटोआं, चादरां, साइकिल, चूल्हे, दातियां, रंबे, कई सब कुछ इथों मिलू। ताया जी लाया था तू मेरी टेंशन दूर करती। नाले तेरी ताई कहिंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा। ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामने दा। लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा। लिखो फिर 2A130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन। अकाल कर लियो ताया जी 0404000536 ते। वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au। नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture।
1: रोटी हजम नहीं हुंदी, वरतो गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिल्स दा गरेवाल चक्की आटा। ताजा घट केमिकल दी वरतों वाली कणक जेड़ी के सीधी खेतां च मिल च लई जांदी। ऑस्ट्रेलिया दा बनिया शुद्ध आटा, ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो। आटे तो इलावा ताजा बेसन, लड्डुआं लई स्पेशल बेसन, मल्टी ग्रेन आटा, काबली छोले, मसरां दी दाल, चना दाल, सोयाबीन ते बादाम भी साडे अपने प्रोडक्शन हन। वधेरे जानकारी लई विजिट करो garewalgoldengrain.com.au या फोन करो 0428895564।
2: अपनी बिजनेस की तरक्की लई तुसी भी हरमन रेडियो दीआं सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देण लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करन लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सैक्शन च विजिट करो।
3: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन ऑस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो। हरमन रेडियो, हर्मन रेडियो।

बराबरी बारे जापान की कहावत है कि रिक्शे ते बैठन वाला ते रिक्शे नू खिचन वाला एक तरह दे आदमी हन। विद्या विचारी ता पर उपकारी।